0: ये जो आचार्य जी के शिष्य थे इनकी कथा जानी थी, और आस्तिक ऋषि जी की कथा पर हमने शुरुआत की थी। इसकी कथा को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, इस कथा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, सतयुग में दक्ष प्रजापति जी की दो कन्याएं थी, कद्रु और वनिता।
0: जी
1: उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर का बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गयी। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता तूने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, फिर तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। वह घोड़ा अश्व रत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदाकिनी को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वस्व देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा, हाथी हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथे हैं। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती है और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने

0: प्रकाश से युक्त श्वेत तो वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च शवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उच्च शवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है, मेरा है, ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर, विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। इसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवताओं और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसको। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्र शस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दशी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला। और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी,
0: उच्च शवा घोड़े को देखकर कधु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कधु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्दू ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च शवा की पूंछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रु अभिनेता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च शवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। कद्दू और मीठा बाजी लगाकर

0: ताजमहल से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। ये देखकर अनीता उदास हो गई। कद्दू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे, अब वे भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्दू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्दू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभीष्ट स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्दू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश लोक को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर व नादि जल देख कर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्दू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, इसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ चढ़ाकर टूट गए और गिरने लगी। जरूर गिरने की पेड़ पे शाखा को पकड़ ली और बड़े आश्चर्य से देखा, उसने नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। जरूर जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया। आकाश में उड़ने लगे, कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तब शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनो, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वटवृक्ष की शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महात्मा बालखिल्ले ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षा रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मुंह से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए, वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया, देवता उनका प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैल लिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ प्रणी भी विचलित हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े, उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहाँ देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है, उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्र अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने भूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिया। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत पी जाते देखकर क्रोध में भरकर बाजू चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकूंगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। पक्षीराज मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उसे मुंह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वही उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर दिया। जब सर्पों से प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्यु से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया, ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोता, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, अब परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षुक, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्तऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित

0: तीर्थ कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षित धर्मगिरि तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के, तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षित ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवाकर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए लग्न पत्री।
0: जैसे लीना जी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं तो, और वो जो सारा का सब पत्रिका उनकी जन्म पत्रिकाएँ मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए।
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है, अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं, और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधू ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे, तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से, तो फिर वो सब दिए वहाँ जा करके और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था प्रकृति का पुरुष से, परमेश्वर से विवाह होने वाला था। तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर मंगल कृत दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुर द्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगल पुरः सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो। मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को, श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि ये
1: अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेद व्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर के कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है,
0: देखा तो सबने एक दो कोई
1: है, आल्प्स है,
0: नाम है।
1: तो बहुत सारे पर्वत बहुत सारे अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेद व्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेद व्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हृष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़यो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हाँ। हिमालय तो है ही, हाँ। अब देवालय पर्वत है। हाँ। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है, मंदराचल। वो कहते हैं की सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नत सुवेशालंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुँचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए। तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे। वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में। तो नदी क्यों बनी? क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था। और अगस्त्य मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई।
0: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं। तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे।
1: पधारे
0: जी।
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है। देवालय, मंदराचल, अस्ताचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल। तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए। भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणि रत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्र भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार, सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र, पुत्री, स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न हो

0: कर वहाँ आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहाँ शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहाँ आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति करते हैं, जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था, वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
1: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है के पी स्क्वायर एल एच बी पी अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान।

0: तरह था। अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं, ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें

0: दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं, पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं, और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं, कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास, और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताऊं कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण हैं? किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी? तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, मन आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थिर प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थिर प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ, कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक
0: के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे,
0: जी,
1: आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसी ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील
2: व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई हैं, बार बार उसी चीज को देख रही हैं, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा

0: जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज हैं, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें, आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं। 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
3: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आ जाती है आपके पास लेकर बहुत सारी बातें। और हम देखिए बातें तो करते हैं और साथ ही बहुत ही कमाल के गाने भी आपके लिए लेकर के आती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। और देखिए आज भी ना बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ मैं। आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे वाले दिन आपके लिए ना मैं लेकर के आती हूँ कमाल की टेस्टी टेस्टी, बहुत कमाल की स्वादिष्ट रेसिपी। और आज की जो हमारी रेसिपी है ना भाई, वो जब आप नाम सुनेंगे ना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही कमाल है। और क्या है और इस डिश को भाई कैसे बनाया जाता है, क्या स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, ये सारी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें. आज है देखिए बहुत ही ज्यादा खास दिन, सैटरडे का दिन है और मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आ चुकी हूँ. अच्छा, जब देखिए स्वाद की बात हो ना, तो मीठा तो बनता है ना कुछ. अच्छा जरा सोचिए, सुबह सुबह का वक्त हो और आप अचानक किचन से आपके धीरे धीरे केसर की, इलायची की और उबलती हुई चाशनी की खुशबू दिमाग में घुल जाए. मैं सच बताऊं तो दिमाग की ना बत्ती जल जाती है, साथ साथ दिल झूमने लगता है. अब देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की रेसिपी हमारी कुछ ऐसी है. इंडिया में जब भी कोई भी बड़ी खुशी आती है, शाही मेहमान आते हैं, वही कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई त्योहार है, कोई तीज त्योहार है, तो वही एक चीज जो देखिए हमेशा बनती है और वो है कुछ मीठा, है ना. और जब आम मिठाइयों से काम ना चले ना, तो वहां जरूरत पड़ती है राजभोग की. और ये देखिए मैं ना आपको इसे बता रही हूँ क्योंकि ये जो राजभोग है ना, ये दिल से दिल तक का कनेक्शन है. और आज ना मैं आपको राजभोग के बारे में बताने वाली हूँ. पहले तो इसके बारे में बात करेंगे कि भाई इसका ये जो बना था, ये कहाँ बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद आपको बताऊंगी ये बनता कैसे. तो ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आई हूँ, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास खास खास एक रेसिपी। सैटरडे का दिन है, मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आती हूँ। आज राजभोग के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, राजभोग की अगर बात करें तो क्या आप जानते हैं कि राजभोग का जन्म कैसे हुआ? भाई 19th century के दौरान कोलकाता के मशहूर हलवाई नोबिन चंद्र दास ने स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाकर इतिहास रच दिया था। पर बंगाल के नवाबों और जमींदारों को लगता था कि जो रसगुल्ला है वो थोड़ा भाई नॉर्मल है, साधारण है। उनके रॉयल दावत के लिए उनका जो बावर्ची है, उनके जो है सारे जो बावर्चियों ने रसगुल्ले के साइज को बड़ा किया, चाशनी में महंगा कश्मीरी केसर घोला और छेना के अंदर पिस्ता बादाम और इलायची के रिच स्टफिंग भर दी और इसका नाम रखा गया राजभोग, यानी कि राजाओं के लिए बनाया गया शाही भोग। कितना मतलब कमाल का इतिहास है ना। वैसे ना मैं आपको बताऊँ, ये ना उस टाइम का ना ऐसा होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसे ही पता चला रसगुल्ला तो बना दिया, लेकिन इस रसगुल्ले में खास क्या है, क्या करा आपने इस रसगुल्ले में? तो रसगुल्ले का साइज बढ़ा दिया। मतलब जैसे नॉर्मल होता है ना कि आप नॉर्मल देखिए, अगर किसी को हम बोल देते हैं कि भाई इसमें खास क्या है, उसका साइज बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा उसमें थोड़े से पिस्ता बादाम डाल दो, बस यही हुआ है। उसको केसर उसके ऊपर डाल दिया और ये बन गया राजभोग। अब भाई नाम ऐसा पड़ गया कि जो राजा महाराजा थे, जो मेहमान थे, शाही लोग थे, वो खुश हो गए और भाई खुशी में ये कमाल की टेस्टी जो रेसिपी है ना, ये बन के रेडी हो गई। अब रसगुल्ला और जो राजभोग है ना, उसका हल्का फ्लेवर अलग अलग जरूर होता है और आज इसी के बारे में आपको बता रही हूँ। चलिए कुछ और जानकारी भी दूंगी इस राजभोग की, लेकिन उससे पहले लेती मैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज ना बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज सैटरडे का दिन है और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ राजभोग की कमाल की टेस्टी रेसिपी। अब देखिए, राजभोग की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि राजभोग बफेलो मिल्क यानी कि भैंस के दूध से क्यों नहीं बनता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कल्नरी साइंस है। देखिए, भैंस के दूध में ना फैट बहुत ज्यादा होता है, जिससे छेना थोड़ा सा डेंस और ऑयली हो जाता है, जबकि जो गाय का दूध होता है, जो काउज मिल्क है, इसमें फैट कम और प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो बॉयल होने पर स्पॉन्जी मैश जो है वो बनता है। और यही वजह है कि गाय के दूध या राजभोग, जब आप देखिए जो राजभोग है वो गाय के दूध से बनता है, और जो राजभोग है जब आप उसे दबाएंगे तो उस पर जो स्पॉन्जी जैसा वापस जो फूल वो दोबारा से जाता है, क्योंकि हमारे देखिए हलवाई बिना किसी लेबोरेटरी के ना, मतलब कितने बड़े साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना कुछ ध्यान से सोचा है। अगर देखिए वो जो बफेलो मिल्क होता, अगर वो भैंस का दूध होता, बहुत ज़्यादा ऑयली होता, और अगर आप उसे दबाते तो वो फिर दबा रह जाता, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा हैवीनेस, थोड़ा सा डेंस हो जाता। लेकिन काउ मिल्क है और काउ मिल्क में फैट कम है और वहाँ पर जो है कि प्रोटीन ज़्यादा है उसमें। देखिए वैसे तो मैं देखिए खाने की बात है तो इसलिए कर रही हूँ ना, ज़्यादा भी मत खाइएगा राजभोग, एक राजभोग आपके लिए काफ़ी है। मैं तो कहती हूँ आधा ही खाइएगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना, फिर आप कहेंगे साक्षी आपने सेहत का ख्याल नहीं रखवाया। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। आज है सैटरडे का दिन, मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूं। और आज बात करें राजभोग की। देखिए, इंडिया को ऐसे ही नहीं विविधता का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ पीला और केसरी रंग जो है वो देखिए मंगलता और शुभ शुरुआत या समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। राजभोग का वो सुनहरा पीला रंग और केसर की जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो किसी त्योहार की थाली को बिना मतलब शाही बना देती है। दिवाली हो, भाई दूज हो या शादी की दावत, मिठाई के काउंटर पे सबसे पहले नजर इस केसरिया गोले पर पड़ जाती है। और देखिए, अगर आपको भी ये गोला, ये जो राजभोग है, पसंद है तो भाई मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है, 8013781078, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, मैं ना बात कर रही हूँ, अच्छा अगर भाई बचपन की अगर हम बात करें ना, तो बचपन में ना जब शादियों में, अब देखिए शादियों में होता है ना कि आप अपने आप खाना लेके खाइए, बुफे सिस्टम होता है, अपने आप खाना लीजिए खाइए, राजभोग वहाँ मिलता था। और देखिए दोस्तों के बीच ना ये चैलेंज ज़रूर लगता था कि कौन पूरा एक पीस एक बार में पूरा का पूरा मुँह भर के उसे खा लेगा। और जब वो चाशनी से भरा बड़ा गोला पूरे मुंह को कवर कर लेता था ना, तो मतलब रस दोनों तरफ से निकल रहा है और हंसी आ रही है, वो मजेदार, मतलब वो किसी 5 स्टार से कम नहीं है यार। मतलब वो जो यादें हैं ना, मतलब आपको ऐसा ना याद वो रहेंगी, वो कमाल है। वो दोबारा जो बचपन है ना वो जिया नहीं जा सकता, लेकिन यादें जरूर जी जा सकती हैं। तो अगर आपने भी कभी ऐसा कोई चैलेंज लिया है कि रसगुल्ला, वो जो भाई राजभोग है, आपको एक बार में इतना बड़ा पूरा का पूरा खाना है, तो वो चैलेंज अगर अभी तक नहीं किया ना, एक बार करके देखिए, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, वो बचपन याद आ जाता है। चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस राजभोग को बनाने का जो तरीका है वो क्या है, रेसिपी क्या है, बात करेंगे इसमें। फिलहाल जाते जाते बस ये कहूंगी कि अभी ना ब्रेक पर जाने से पहले अपनी डायरी, नोटपैड, बिल्कुल अपना पेन तैयार रखिए, क्योंकि आने के बाद, इस ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या है। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आपको बता दूं, खास जानकारी आपके लिए लेकर के मैं आ जाती हूं। इंग्रेडिएंट्स की अब बात कर रही हूं, आपको मैं बता रही हूं कि ये जो राजभोग है ये कैसे बनता है। तो राजभोग बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए गाय का दूध यानी कि काउज मिल्क, और ये 1.5 लीटर चाहिए। फुल क्रीम बफेलो मिल्क बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके साथ साथ आपको लेमन जूस या विनेगर लेना है 2 से 3 टेबलस्पून दूध को फाड़ने के लिए। इसके बाद पानी लेना है 3 टेबलस्पून, नींबू का रस इसमें जो है आप देखिए मिलाएंगे, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली आप देखिए डालते हैं नींबू का रस डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और आपको बता दूं मैं कि जो पनीर जो बनेगा, जैसे छेना जो जिससे बनेगा ना, ये जो छेना जब बनता है ना तो वो टाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो टाइट हो जाएगा उसका जो टेक्स्चर है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको 3 टेबलस्पून पानी चाहिए ताकि आप उसे विनेगर में या लेमन में जूस जो है उसमें मिला सकें। इसके साथ केसर वाटर लेना है या फिर येलो फूड कलर भी आप थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन केसर वाटर इम्पॉर्टेंट है और छेने में हल्का सा जो रंग है वो भी आएगा और अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आपको स्टफिंग के लिए आपको क्या करना है, बादाम और पिस्ता 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटे हुए होने चाहिए। इलायची पाउडर लेना है आपको 1/2 टीस्पून। केसर के धागे लेने हैं 8 से 10 क्रश किए हुए। इसके साथ साथ खोया या थोड़ा सा आपको छेना लेना है 1 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए। अब इसके साथ देखिए यहीं तक ये खत्म नहीं होता, क्योंकि चाशनी भी इम्पोर्टेंट है। तो चाशनी के लिए आपको 1.5 कप आपको शुगर लेनी है, चीनी लेनी है, और 5 कप आपको पानी लेना है। इसके साथ साथ सैफरन यानी कि केसर लेना है, इसके आप 15 से 20 धागे ले लीजिए। इसमें थोड़े धागे एक्स्ट्रा पड़ते हैं तभी वो जो पीले रंग का जो कलर है वो आएगा, जो पीला रंग है वो अच्छे से आएगा, खुशबू आएगी, तो उसके लिए 15 से 20 धागे रहेंगे। इलायची के आपको जो है वो 2 इलायची आपको लेनी है, और गुलाब जल लेना है खुशबू के लिए 1 टेबलस्पून। आप गुलाब जल जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। और इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगी विधि क्या है इस राजभोग की। तो फिलहाल कहीं मत जाइए, लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लव।

वेलकम बैक, रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। आज है सैटरडे का दिन और आपके लिए खास जानकारी लेकर के आ गई हूँ। मैं आपको बता रही हूँ राजभोग की इतनी कमाल टेस्टी रेसिपी। तो राजभोग बनाने के लिए सबसे पहले आपको छेना बनाना होगा। तो छेना बनाने के लिए दूध को आपको अच्छे से उबालना है और उबाल आने के बाद, एक ही उबाल आएगा, उबाल आने के बाद आपको गैस को बंद कर देना है। 2 मिनट ठंडा होने आपको उसे देना है। नॉर्मल जैसे हो गया दूध, अब इसमें डायलूटेड जो लेमन जूस है यानी कि लेमन जूस में हमने जो पानी मिलाया है उसको आप डाल दीजिए और धीरे धीरे, बहुत धीरे हाथ से आपको जो है वो चलाते रहना है जब तक एक ग्रीनिश कलर का पानी उससे अलग ना हो जाए। तुरंत जैसे ही पानी अलग होता है, इसे आप एक मलमल के कपड़े में आपको छान कर ठंडे पानी से आपको इसे धो लेना है ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। और कपड़े को आपको निचोड़कर 30 से 40 मिनट तक के लिए इसे टांग देना है ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब छेना को आपको एक परात में निकालना है। हथेली के पीछे वाले हिस्से से आपको जो है 4 से 5 मिनट हल्के हाथ से इसे मसलना है जब तक मक्खन जैसा ये स्मूथ ना हो जाए। याद रहे, अगर आप बहुत ज्यादा इसे रगड़ देते हैं तो इसका ऑयल बाहर आ जाएगा, वो हमें नहीं निकलने देना है। वो स्मूथ बनाने के लिए हमें चाहिए। इसके साथ साथ इसमें अब 1 टेबलस्पून आपको कॉर्नफ्लावर डालना है और 2 ड्रॉप केसर वाटर डालकर 1 मिनट और ज्यादा अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब इसकी आप जो स्टफिंग है वो भी प्रिपेयर कर लीजिए। 1 छोटी कटोरी में बारीक कटा पिस्ता, बादाम, इलायची पाउडर, क्रश किया हुआ केसर और 1 चम्मच छेना मिलाकर आपको छोटी छोटी कुछ 7 से 8 जो है वो एक टाइनी बॉल्स जो है वो बना लेनी है। और छेना जो है, इसका जो डो है, इसकी 7-8 बड़ी बॉल आपको बनानी है। रेगुलर रसगुल्ले से डबल साइज की होनी चाहिए। तो एक लोई को हथेली पर आपको फैलाना है, बीच में आपको नट स्टफिंग जो है बॉल में रखनी है और चारों तरफ से छेने से आपको सील कर देना है। बिल्कुल क्रैक फ्री होना चाहिए, एक स्मूथ टेक्सचर जो है वो बाहर से बॉल का दिखना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे आप वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज हम बात करें राजभोग की। देखिए राजभोग बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, छेना कैसे बनाना है, इसके बाद इसकी नीडिंग कैसे करनी यानी कि उसका जो डो है वो कैसे बनाना है, स्टफिंग कैसे प्रिपेयर करनी है या छोटी छोटी बॉल्स कैसे बनानी है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बात करते हैं चाशनी की प्रिपरेशन की। एक बड़े और एक वाइड एक चौड़े बर्तन में आपको 1.5 कप चाशनी के लिए आपको जो चीनी है वो उसमें रखनी है और 5 कप पानी, इलायची और ढेर सारा केसर आपको डाल देना है। हाई फ्लेम पर तेज आपको इसे उबालना है। जब चाशनी में से तेज बबल्स या बॉयल जो है वो आ रहा हो तब एक एक करके सारे राजभोग आपको डालने हैं। ढक्कन बंद करना है और उसके बाद हाई फ्लेम पर 15 से 18 मिनट तक के लिए इसे पकने देना है। हर 5 मिनट बाद आपको ढक्कन खोलकर 2 चम्मच गर्म पानी किनारों से आपको डालना है ताकि चाशनी गाढ़ी ना हो। राजभोग फूल कर देखिए डबल साइज का हो जाएगा तो उसका आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए पहले से ही बड़ा और चौड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि राजभोग टूटे ना। इसके बाद गैस को बंद कर देना है और गुलाब जल आपको मिलाना है राजभोग को चाशनी के साथ ही। कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपको ठंडा होने के लिए रखना है ताकि केसर का जो रंग है और रस है वो अंदर तक उतर जाए। शाही केसर भोग जो है, ये केसर राजभोग जो है ये बन के रेडी है। तो बस आप इसे ज़रूर बताइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, राजभोग की रेसिपी आपको कैसी लगी। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से मैं आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज राजभोग की मैंने आपको रेसिपी जो है वो बताई है, कैसे इसे बनाना है। बस कुछ कुकिंग टिप्स आपको जरूर दूंगी। छेना बनाते वक्त दूध को आपको उबालकर तुरंत नींबू आपको नहीं डालना है, 2 मिनट रुक कर आपको डालना है। इससे छेना हार्ड नहीं बनता है और राजभोग सॉफ्ट रहता है। इसी के साथ साथ स्टफिंग जो है वो सील करते वक्त अगर क्रैक दिखे तो थोड़ा सा पानी का हाथ आपको लगाकर उंगली से वो जो लकीर वहां पर आ रही है तो वहां पर आपको लगाना है और उसे स्मूथ कर लेना है। चाशनी में जो है वो जाकर स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी इससे, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि हमारे तो जब हम बनाते हैं राजभोग तो उसकी स्टफिंग बाहर आ जाती है, तो क्रैक नहीं होंगे तो स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, उसको जगह नहीं मिलेगी बाहर आने की। इसी के साथ साथ देखिए, ठंडे राजभोग को मिट्टी के शाही बोल में निकालना है, ऊपर से थोड़ी सी केसर की जो चाशनी है वो डालनी है, ड्राई फ्रूट्स के आपको लच्छे और साथ ही साथ चांदी का वर्क अगर है तो लगा कर डाल दीजिए। और जब भी कोई मेहमान घर में आए ना तो उनको खिलाइए और वो जरूर कहेंगे कि ये आपने नहीं बनाया। हम मान ही नहीं सकते, ये तो बाहर से ही आया है। तब आप कहिएगा कि ये तो साक्षी की रेसिपी है और हमने बनाई है घर पे। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और मैं ना आपके लिए कमाल की टेस्टी भाई मिठाई प्रेमियों के लिए ना एक इतनी बड़ी कमाल की टेस्टी भाई रस्सी रेसिपी आज मैं लेकर के आई हूँ, और वो है राजभोग की। अच्छा, जो मिठाई लवर है ना, जो मतलब पसंद है जिन्हें मिठाई खाना, उनके लिए ना एक बहुत बड़ी डिबेट है, हमेशा चलती है, सिंपल वाइट रसगुल्ला बेहतर है या फिर स्टफ्ड केसर राजभोग बेहतर है। रसगुल्ला लवर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उसकी सिंप्लिसिटी और स्पॉन्जी टेक्सचर का कोई तोड़ नहीं है, पर राजभोग के दीवाने ये कहते हैं कि जब तक बाइट में केसर की खुशबू या देखिए वो जो क्रंच ना मिले ना, तब तक मजा नहीं आता है, शाही कहाँ लगता है। स्वाद और टेक्सचर का ये डिफरेंस ही इंडियन स्वीट्स को दुनिया में सबसे ज्यादा खास बनाता है। आप भी जरूर मुझे बताइए कि आपको क्या ज्यादा पसंद है। व्हाट्सएप कर सकते हैं तो ना, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। आपको क्या पसंद है, रसगुल्ला या राजभोग, जल्दी से मैसेज करके बताइएगा, नंबर है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ आज मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी जरूर लेकर के आई, और ये रेसिपी है राजभोग की. तो आप जब राजभोग घर पे बनाए तो जरूर मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है. नंबर है 8010781078. इसी के साथ

अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात जरूर होगी कुछ ही देर बाद, यानी कि 11 से 1 लेकर के आती हूँ अपना प्रोग्राम सफरनामा, जिसमें कहीं घूमने के लिए जाते हैं हर शनिवार को। चलिए कुछ ही देर में मिलती हूँ, लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव विरज 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और कार्यक्रम है ग्रीन ग्रह, जिसे आपके बीच लेकर आते हैं हर हफ्ते डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब व पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उन सभी कार्यक्रमों के बारे में जो हम आपके बीच में लेकर आए हैं और जानेंगे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में। क्या कर रहा है डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन जो हमारे समाज उत्थान और पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज है कार्यक्रम ग्रीन ग्रह का आखिरी एपिसोड और इस सीरीज में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी, वो एक्सपर्ट्स जो वाकई पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने वेस्ट सेग्रीगेशन और पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। ये कदम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं जो वाकई पर्यावरण को एक छोटी सी किरण तो दे ही रहे हैं और इस उम्मीद की किरण पर ही तो दुनिया कायम है। हमारे रोजमर्रा का जीवन और जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये हम सब जानते हैं कि हम जिस तरीके से अपने कचरे का निस्तारण करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में बिना कोई सोचे समझे इतना सारा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, सामान खरीदते हैं उस प्लास्टिक को यूं ही फेंक देते हैं, दूध की थैली से लेकर बड़े शॉपिंग बैग तक हर चीज कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ढेर सारे कुरियर्स मंगाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, आपको लगता होगा ये तो शायद पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट वे में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो कुरियर्स आप मंगाते हैं वो कुरियर्स कहीं ना कहीं दूर से आ रहे हैं। इकोनॉमी को तो ठीक रख रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जब आते हैं तो फ्लाइट या ट्रेन या फिर ट्रक्स बसेस के जरिए पहुंचते हैं और वहां पर भी ईंधन का इस्तेमाल होता है और बार बार इन कुरियर्स का आना या फिर रिप्लेस होना या फिर रिटर्न होना, सेम प्रोसेस और सेम पर्यावरण को झटका। इसके साथ साथ हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक बहुत जरूरी सी चीज है, वो है कूड़े को फेंकना। आपके घर से जो कचरा निकलता है क्या आप उसे एक ही डस्टबिन में डालते हैं? अगर हाँ तो ये कचरा छोटा सा चेंज आपके जीवन में ला रहा है और वो है पर्यावरण को खराब करने का चेंज। और अगर आपकी छोटी सी कोशिश हो तो ये पर्यावरण को खराब करने का चेंज वापस ठीक किया जा सकता है। कैसे? कचरे को अलग करके, सब्जियों फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय पत्ती, फूल पत्तियां एक डस्टबिन में डालें, यानी ग्रीन कलर के वेट वेस्ट के डब्बे में डालें। और दूसरा, ड्राई वेस्ट यानी कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक पैकेजिंग, मेटल कैंस, ग्लास वगैरह सब ड्राई वेस्ट में डालें। सैनिटरी वेस्ट और कुछ स्पेशल केयर वेस्ट को अलग रखना चाहिए, क्योंकि मौजूदा केंद्रीय नियमों में सोर्स पर अलग अलग वेस्ट रखने और सेग्रीगेटेड वेस्ट को ऑथराइज्ड कलेक्टर रिसाइकलर्स को देने पर जोर दिया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसी ही कुछ बातें हम आपके लिए पिछली कुछ सीरीज में लेकर आए, जहां पर हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़े, एक्सपर्ट जो इको क्लब से आए, एक्सपर्ट जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो भारत में नहीं बाहर रह रहे हैं लेकिन कार्य पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो कोशिश कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाने की। हमारे बीच में एक एक्सपर्ट ऐसे जुड़े जिन्होंने वाकई बहुत सारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया है और ना केवल कार्य किया है अपितु सरकार से कई बार जवाब तलब भी किया है, यानी RTI के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी जानकारी भी जाननी चाहिए है। पंकज ग्रोवर जी हमारे साथ पिछले कुछ एपिसोड्स में जुड़े, जिन्होंने बताया कि बंदवाड़ी का जो कूड़ा का एक बड़ा सा ढेर है वो किस तरीके से आसपास के गांवों को नुकसान पहुंचा रहा है और उनका पानी दूषित कर रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में कैंसर फैलता जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो आसपास के एनवायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं ये कितने घातक हो सकते हैं, जैसा कि हमारे आसपास चाहे साउंड पोल्यूशन हो यानी नॉइस पोल्यूशन हो, या फिर पानी में बढ़ता हुआ पोल्यूशन हो, या फिर हवा में बढ़ता हुआ पोल्यूशन, ये हर तरीके से कैसे हम तक एक जहर की तरह पहुंच रहा है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जमकर जो किया जा रहा है सब्जियों में, या फिर पानी में जो जा रही है, नदियों में जो वेस्ट जा रहा है इंडस्ट्रीज का, वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ये सारी चीज़ें पंकज जी ने हमें बताई। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी नहीं एक और खास एक्सपर्ट जो बायो एंजाइम्स पर काम कर रही हैं। जी हाँ, बायो एंजाइम्स पर सुचेता जी हमारे साथ जुड़ी, सुचेता साहू जी, जो कि बायो एंजाइम्स यानी घर में ऐसे कुछ उत्पाद बना रही हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो जनरली हमें केमिकल से भरपूर मात्रा में बाहर मिलते हैं, जिनको हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते हैं अपने बाथरूम्स को साफ करने के लिए ब्लीच के तौर पर या फिर कुछ और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के तौर पर, या फिर हम इंसेक्ट्स भगाने के लिए या फिर फर्टिलाइजर्स के तौर पर या फिर फिनाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुचेता जी बायो एंजाइम्स के तौर पर इनको बनाती हैं, अपने ही घर की बालकनी में इनको फर्मेंट करती हैं, वो भी सिर्फ कुछ छिलके, सब्जियां और थोड़े से गुड़ के साथ। और जब ये फर्मेंट हो जाता है तो इसको सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है लोगों तक, ताकि वो अपने घर को केमिकल फ्री रख सके। तो ये सुचेता जी से हमने जाना। डॉक्टर निधि डिडवानिया हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने बताया कि वेस्ट सेग्रीगेशन कितना ज़रूरी है। अगर ये वेस्ट सेग्रीगेशन हम नहीं करते हैं तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है हमें। जी हाँ, इस बारे में हमने बहुत सी बातें उनसे जानी और वेस्ट सेग्रीगेशन के सही तरीके भी जाने। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहीं और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स, कुछ इको क्लब से जुड़े, कुछ इको सवेरा से जुड़े, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमने कोशिश नहीं करी तो हम अपनी आगे आने वाली जनरेशंस या अपने बच्चों के लिए शायद एक ऐसा माहौल छोड़ जाएंगे जो बहुत बहुत खतरनाक होगा, जिसका एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है कि किस तरीके से नेपाल में आई बाढ़, बाकी जगहों पर आई दिक्कतें प्रॉब्लम्स दे रही हैं हम सभी को। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं हमारे बहुत ही खास गेस्ट से, या फिर कहें होस्ट से, जिन्होंने हमें बहुत कुछ गाइड किया है। डॉक्टर एनसी वाधवा जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर भी हैं। साथ ही डॉक्टर एनसी वाधवा जी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल भी हैं। सो आइए जानते हैं इनसे कुछ खास कि आखिर कैसे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन दिन रात कार्य कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए और समाज उत्थान के लिए।
1: सर, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका लक्ष्य क्या है?
2: डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन का गठन 11 अप्रैल 2014 को हमारे स्वर्गीय जो फाउंडर थे डॉक्टर ओपी भल्ला जी, जिनका देहावसान 16 सितंबर 2013 को हुआ था, उनकी स्मृति में ये संस्थापना हुई। और इसका जो लक्ष्य है इस फाउंडेशन का कि मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको सामाजिक दायित्व कहते हैं, वो जिम्मेवारी, वो दायित्व निभाने के लिए ये फाउंडेशन मुख्य रूप में अपने विद्यार्थियों को साथ जोड़कर, अपने अध्यापकों को, मैनेजमेंट को, या इससे जुड़े जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, हम सब मिलजुल कर इस प्रकार के कार्यों में भागीदारी डालते हैं जी। ताकि जो समाज के प्रति एक अच्छी प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो जिम्मेवारी है उसका हम मतलब उसका वो निभा सकें और लोगों के भलाई के कार्य हम कर सकें
1: जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन सोशल और एनवायरनमेंट की फील्ड में क्या क्या कार्य कर रहा है? कई सालों से कर रहा है, लेकिन आज इन प्रेजेंट क्या चल रही है?
2: दोनों ये बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र या पर्यावरण का क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में जैसे कि इस शहर में आप देखेंगे बहुत सारे स्लम्स हैं, गरीबी से नीचे रहने वाले बहुत सारे परिवार हैं, उनके पास पूरे संसाधन नहीं हैं अपने, मतलब इवन रोज़मर्रा के जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी उनके पास पूरे संसाधन नहीं होते। तो ऐसे वर्ग की सहायता के लिए, चाहे उनको कोई अनाज के जो है ना समय समय पर देना, उनको कुछ कपड़े, वस्त्र, दूसरी जीवन की आवश्यकताएं वो उनको मुहैया कराना, उनके मोहल्लों में सफाई की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं का अभाव है, तो वहाँ किसी ना किसी रूप में अपनी संस्था से देना, ये तो एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है। जहाँ तक पर्यावरण है, यस, बदलते वातावरण में, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, हवा दूषित हो गई, मिट्टी दूषित हो गई, पानी बुरी तरह से दूषित है, गर्मी बढ़ रही है, कभी अकाल की स्थिति होती है, कभी कम वर्षा, कभी अत्यधिक गर्मी, तो इस क्षेत्र में भी जो है ग्रीनिंग करके, पेड़ लगा के और जो वाटर बॉडीज हैं उनको प्रदूषित होने से बचाना, हवा में प्रदूषण ना हो, उसके लिए लोगों को जानकारी देना, ज्ञान बांटना, उनका जो है सेंसिटाइजेशन करना, ये सारे कार्य पर्यावरण से जुड़े हैं। और डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन ने अनेकों प्रोजेक्ट्स सामाजिक क्षेत्र में भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी, अभी जो

0: ताज़ा उदाहरण है कि शहर में क्योंकि सफाई अच्छी तरह नहीं होती और जो कूड़े का निस्तारण ठीक नहीं होता और लैंडफिल साइट्स की जो है गंदगी बढ़ती जा रही है। हमने एक इंद्रप्रस्थ कॉलोनी को अडॉप्ट किया कि वहाँ गीला और सूखा कूड़ा शुरू से ही घर से ही लोग उसका अलग अलग करके दें ताकि गीले कूड़े को उसको खाद में या एनर्जी में बदला जा सके और जो दूसरा खुश्क कूड़ा है जो रिसाइकल हो सके दोबारा इस्तेमाल में आ सके उसको निकाल लेना और जो बड़ा अक्रिय इनर्ट वेस्ट है वो लैंडफिल साइट्स में पत्थर है रोड़ी है जमीन है भूमि है कुछ और है शीशा है जिनका कोई दोबारा इस्तेमाल नहीं तो उनको गढ़ों में वो करना। तो ये प्रोजेक्ट्स कई रूपों में फाउंडेशन ने मतलब चालू किए हैं।
1: जी जी सर, मेरा अगला सवाल रहेगा आने वाले समय में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डॉक्टर ओ पी भल्ला फाउंडेशन लेकर के आ रहा है।
0: यूं तो हमने जो पुराने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को शिक्षा स्तर ऊंचा करना उनकी उनको सुविधाएं बांटना स्कूलों में जो है अतिरिक्त बुक्स कंप्यूटर गिफ्ट करना हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ चेकअप कैंप लगाना पर्यावरण के क्षेत्र में पेड़ लगाना पार्क डेवलप करना मियांवाकी फॉरेस्ट करना और दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके अतिरिक्त जो नए प्रोजेक्ट्स हम अब आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। रोड एक्सीडेंट्स एक मेजर प्रॉब्लम है, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही लोगों की मौतें हो रही कोई अपंग हो रहा इससे प्रोडक्टिविटी का लॉस है मैंडेज का लॉस है। तो एक तो रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि एक रोड सेफ्टी पार्क डेवलप किया जाए लोगों को इसका ज्ञान वो किया जाए कुछ चौराहे जहां ब्लाइंड कर्व्स हैं या ब्लैक स्पॉट्स हैं बार बार एक्सीडेंट होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएं वहां वो सभी प्रयास किए जाएं चाहे रोड की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है वहां चाहे लाइटिंग बढ़ाना है चाहे रेड लाइट्स लगाने हैं। तो एक तो रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट एक ऐसा है कि हमने ऑलरेडी कौशल और मार्गदर्शन प्रोग्राम ये जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान या दूसरी स्किल्स मुहैया कराना या इन बच्चों को के आगे प्लस टू के बाद इनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए इसको हम करियर काउंसलिंग या मार्गदर्शन कहते हैं। इन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हम अपने मानव रचना प्रांगण में हर शनिवार जब हमारी लैब्स फ्री होती हैं इनको बसेस से लाते हैं फिर छोड़ते हैं ये कुछ कम्बरसम तरीका है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बस या वैन ली जाए जिसमें वोकेशनल एजुकेशन जो कंप्यूटर का ज्ञान है बच्चों को या मार्गदर्शन है कि भिन्न भिन्न गांवों में भिन्न भिन्न एरियाज़ में जहाँ गवर्नमेंट स्कूल हैं एक दिन किसी गांव में एक दिन किसी गांव में और ऐसी वैन या बस में 20 लैपटॉप लगे हुए हों तो एक इस प्रकार का मोबाइल हम वो करना चाहते हैं। बाकी हम जैसे आपको बताया पार्क्स कई जगह कर रहे हैं मियांवाकी फॉरेस्ट या मियांवाकी गार्डन ये जापानीज तरीका है जिसमें ग्रूव्स में मतलब घने पेड़ लगाए जाते हैं। फरीदाबाद क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रदूषित सिटी है इसलिए यहाँ छिद मतलब दूर दूर पेड़ ना लगा के हम मियांवाकी पार्क के रूप में कई जगह ये प्रयास करना चाहते हैं ताकि अधिक पेड़ लगें और फरीदाबाद के जलवायु का सुधार हो यहाँ की हवा में जो प्रदूषित मात्रा है वो कम हो और लोगों का जीवन सुरक्षित रहे सेफ रहे।
1: जी सर, यूथ को जोड़ने के लिए आप क्या क्या कदम जो हैं वो उठा रहे हैं क्योंकि आज का जो युवा है जो यूथ है वो जुड़ेगा नहीं जब तक तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा तो उनको जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
0: जो डॉक्टर ओ पी भल्ला फाउंडेशन है इसका मूल मंत्र यही है कि नौजवानों को विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में समाज कल्याण के कार्यों में जोड़ें उनको अगर इन गतिविधियों में ना लगाए जाए तो आप देखते हैं कि सारा दिन उनका कंप्यूटर पे वो या मोबाइल पे वो चलता रहता है। अननेसेसरी यस, आईटी क्षेत्र बहुत सहायक है ज्ञान बांटने में, हमारी स्किल डेवलपमेंट में, बट उसका अत्याधिक मोबाइल टाइप इन इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना विद्यार्थियों को जो एक्टिव लाइफ है, जो सामाजिक वातावरण है और जो मुद्दे हैं उनसे दूर हटाता है, उनके बिहेवियर में नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, तो उनको पॉजिटिव वाइब्स उनमें वो करने के लिए उनकी व्यक्तित्व में अच्छा सकारात्मक तरंगे वो करने के लिए हम उन्हें फाउंडेशन से जुड़ी गतिविधियों के साथ जोड़ते हैं, उनको वॉलंटियर बनाते हैं, उनको पर्यावरण रक्षक के रूप में और या ओल्ड एज होम्स ले जाना, ऑर्फनेजिस में ले जाना और जो सामाजिक कल्याण के केंद्र हैं वहाँ ले जाना। जब वो ये सारा वातावरण देखते हैं उनमें जो है सिंपथी की, एम्पथी की, कंपैशन की फीलिंग्स डेवलप होती है, उनको हम कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं, जैसे समर वकेशंस आते हैं उन्हें कहते हैं कि कोई सोशल प्रोजेक्ट बनाइएगा जिससे आप समाज को वापस क्या दे सकते हैं, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो ऐसे प्रयोगों से उनको हम सकारात्मक गतिविधियों में जोड़ते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी, समाज को वापस देने की प्रवृत्ति, हिम्मत से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का मुकाबला करने की, किसी भी कोई अगर संकट में स्थिति है तो वो हौसला रखें और उसके साथ जूझें। जब उनके चरित्र में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी तो वो हर प्रकार से सबल बनते जाएंगे और इस प्रकार उनके जो व्यक्तित्व का निखार होगा, उनके शिक्षा के स्तर में तो सुधार होगा ही होगा, उनके अपने कैरियर में या सामाजिक जीवन में लोगों को वापस देने की जो उनकी जो एक गुण है वो उसमें विकसित होगा।
1: सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर कोई संस्था आपके साथ जुड़ना चाहती है तो वो किस प्रकार डॉक्टर ओपी बिरला फाउंडेशन के साथ जुड़ सकती हैं?
0: मैं आपकी सूचना के लिए और श्रोताओं की सूचना के लिए बताना चाहूँगा कि हम फाउंडेशन को ऑलरेडी हम लोग फरीदाबाद में कम से कम 2 दर्जन NGOs जो कोई सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जैसे ओल्ड एज होम है या ऑर्फनेजेस हैं या जो रिलीज चाइल्ड लेबर का सेंटर है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का एक केंद्र है, डेफ एंड डम का है, एनिमल शेल्टर है, कुछ स्लम के बच्चों को पढ़ाने के इस प्रकार के केंद्र बने हुए हैं, इन सब संस्थाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनको मोरल सपोर्ट देते हैं, उनको कई बार उनकी आवश्यकताओं के जो साधन हैं वो हम कई बार धन से, कई बार इक्विपमेंट से वो करते हैं। बाकी भी संस्थाओं को जो हमारे को हमारी गतिविधियों के थ्रू जानकारी हासिल करके हमें संपर्क करते हैं तो सदा हम उनको सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि और इस प्रकार की संस्थाएं रचनात्मक कार्य करें, समाज सेवा के कार्य करें। हर संस्था जो खुले मन से आम जनता के लिए कोई भी कल्याणकारी प्रोग्राम वो कर रही है, हम सदा उनके साथ खड़े मिलते हैं। तो हमारा ऐसी सब संस्थाओं के लिए स्वागतम है। हम सदा जो हमारे बल होगा, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे साधन है, अगर हम इस योग्य हैं कि उनकी सहायता कर सकें तो सहर्ष हम इस कार्य में उनका हाथ बटाएंगे।
1: थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरीके से पर्यावरण को बेहतर करने के लिए डॉक्टर ओपी बिरला फाउंडेशन कार्य कर रहा है, अलग अलग कामों के जरिए समाज को बेहतर दिशा देने के लिए, बेहतर रूप देने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी सीरीज़ में हमने बहुत से और भी एक्सपर्ट से बात करी, जैसे डॉक्टर विनीता शर्मा जो कि एनवायरनमेंट टॉक्सिकेंट और ह्यूमन हेल्थ पर कार्य कर रही हैं, इनका कार्य इस फील्ड से जुड़ा होता है। वैसे ये प्रोफेसर हैं मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ में, और इन्होंने भी हमें बताया कि किस तरीके से वेस्ट सेग्रीगेशन आपके पर्यावरण के लिए एक बेहतर प्रयास है जिसको इतने सालों से हम नहीं कर रहे। अगर हम करेंगे तो ये इस पर्यावरण को थोड़ा सा तो बेहतर बना ही देगा। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी सचान भी जुड़ी, जिन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकल रीयूज के बारे में भी जानकारी दी कि कैसे ये सर्कुलर इकोनॉमी हमारे पर्यावरण को और बेहतर बना सकती है। कोशिश तो हमने पूरी करी कि हम आप तक ये जानकारी अच्छे तरीके से पहुँचा पाएँ, लेकिन उम्मीद है ये सारी जानकारियाँ मिलने से आपने कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ तो जाना ही होगा। अगर वाकई इन कार्यक्रमों से आपके जीवन में बदलाव आया है तो ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा 8010781078 पर मैसेज करके या फिर कॉल करके। कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में बस इतना ही। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, PTC फाइनेंस लिमिटेड और इको क्लब और अपने सभी एक्सपर्ट्स का जो हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े और उन्होंने बहुत सारी विभिन्न जानकारियां वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़ी हुई हमारे साथ शेयर की। कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली किसी सीरीज में और भी बहुत सी बातें होंगी, शायद कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर जिन पर चर्चा करनी बेहद आवश्यक है। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। This is Deeksha signing off.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार।
2: नमस्कार, आज मैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, ऑर्गन इंडिया की सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, आप सभी का इस कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर राजीव सेठिया। डॉक्टर सेठिया मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट के यूनिट हेड है और सीनियर कंसल्टेंट की तरह कार्य

0: बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो जो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, उनको ब्लड से सेपरेट करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है किडनी। इसके अलावा जो हमारे बॉडी का पीएच, जिसे मैं कहूँ कि एसिडिटी लेवल, भी मैनेज करने का काम करते हैं। तीसरा इसका काम होता है कि खून बनाने के लिए एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। और चौथा काम होता है कि ब्लड प्रेशर मैनेज करने में, मॉनिटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी इसका रोल होता है। तो ये इस किडनी के मुख्य फंक्शन है, मुख्य काम है।
1: यदि हम बीमारियों की बात करें तो किडनी की ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिससे एक व्यक्ति ग्रस्त हो सकता है?
0: किडनी की कॉमन बीमारियों में, जो मैं यूरोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी में गांठ या कैंसर बन गया है, किडनी में इन्फेक्शन है, इस तरह की बीमारियां कॉमन है।
1: गुर्दा में पथरी की बीमारी के बारे में बहुत सुना जाता है, लाइक बहुत ही लोग इस कंप्लेंट के साथ या इस शिकायत के साथ आते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लक्षण क्या होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जताते हैं कि उनको पथरी की बीमारी हो सकती है?
0: जब भी किडनी में पथरी बनती है तो वो कई तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकती है, जैसे दर्द होना। दर्द ज़्यादातर किडनी स्टोन का जो दर्द होता है वो फ्लैंक्स रीजन में होता है, बगल में, बैक साइड में, और वो पीछे से कई बार आगे की तरफ आता है। दर्द के अलावा कई बार पेशाब में खून भी आ सकता है, कई बार स्टोन की वजह से इन्फेक्शन होता है तो बुखार भी आता है, पेशाब में जलन भी रह सकती है, बार बार पेशाब भी करना पड़ सकता है। ये मुख्य सिम्टम्स हैं स्टोन के, किडनी स्टोन के।
1: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सेठिया, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट के, और वो आज हमें बता रहे हैं किडनी और किडनी की बीमारियों के बारे में। सो डॉक्टर सेठिया, ब्रेक में जाने से पहले हम किडनी की पथरी के बारे में बात कर रहे थे, किडनी स्टोन या गुर्दा में जो पथरी हो जाती है, तो ये पथरी बनती कैसे है, आप यदि हमारे श्रोताओं को ये बताएं।
0: डॉक्टर गीतिका, पथरी बनने की कई वजह हैं, उसमें से सबसे जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो कम पानी पीना है। जब यूरिन ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है तो उसमें जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो किडनी में जम जाते हैं, रुक जाते हैं, और उनके ऊपर लेयर बाय लेयर स्टोन बनते रहते हैं। तो जो सबसे कॉमन रीज़न है वो कम पानी पीना है। इसके अलावा कई बार किडनी में कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे यूरिन का स्टेसिस होता है, पेशाब रुका रहता है, तो रुके हुए पेशाब में स्टोन बनते हैं। कई बार कुछ जेनेटिक बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें स्टोन बनने का टेंडेंसी होता है बॉडी में, उसकी वजह से भी कई बार स्टोन बनते हैं। कई बार कुछ किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन बनते हैं। ये वो मुख्य रीज़न है।
1: तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, और या हम कैसे पता चलता है, आप कौन सी ऐसी जांचें की जाती है व्यक्ति की जिससे कि पथरी का पता चलता है?
0: देखिए, जब भी कोई मरीज हमारे पास पेन, दर्द की कंप्लेंट लेके आता है फ्लैंक रीजन में, फ्लैंक मतलब साइड में, बगल में, और या फिर पेशाब की कोई दिक्कत आती है, दर्द के साथ उसको पेशाब में खून आ रहा है, बुखार है, बार बार पेशाब करना पड़ रहा है, पेशाब करने में दर्द है, तो हमें स्टोन का सबसे पहला ख्याल आता है कि शायद स्टोन हो सकता है। तो उसकी जांच के लिए सबसे पहले हम पेशाब की जांच करवाते हैं, यूरिन का रूटीन टेस्ट करवाते हैं। रूटीन टेस्ट में ज़्यादातर केसेस में यूरिन में पस ज़्यादा मिलती है। एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में किडनी में जब भी कोई स्टोन होता है तो उसमें पकड़ में आता है। कई बार स्टोन नहीं दिखता लेकिन स्टोन की वजह से किडनी में जो सूजन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, वो पकड़ में आता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्सरे करवाते हैं, और अगर और भी कंफर्म करना होता है तो फिर हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं।
1: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सेठिया, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी।

0: ट्रांसप्लांट के। सो ये बात हुई कि कैसे हम पथरी का पता लगाते हैं कि किसी को पथरी है या नहीं है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पथरी हो गई है, आपको पता चल गया, तो उसका इलाज कैसे कर, मतलब उसका इलाज क्या होता है?
1: देखिए डॉक्टर गीति का इलाज डिपेंड करता है कि स्टोन किस जगह पे है, कितना बड़ा है। पहले हम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या फिर सीटी करके देख लेते हैं कि किस जगह पे स्टोन है और फिर उसका इलाज डिसाइड करते हैं। जब भी हम इंटरवेंशन करते हैं तो उससे पहले ये इंश्योर करते हैं कि यूरिन में किसी तरह कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर पथरी की वजह से कुछ इन्फेक्शन है तो पहले एंटीबायोटिक देके वो इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर मरीज हमसे पूछते हैं कि कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे कि स्टोन घुल जाए, कट के बाहर निकल जाए। तो बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी इलाज नहीं है, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे कि स्टोन घुल के, कट के, बह के पानी में, पेशाब में निकल जाए। स्टोन जो 5 mm से छोटे होते हैं या 7 mm तक भी कई बार वो पेशाब के जरिए बह के निकल जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर ठीक से पानी पियेंगे, खूब एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, अच्छे से लिक्विड्स लेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि छोटे स्टोन 5 mm 7 mm तक के जो स्टोन है वो पेशाब में बह के निकल जाएंगे। जब स्टोन का साइज इससे ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर उसको दूरबीन से निकालते हैं। आजकल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिनके चलते हम बिना चीरा लगाए स्टोन को दूरबीन से निकाल लेते हैं। दूरबीन को किडनी के अंदर लेके जाते हैं या यूरेटर के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे स्टोन को लेज़र से तोड़ देते हैं, चूरा कर देते हैं और रेत बना देते हैं, और जिससे कि वो बह के निकल जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्टोन के टुकड़ों को बाहर निकाल के टेस्टिंग के लिए भी भेजते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में, बिना चीरा लगाए, बिना किसी स्कार के, बिना किसी होल के दूरबीन से ही ज़्यादातर स्टोन ट्रीट कर लिए जाते
0: हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सेठिया के साथ। सो डॉक्टर सेठिया, आपने हमें बताया कि कैसे किडनी का पथरी बनता है, क्या उसके कारण होते हैं और क्या जांचें करके हम उसका पता लगा सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात कि हम पथरी की बीमारी हो ही ना, ऐसे कौन से आहार विहार का पालन करें कि जिससे पथरी से बचा जा सके?
1: डॉक्टर गीतिका, बचने के लिए अब प्रिवेंटिव मेजर्स में मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि हमको लिक्विड एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। लिक्विड का मतलब है जो भी तरल पदार्थ अच्छे लगते हैं, पानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी ही पीना है, जो भी लिक्विड फॉर्म में लेमन जूस, प्लेन वाटर, बटर मिल्क, छाछ, और सर्दियों में है तो सूप वगैरह, तो ज़्यादा लिक्विड की मात्रा लेने से यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगा और स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली एडवाइस तो है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। दूसरा है एडवाइस ये है कि खाने में नमक की मात्रा संतुलित रखें या कम रखें। नमक की मात्रा ज़्यादा होने से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा ये एडवाइस दूंगा कि जंक फूड जितना हो सकता है अवॉइड करें, जितना कम मात्रा मिले, स्पेशली जिनको स्टोन बार बार बनते हैं वो उनको अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ खाने के चीज़ें ऐसे हैं जिनमें स्टोन बनने की टेंडेंसी जिनको है उनको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भी खाने में बैन नहीं करना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि स्टोन किस चीज़ का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस एडवाइस नहीं करते हैं। इन जनरल जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि मॉडरेट अमाउंट में लें, बंद ना करें। कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं, कुछ बीज वाले जो सब्जियां हैं या फ्रूट हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनको मॉडरेट अमाउंट में लें, लेकिन बंद कुछ नहीं करें। जब स्टोन की केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट आती है उसके बाद हम उनको ठीक से डाइटरी एडवाइस बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों को कम मात्रा में लेना है। बंद, पूर्णतया बंद करने के लिए हम उनको कभी एडवाइस नहीं करते, मात्रा कम कर देते।
0: इन सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे श्रोताओं को पथरी और पथरी से जितनी भी संबंधित बातें हैं उनका आज ज्ञान हो गया होगा और वो सब अपना बेहद ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
2: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा। और आप सभी को पता है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फील गुड फील लाइव। जी हाँ, और इसी के साथ मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आ जाते हैं हम आपके लिए हर हफ्ते, किसी नई जर्नी को, किसी नई स्टोरी को जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती है बल्कि अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है। और दोस्तों मैं आपको सही बताऊं, लाइफ में ना हम सबके पास कुछ ना कुछ सपने होते हैं, सबके ड्रीम्स होते हैं। हम अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई राइटर बनना चाहता है, तो कोई बस इतना चाहता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिले और हम अपनी मुकाम को हासिल कर सके। लेकिन एक सवाल कि क्या हम अपने सेफ करियर को छोड़कर अपने पैशन को चूज करने की हिम्मत कर सकते हैं? आज के सक्सेस मंत्रा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी की, जी हाँ, जिन्होंने एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर से अपनी राइटिंग जर्नी की तरफ कदम बढ़ाया और आगे चलकर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर राइटर में से एक अपनी जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिनकी, उनका नाम है चेतन भगत। जी हाँ, ये नाम आपने सुना होगा मुझे पता है, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उन्हें सिर्फ एक राइटर के रूप में ही नहीं जानेंगे बल्कि हम जानेंगे कि उस यंग चेतन भगत को जो दिल्ली में बड़े हुए, आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में चले गए। और एक तरफ था उनका सक्सेसफुल करियर और दूसरी तरफ थी उनकी राइटिंग करने की पैशन। और फिर आया वो मोमेंट जब उन्होंने अपनी पहली नॉवल 5 Point Someone लिखी। शायद उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये कहानी एक दिन इतनी पॉपुलर होगी कि इससे इंस्पायर होकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 Idiots बन जाएगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, उनकी और भी बुक्स आई, उनकी स्टोरीज पर मूवीज भी बनी, उन्हें अवार्ड्स ऑन नेशनल लेवल तक के रिकॉग्नाइजेशन भी मिले। और वो सिर्फ राइटर ही नहीं बल्कि स्क्रीन राइटर, कॉलमनिस्ट और पब्लिक स्पीकर के रूप में भी पहचाने गए। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल स्टोरी की तरह चेतन भगत की जर्नी में भी चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म और डिफिकल्ट सिचुएशन भी आई, डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़े उन्हें। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे उनको, बहुत करीब से जानेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर राइटर कैसे बन गए, उनकी बुक्स ने यंग इंडिया को कैसे कनेक्ट किया, उनकी स्टोरीज सिल्वर स्क्रीन तक कैसे पहुंची और उनकी जर्नी हमें सक्सेस के बारे में क्या क्या सिखाती है। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम चेतन भगत की जर्नी पर चलने वाले हैं। पर उसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही प्यारे प्यार से गाने भी। तो गाने भी सुनेंगे और उनकी जर्नी को भी जानेंगे, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, आज सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ मैं और जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत की। जी हाँ, चेतन भगत की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं और अब जब हम चेतन भगत का नाम सुनते हैं ना तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक राइटर की इमेज क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन राइटर बनने से पहले उनकी जर्नी एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ही जा रही थी। जी हाँ, चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 को दिल्ली में हुआ था। उनकी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल धोलाकुआं से हुई। स्कूल के बाद उन्होंने एक ऐसा करियर चूज किया जो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है और वो है इंजीनियरिंग। जी हाँ, उन्होंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उनकी जर्नी रुकने वाली कहाँ थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करना चाहते हैं और फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया IIM अहमदाबाद में, जहाँ से उन्होंने फिर MBA करा। और अब जरा इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट जो IIT और IIM जैसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ा ही कर चुका हो, उनके सामने करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन चेतन भगत ने भी एक कॉर्पोरेट करियर को ही चूज किया था उस समय। MBA के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना शुरू किया और हांगकांग में गोल्डमैन सच के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। यहाँ तक उनकी स्टोरी एक ट्रेडिशनल सक्सेसफुल करियर जैसी ही लगती है। लेकिन गुड एजुकेशन, टॉप इंस्टीट्यूशन और एक रेप्यूटेटेड कॉर्पोरेट जॉब, लेकिन इसी बिजी कॉर्पोरेट लाइफ के बीच उनके अंदर एक राइटर भी अलाइव था। जी हाँ, उन्हें राइटिंग का इंटरेस्ट था और वो अपने आइडियाज और एक्सपीरियंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहते थे। और धीरे धीरे उनके माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं एक नॉवल लिखूं। और बस फिर क्या, यही थॉट आगे चलकर उनकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल 5 Someone पर काम शुरू किया। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का अपनी फर्स्ट बुक लिखना शायद उस टाइम पर एक सिंपल सा डिसीजन लगा हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बुक उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल देगी। और दोस्तों, आगे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं कि इस बुक से उनकी लाइफ में कैसे वो टर्निंग पॉइंट आया, कैसे उनकी जर्नी बदली, उनकी जर्नी का ये रियल टर्निंग पॉइंट क्या बना, तो इसके बारे में भी जानेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel alive.

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास लोगों की जर्नी जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अपनी जर्नी से इंस्पायर करते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं ना, तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस आपके अंदर होनी चाहिए वो मेहनत करने की लगन और वो डेडिकेशन कि हाँ, आप इस काम को पूरा कर ही मानेंगे। तो बस इसीलिए अपने सपनों को ना पूरा करिए, अपने अंदर का जो जोश है, जो आग है ना, उसको बुझने मत दीजिए, उस पर काम करते रहिए। आप देखिए, आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और इसी के साथ आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों ने इनका नाम बहुत सुना है, बहुत जानते हैं आप इनको, जिनका नाम है चेतन भगत। जी हाँ, चेतन भगत की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे चेतन भगत ने IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाया, और हांगकांग में गोल्डमैन सैक्स के साथ काम भी किया। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ के बीच उनके अंदर एक राइटर भी था, और फिर उन्होंने लिखी अपनी पहली नॉवल यानी कि 5 Point Someone। ये नॉवल 2004 में पब्लिश हुई, और इसका कनेक्शन भी इंटरेस्टिंग था। स्टोरी 3 IIT स्टूडेंट के अराउंड थी, उनके कॉलेज लाइफ, एकेडमिक फ्रेंडशिप प्रेशर और उन सपनों के अराउंड जो मार्क्स से कहीं ज्यादा बड़े थे। चेतन भगत ने एक ऐसी स्टोरी लिखी जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं थी, लैंग्वेज सिंपल थी, कैरेक्टर्स यंग थे और सिचुएशन रिलेटेबल थी। शायद इसी वजह से यंग रीडर्स ने इस बुक से बहुत ही जल्दी कनेक्शन फील करना शुरू कर दिया था। एक न्यू राइटर की फर्स्ट नॉवल का इतना पॉपुलर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन चेतन भगत के लिए ये सिर्फ एक बुक की सक्सेस ही नहीं थी, ये उनकी आइडेंटिटी चेंज होने की बिगनिंग थी। और यहीं से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज प्रूव की कि राइटर बनने के लिए सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड या फिर कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग जरूरी नहीं होगी, बल्कि अगर आपकी स्टोरी लोगों को रियल फीलिंग और एक्सपीरियंस से कनेक्ट करवा पाए ना, तो सिंपल वर्ड्स भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 5 Point Someone की जर्नी का एक और बड़ा चैप्टर था जो कुछ साल बाद सामने आया। 2009 में राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 Idiots रिलीज हुई। फिल्म ने स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, फ्रेंडशिप और ड्रीम्स को एक कम्प्लीटली मेमोरेबल वे में प्रेजेंट किया। ये फिल्म चेतन भगत की 5 Point Someone से इंस्पायर्ड थी। जी हाँ, और 3 Idiots की सक्सेस ने चेतन भगत के नाम को और भी ज्यादा हाउस होल्ड तक पहुंचा दिया। सोचिए, जिस स्टोरी को एक राइटर ने अपने शब्दों में क्रिएट किया था, वही स्टोरी इंस्पायर्ड इतने बड़े स्क्रीन पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच रहा था। लेकिन चेतन भगत की जर्नी में 5 Point Someone के बाद भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। उनकी नेक्स्ट बुक्स आई, उनकी स्टोरीज ने अलग अलग थीम को टच किया, और धीरे धीरे वो इंडिया की मोस्ट रिकग्नाइज्ड ऑथर्स में काउंट होने लगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आगे जानेंगे बहुत सारी बातें उनके बारे में कि उनकी बाकी की जो बुक्स थी, उन बुक्स से बॉलीवुड तक पहुंचने वाली स्टोरीज कौन कौन सी रही, बताऊंगी ये भी मैं आपको। पर आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनिए बहुत ही प्यारा सा गाना, फील गुड फी

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं चेतन भगत की जर्नी के साथ, बहुत सारी बातें जान रहे हैं आज हम उनके बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने बात की कि चेतन भगत की फर्स्ट नॉवल 5.7 की, जिसने उन्हें एक सक्सेसफुल राइटर के रूप में एस्टेब्लिश किया, लेकिन ये तो सिर्फ बिगनिंग थी। चेतन भगत ने एक के बाद एक स्टोरीज लिखी और उनकी राइटिंग का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि उनकी कई स्टोरीज का कनेक्शन बॉलीवुड से भी बना। जी हाँ, 2005 में आई उनकी सेकेंड नॉवल वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर। जी हाँ, स्टोरी कॉल सेंटर में काम करने वाले यंग पीपल के अराउंड थी। वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप्स और ड्रीम्स और लाइफ के स्ट्रगल को उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। बाद में इसी नॉवल पर बेस्ड फिल्म आई हेलो, जिसे रिलीज किया गया। फिर आई द 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। इस स्टोरी में फ्रेंडशिप, बिजनेस, क्रिकेट और पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ एक सीरियस सोशल बैकड्रॉप भी था। इस नॉवल से इंस्पायर्ड फिल्म आई काईपोचे। जी हाँ, काईपोचे बनी, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से ही अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद चेतन भगत की एक और पॉपुलर बुक आई, वो आई 2 States। ये स्टोरी लव के साथ फैमिली और कल्चरल डिफरेंस को भी एक्सप्लोर करती है। डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले दो लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज, उनके कल्चर्स भी स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं। 2014 में 2 States नाम से फिल्म रिलीज हुई और ये भी ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। फिर आई फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। जी हाँ, एक लव स्टोरी जिसमें लैंग्वेज, बैकग्राउंड और सोशल डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस नॉवल पर भी फिल्म बनी। तो दोस्तों, अगर हम चेतन भगत की जर्नी देखते हैं तो एक पैटर्न क्लियरली नजर आता है कि उन्होंने स्टोरीज उन लोगों के बारे में लिखी जिनके बीच में हम खुद को देख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, फ्रेंड्स, लवर्स और फैमिलीज। और शायद इसी रिलेटेबिलिटी ने उनकी बुक्स को रीडर्स तक और उनकी स्टोरीज को स्क्रीन तक पहुंचाया है। लेकिन सक्सेस के साथ क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म भी आए हैं। उनकी राइटिंग को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस रहे हैं और हर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की तरह उन्हें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने लिखना कंटिन्यू रखा। जी हाँ, और यही कंसिस्टेंसी उनकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगले सेगमेंट में होगी उनके कुछ अलग फेस की बातें। चेतन भगत ने अपनी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर को पीछे छोड़कर फुल टाइम राइटिंग को कैसे चूज करा, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.FM और मैं हूँ आरजी सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए हर हफ्ते कुछ नई मोटिवेशनल स्टोरीज। जी हाँ, मोटिवेशनल जर्नी आपके साथ हम शेयर करते हैं और उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं। और आज जिसकी जर्नी के साथ हम चल रहे हैं वो है चेतन भगत। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने स्टोरी में देखा कि चेतन भगत ने IIT और IIM जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाया और साइड बाय साइड राइटिंग को भी कंटिन्यू रखा। लेकिन अब आता है उनकी लाइफ का वो डिसीजन जहां उन्होंने अपने करियर की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। जरा सोचिए, आपने इंजीनियरिंग की है, MBA भी किया है, एक रेप्यूटेटेड इंटरनेशनल कंपनी में जॉब भी करते हैं, एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर है और प्रोफेशनली लाइफ में अच्छा भी चल रहा है सब कुछ। ऐसे में अगर आपको अपने पैशन और सिक्योर करियर में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप क्या करेंगे? चेतन भगत ने राइटिंग को चूज किया। जी हाँ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अपनी जॉब को ग्रेजुअली लीव कर दिया और 2009 में फुल टाइम राइटिंग की तरफ आ गए। ये डिसीजन सिर्फ जॉब चेंज करना ही नहीं था, ये एक माइंडसेट चेंज करना था, क्योंकि राइटिंग तब उनके लिए सिर्फ हॉबी नहीं रह गई थी। उनकी बुक्स रीडर्स तक पहुंच रही थी, उनकी स्टोरीज पॉपुलर हो रही थी और उन्हें एक राइटर के रूप में अपनी आइडेंटिटी भी मिल रही थी। और उनकी राइटिंग जर्नी भी सिर्फ नॉवेल्स तक ही लिमिटेड नहीं रही थी। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स लिखे, पब्लिक इश्यूज और यंग जनरेशन के टॉपिक्स पर अपनी ओपिनियंस भी रखी और स्क्रीन राइटिंग में भी काम किया। उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट फिल्म काईपोचे इससे भी जुड़ा हुआ है। फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें रिकग्नाइजेशन भी मिला और फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिला। यानी जो पर्सन कभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना फ्यूचर देख रहा था, वही पर्सन कुछ सालों बाद स्टोरीज और सिनेमा के थ्रू एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी बना चुका था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझना जरूरी है कि पैशन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस तुरंत मिल जाएगी। चेतन भगत की जर्नी में भी क्रिटिसिज्म आया, उनकी राइटिंग को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस भी रहे हैं लोगों के, लेकिन उन्होंने अपना क्रिएटिव वर्क कंटिन्यू रखा। और शायद सक्सेस का रियल मीनिंग भी यही है कि अपने फैसलों पर काम करते रहना चाहिए, चाहे लोग आपके डिसीजन को समझें या ना समझें। चेतन भगत की जर्नी हमें एक सिंपल सा लेसन भी देती है कि अगर आपके अंदर किसी काम को लेकर रियल पैशन है तो उसे सिर्फ कभी ना कभी हो जाएगा के लिए मत छोड़िए। उस पैशन को स्किल बनाइए और उस पर काम कीजिए, और जब राइट टाइम आएगा ना तो अपने डिसीजन पर बिलीव करने की हिम्मत भी रखिएगा। और दोस्तों, चेतन भगत की स्टोरी में सक्सेस के साथ रिकग्नाइजेशन भी आई है, अवार्ड्स, ऑनर्स और नेशनल लेवल अचीवमेंट्स भी मिले हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जानेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं चेतन भगत की जर्नी के साथ, और अब तक हमने चेतन भगत की जर्नी के कई सारे चैप्टर्स को देखा है कि कैसे उन्होंने दिल्ली से शुरुआत की अपनी पढ़ाई की, IIT में पढ़ाई की और IIM तक का सफर तय किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर भी बनाया, राइटिंग की तरफ कदम और फिर उनकी स्टोरीज का रीडर्स से लेकर बॉलीवुड तक पहुंचना। लेकिन जब कोई पर्सन अपनी फील्ड में कंटिन्यूसली काम करता है तो एक वक्त के बाद उसके काम को रिकग्नाइजेशन भी मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो काम करते हैं उसका एक एंड रिजल्ट ज़रूर आता है। अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिजल्ट भी ज़रूर आता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि चेतन भगत की जर्नी में भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स भी आए हैं। जी हाँ, उनके करियर का एक इंटरेस्टिंग माइलस्टोन राइटिंग से पहले भी आ चुका था। 1997 में IIM अहमदाबाद ने उन्हें बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड दिया था, यानी कि एकेडमिक्स और लीडरशिप के लेवल पर भी उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है। राइटिंग में आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, और फिर 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टाइम 100 लिस्ट में इंक्लूड किया, जो दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एनुअल लिस्ट है। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन ऑथर का नाम दुनिया के इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के साथ आना, ये भी राइटर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। उनकी स्टोरीज का कनेक्शन सिनेमा से भी स्ट्रांग होता है। काइपोचे के स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें रिकग्नाइजेशन मिला, फिल्म ने नेशनल लेवल पर अटेंशन को अट्रैक्ट किया, और चेतन भगत को स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिला। 2014 में उन्हें CNN और IBN इंडिया ऑफ द ईयर एंटरटेनमेंट रिकग्नाइजेशन भी मिला है, और उनके करियर के इंपॉर्टेंट ऑनर्स में से एक है IIT दिल्ली एलुमनाई अवार्ड, जो उन्हें 2018 में दिया गया था। यानी जिस इंस्टीट्यूट में कभी चेतन भगत एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ते थे, ईयर्स लेटर वही इंस्टीट्यूट उनके प्रोफेशनल अचीवमेंट को ऑनर कर रहा था। दोस्तों, अवार्ड्स कभी किसी जर्नी का ब्यूटीफुल पार्ट हो सकता है, लेकिन अवार्ड्स मिलना सक्सेस का फाइनल पॉइंट नहीं होता है। चेतन भगत की स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि उनकी जर्नी एक सिंगल फील्ड तक लिमिटेड नहीं रही। इंजीनियरिंग, MBA करना, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना, नॉवेलिस्ट बनना, कॉलमनिस्ट बनना और स्क्रीन राइटर और पब्लिक स्पीकर, उन्होंने अपने करियर में मल्टीपल रोल्स को एक्सप्लोर किया है, और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी यंग जनरेशन के लिए काफ़ी रिलेटेबल भी है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत से यंग पीपल ये सोचते हैं कि अगर एक करियर चूज कर लिया तो वही करियर लाइफ भर कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन चेतन भगत की जर्नी हमें दिखाती है कि करियर में डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल है। बस जरूरी है कि आप अपने डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और अपने चूजन पाथ पर कंटिन्यूसली काम करें। और दोस्तों, अवार्ड्स और सक्सेस के बाद एक और चीज ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की जर्नी में आती है, वो है क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे और भी बातें हैं इस प्रोग्राम को एंड तक लेकर के जाने का अब समय आ गया है, पर उससे पहले जाने से पहले मैं आपसे कुछ और भी बताऊंगी, इनके सक्सेस मंत्र भी बताऊंगी। तो आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ, और आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज इस एपिसोड में हमने बात की चेतन भगत की, उनकी जर्नी के साथ चले और अब बहुत ही करीब से समझने की कोशिश की एक ऐसे स्टूडेंट की जर्नी जिसने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की, IIM अहमदाबाद से MBA किया और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे सक्सेसफुल करियर को चूज किया। लेकिन उनके अंदर का एक राइटर भी था, उन्होंने अपने फर्स्ट नॉवल 5.1 लिखी और फिर राइटिंग उनकी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। उसके बाद उन्होंने वन नाइट एट द रेट, दी कॉल सेंटर, दी थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, टू स्टेट्स रिवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, वन अरेंज्ड मर्डर, 400 डेज और दूसरी बुक्स रीडर्स तक पहुंचाई है। उनकी स्टोरीज का कनेक्शन बॉलीवुड से भी बना। हेलो, काइपोचे, टू स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्म्स उनकी बुक से इंस्पायर्ड या फिर अडेप्टेड रही है और 5.1 ने 3 इडियट्स को इंस्पायर किया है। उन्हें अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन भी मिले हैं। टाइम 100 में इंक्लूजन से लेकर IIT दिल्ली के एलुमिनाई अवार्ड और स्क्रीन प्ले के लिए रिकॉग्नाइजेशन तक। लेकिन दोस्तों, चेतन भगत की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन अवार्ड्स या फिर बेस्ट सेलिंग बुक नहीं है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है अपनी जर्नी को डिफाइन करने की हिम्मत रखना। और कभी कभी हम अपने करियर इसलिए चूज करते हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है कि ये सक्सेसफुल करियर रहेगा, लेकिन सक्सेस सिर्फ एक सैलरी या फिर एक बिग डेजिनेशन या फिर एक रेपुटेटेड कंपनी का नाम ही नहीं होता है, बल्कि सक्सेस तब होती है जब हम अपने टैलेंट को पहचानते हैं और उस पर सीरियसली काम करते हैं। चेतन भगत ने भी एक पॉइंट पर अपने पैशन को प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपनी राइटिंग को सिर्फ हॉबी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अपना प्रोफेशन बनाया। और हाँ, उनकी राइटिंग को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। हर किसी को उनकी राइटिंग पसंद आए ये जरूरी नहीं, लेकिन किसी भी क्रिएटिव फील्ड में डिफरेंट ओपिनियन का होना बहुत नॉर्मल होता है। आप सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद अपनी ओरिजिनल वॉइस खो देंगे। तो आज के इस एपिसोड सक्सेस मंत्रा को बहुत ही सिंपल तरीके से समझे तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपने पैशन को स्किल बनाइए, क्रिटिसिज्म से सीखिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लाइफ में हर किसी का पाथ अलग होता है। किसी की स्टोरी IIT से शुरू हो सकती है, किसी की राइटिंग से और किसी की बिजनेस से और किसी की बिल्कुल जीरो से। बस जरूरी ये है कि आप अपनी स्टोरी खुद लिखे। मैं हूँ आरजे स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की जर्नी के साथ, उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे, पर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिलीविंग, और अपनी कहानी खुद लिखिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी बातें होती हैं। और मैं आपको बताती हूँ, हर शनिवार ना आपको कहीं घूमने लेकर के जाते हूँ। आज भी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह आपको लेकर के आ चुकी हूँ। पहाड़ों की गोद में बिखरा हुआ एक ऐसा नगीना जहां कुदरत ने हर कोने को फुर्सत से तराशा है। आज इसी कोने की मैं बात करने वाली हूं। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या हम तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से पहुंचा सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें, और बताऊंगी आपको कि आज कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज का हमारा सफर हमें ले करके जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक ऐसे बेहद हसीन, रॉ और कल्चरली रिच कोने में, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द ज्वेल ऑफ इंडिया कहा था। जी हाँ, आज हमारा रास्ता मुड़ गया है मणिपुर की तरफ। इमेजिन कीजिए चारों तरफ नीले हरे पहाड़ों का गहरा जो है ये बिछा हुआ है, एक रंग बिछा हुआ है, बीच में शीशे जैसी चमकती विशाल लोक तक लेक, और साथ ही यहाँ जमीन के गोल टुकड़े पानी पर तैरते हैं और हवाओं में मणिपुरी क्लासिकल डांस के घुंघरू और ढोल की मीठी थाप घुली हुई है। मणिपुर एक ऐसी देखिए जगह है, एक ऐसा राज्य है दोस्तों, एक मतलब एक ऐसी जगह बहुत कमाल की खूबसूरत सी, जहाँ औरतों की ताकत, सदियों पुराना शाही इतिहास और कुदरत का जादू हर मोड़ पर मिलता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं मणिपुर आपको लेकर के आई हूँ, यहाँ की बहुत सारी बातें करूँगी, दुनिया के एकमात्र तैरते हुए नेशनल पार्क में ले चलूँगी, एशिया के सबसे बड़े ऑल वुमेन मार्केट की सैर कराऊँगी, और साथ ही साथ जो यहाँ का कांगला फोर्ट है, यहाँ के राज भी थोड़े बहुत आपको बताने वाली हूँ। तो बस बने रहिए मेरे साथ, यानी कि आरजे साक्षी के साथ प्रोग्राम सफरनामा में, क्योंकि यहाँ होने वाली है आज बहुत सारी मैजिकल बातें। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें, पानी के सीने पर तैरती जमीन बताती है कि कुदरत के करिश्मों की कोई सीमा नहीं होती। मणिपुर की पहचान और उसका दिल बसता है यहाँ की विशाल लोकतंत्र लेक में। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी और पूरी दुनिया में यूनिक बात पता है आपको क्या है? इस झील के ऊपर घास, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर के बने बड़े बड़े गोल टापू यानी कि सर्कुलर आइलैंड जैसे जो है आइसलैंड जो है वो तैरते हैं, जिन्हें लोकल भाषा में हम अगर आप इसे कहें तो इसे जो है वो फुमदिस जो है यानी कि जो फुमदिस जो है उसे कहा जाता है। और इन जो फुमदिस है इसके ऊपर जो है मछुआरों के लकड़ी के छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो पानी के साथ साथ फ्लोट करते हैं। जब आप एक ट्रेडिशनल जो वुडन बोट होती है उसमें बैठेंगे, आप जब वहाँ पर जाएंगे तो मतलब आपको वो तैरते हुए गोल टापों के बीच से ना निकलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी फैंटेसी मूवी में आप आ गए हैं और अलग ही दुनिया है। लोकतक लेक सिर्फ एक झील नहीं है, ये हजारों लोगों की रोजी रोटी और मणिपुर की लाइफलाइन है। चलिए मणिपुर के बारे में आपको थोड़ी और बातें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल लेते हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट्रॉन 7.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और नाजुक कदमों से जो घास पर नाचे वही तो इस जंगल की असली धरोहर है। लोकतक लेक के साउथ ईस्टर्न हिस्से में स्थित है पूरे संसार का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि यहाँ पर जो नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक विशाल भूमड़ी के ऊपर बना हुआ है। और ये पार्क घर है एक बेहद रेयर और खूबसूरत हिरन का, जिसे कहते हैं सांगाई द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। सांगाई सिर्फ और सिर्फ इसी झील पर मिलता है और ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है। जब ये हिरन तैरती हुई नरम घास पर बैलेंस बनाकर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो ताल पर नाच रहा हो, इसीलिए इसे डांसिंग डियर कहते हैं। इस वक्त पर ये लगभग देखिए ज़्यादातर अब तो एक्सटेंट होने की कगार पर था, पर लोकल लोगों के प्यार और प्रोटेक्शन ने इसे बचा लिया। भूमड़ी पर जो देखिए दूरबीन लेकर सांगाई को ढूंढना एक अलग ही थ्रिल देता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ देखिए इस शहर के ना सेंटर में स्थित है ऐसा जो बाजार जो पूरे एशिया में सबसे अनोखा है, इमा कैथल, और ये इसका मतलब होता है मदर्स मार्केट। ये लगभग 500 साल पुराना बाजार है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के द्वारा जो है इसे चलाया जाता है। लगभग 5000 से ज़्यादा जो इमाज हैं यानी कि जो माएँ हैं वो ट्रेडिशनल यहाँ के जो कपड़े जो है उन्हें पहनकर उन दुकानों पर बैठती हैं। और यहाँ आपको फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो है ये तो मिलेंगी, साथ ही यहाँ पर आपको होममेड हैंडमेड मणिपुर शॉल्स, यहाँ के पेटल्स, यहाँ के बर्तन और लोकल हर्ब्स सब कुछ मिलता है। ये मार्केट सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, ये मणिपुर के इतिहास में औरतों की लीडरशिप और उनके स्वाभिमान का सबसे बड़ा किला रहा है। यहाँ किसी भी माँ से बात आप जब करेंगे तो उनका आशीर्वाद लेना दिल को एक बहुत प्यारा अपनापन देता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक।
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और इस सफरनामा में बहुत सारी बातें करती हूँ। आज लेकर के आई हूँ आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह, और ये है मणिपुर। देखिए, पुरानी दीवारों के दरवाजे खुलते हैं तो सदियों पुराने राजवंश का गौरव बोल उठता है। और इम्फाल रिवर के किनारे फैला हुआ है मणिपुर के ऐतिहासिक गौरव का सबसे बड़ा सिंबल कांगला फोर्ट। कांगला फोर्ट जो है, ये इसका प्राचीन, यहाँ की जो मैथी भाषा है इसका मतलब होता है ड्राई लैंड। 19th century तक ये मणिपुर के राजाओं का शाही महल और पावर सेंटर हुआ करता था। किले के अंदर पुराने मंदिर, रॉयल यहाँ के कोरोनेशन हॉल्स और पानी की जो मोट्स हैं, ये आपको खाइयाँ हैं जो आपको दिख जाएंगे। किले के मेन गेट पर खड़ी है विशाल यहाँ पर कांगला शाह की मूर्ति, जो एक पौराणिक और आधा शेर और साथ ही आधा ड्रैगन जैसे जीव और मणिपुर का स्टेट एम्बलम है। ब्रिटिशर्स और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के

अंडर रहने के बाद अब ये किला आम लोगों के लिए एक शांत हेरिटेज पार्क बन चुका है। यहाँ साइकिल रेंट करके किले के पुराने बगीचों में घूमना इतिहास को करीब से महसूस करवाता है और जो बहुत अच्छा लगता है। जब आप यहाँ आएंगे ना तो वो एहसास को ना, मतलब वो जो एक अलग ही अंदाज है ना, उसको एक एहसास जो है ना वो आप महसूस कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रिश्ता 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें घुंघरू की धुन पर, जब राधा कृष्ण का प्रेम भरे तो नृत्य आत्मा की प्रार्थना बन जाता है। जब हम इंडियन क्लासिकल डांस की बात करते हैं ना, तो मणिपुर डांस जगोई अपनी शांत और जो नज़ाकत भरी अदाओं के लिए ना सबसे अलग पहचाना जाता है। इसका सबसे मशहूर रूप है रासलीला। और देखिए, नर्तकी जब क्विमिन नाम का जो बैरल शेप्ड रिजिड एक घाघरा पहनती हैं, जिसमें बारीक कांच का या मिरर वर्क जो है ये होता है और मोती लगे होते हैं, और बिना किसी झटके के बेहद नरम लहरों की तरह घूमती है, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस डांस में उस देखिए यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट, एक तार वाला ढोलक जो है, कुछ जैसा साज जो है, या पुंग की अगर बात करें जो मणिपुरी ढोलक है, जब हवा में गूंजते हैं तो पूरा का पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस डांस से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे शांति निकेतन में सिखाना शुरू करवाया था। और देखिए, तभी से वहाँ पर तो ये ट्रेडिशनल तो उसमें तो आता ही है, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो आप थोड़ा सा ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आके ना आपको इतना सुकून मिलेगा ना, जितना शायद आपको इसी जगह पर जाके ना मिले। बहुत सारी जगहें हैं ना, अलग अलग जगह हैं, और अलग अलग आपका सोचना है, समझना है। वहाँ जाइए, बैठिए, बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, आपको बिल्कुल जैसे आप अपने ही शहर लौट आए, आपको इस तरह से आपको महसूस कराएंगे। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह और कोई नहीं बल्कि है मणिपुर। देखिए, घोड़ों की ताप और जाउगन की चोट हमें याद दिलाती है कि शाही खेलों का जन्म यही हुआ था। अच्छा, आपको पता है कि मॉडर्न पोलो का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ये किसी यूरोप या अमेरिका में नहीं बल्कि हमारे अपने मणिपुर में शुरू हुआ था। लोकल भाषा में से सांगोल कांजिक जो है वो कांजी जो है वो कहा जाता है। मणिपुर के लोग सदियों से छोटे इंडिजीनियस मणिपुरी जो पोनीज होते हैं यानी कि घोड़े जो होते हैं उन पर बैठकर बांस की स्टिक से पोलो खेलते हैं। यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 19 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने यहाँ जो इस खेल को देखा था और रूल बनाया और पूरी दुनिया में मॉडर्न पोलो के नाम से मशहूर कर दिया। और इम्फल में स्थित जो यहाँ पर मापल कैंजुबग है, दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनल पोलो ग्राउंड है, आज भी यहाँ पोलो प्लेयर्स ट्रेडिशनल धोती और पगड़ी पहनकर पूरे जोश के साथ मैच खेलते हैं। तो चलिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको देखने तो ज़रूर जाएंगे ना। चलिए, अच्छा अपना एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और इस ब्रेक के बाद भाई इतने दूर आए हैं कुछ खाना भी तो खा के जाएंगे। बात करूँगी यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल फूड की। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफ़रनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको मणिपुर। और देखिए, इतनी दूर आए हैं तो कुछ खाना भी तो खा के जाएंगे ना। देखिए, कुदरती जड़ी बूटियों और साफ मिट्टी का स्वाद पहाड़ी रसोई को एकदम बेमिसाल बना देता है। अब थोड़ी पेट पूजा की जाए और लोकल स्वाद की बात अगर करें तो मणिपुर का खाना बिना किसी तेल या आर्टिफिशियल मसालों के एकदम ऑर्गेनिक हर्ब्स और फ्रेश सब्जियों से बनता है। यहाँ का सबसे मशहूर यहाँ की जो डिश है वो है इरोम्बा, और इसमें उबली हुई सब्जियाँ, मैश किए हुए आलू और फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स को तीखी राजा मिर्च के साथ, जो है ये मिर्च जो होती है यहाँ की, इसके साथ मिक्स किया जाता है। इसके अलावा जो कांगशोई एक लाइट और हेल्दी वेजिटेबल स्ट्यू होता है जिसे गरम चावल के साथ खाया जाता है। और अगर आप राइस के शौकीन हैं तो यहाँ का जो आइकॉनिक चा खाऊ है यानी ब्लैक राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे जो है वो इस काले चावल से बनी खीर यानी कि पुडिंग का जो बैंगनी रंग और नटी खुशबू होती है ना, आपका दिल जीत लेगी। खाना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा लाइट और न्यूट्रिशियस होता है जो आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और देखिए, बहुत कमाल के यहाँ का खाना आपको मिल जाएगा। अच्छा, वैसे ना पहाड़ों पे जब भी हम जाते हैं तो ट्राई करते हैं कि यहाँ के मोमो, ये वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई अगर आप मणिपुर आए ना तो यहाँ पर आपको यहाँ का जो इरोम्बा है वो बिल्कुल ट्राई करना है। वेजिटेबल्स का जो एक मिश्रण है जो घुल जाती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी। नंबर है 8010781078। फिलहाल एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें इसी के साथ। आज ना आपको लेकर के आई हूँ एक बहुत ही खास जगह, और ये जगह है इतनी कमाल की, इतनी खूबसूरत ये जगह है मणिपुर। मणिपुर की देखिए हम बात करें तो पहाड़ी की ऊंची चोटी पर खिलता वो गुलाबी फूल पूरी कायनात में सिर्फ एक ही जगह मुस्कराता है। इम्फाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर तांगखुल नागा ट्राइब का घर है और उखरुल, और साथ ही वहाँ स्थित है मशहूर शिरुई कागशोक पीक। इस पहाड़ की चोटी पर खिलता है दुनिया का सबसे अनोखा फूल शिरोई लिली, और इस फूल की सबसे जो हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया के किसी दूसरे पहाड़ या गार्डन में उगाया नहीं ये जा सकता है। ये कुदरती तौर पर सिर्फ और सिर्फ शिरोई पीक की ऊंचाई पर ही खिलता है। मई और जून के महीने में जब ये हल्के बैंगनी सफ़ेद फूल जो है ये पहाड़ पर खिलते हैं तो दूर से ट्रैकर्स की खूबसूरती को देखने जो है ट्रैकर्स जो है यहाँ पर आते हैं। शिरोई पीक पर चढ़कर चारों तरफ से बादलों को देखना और इस रेयर फूल को छूना एक कुदरती उपहार जैसा लगता है। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मर जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील वाइल।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और आज हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। आज हम आए हैं मणिपुर। मणिपुर का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक हम दूसरे विश्व युद्ध की उस दौर को याद ना करें, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू की मैं बात करी हूँ। इम्फाल के पास स्थित है रेड हिल, और ये जो रेड हिल है 1944 में बैटल ऑफ इम्फाल के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA और जापानीज फोर्सेस ने यहाँ ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ एक ऐसी आमने सामने की जो खून खराबा लड़ाई जो है ये लड़ी थी, जिसे मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक गिना जाता है। और पास ही मोरांग, और जो मोरांग में जो है वो INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, जहां कॉलोनियल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मेनलैंड इंडिया की मिट्टी पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया था। वहां खड़े होकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और सम्मान जो कि आप तिरंगे के लिए रखते हैं वो दिल में भर जाता है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर के आई हूँ बहुत ही खास जगह, मिट्टी और घास से बना हर तोहफा कारीगर की आत्मा और कीमत उनकी मेहनत का आईना होता है। और आज मणिपुर आए हैं तो मणिपुर के वापस जब आप आएंगे ना वहाँ से, तो वापस लौटते वक्त आपको यहाँ के वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट ज़रूर खरीदने चाहिए। पहली चीज़ का देखिए, पहले यहाँ पर चीज़ है यहाँ का कोना रीड क्राफ्ट। ये

देखिए, एक कुदरती पानी का की जो घास होती है, जिसे लोकल महिलाएं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बैग्स, लॉन्ड्री बास्केट और फ्लोर मैट्स बुनती हैं, जो 100% इको फ्रेंडली होते हैं। और दूसरी आइकॉनिक चीज़ है यहाँ का उखरुल की जो लॉन्गपी ब्लैक पोट्री होती है। ये काले रंग के बर्तन बिना किसी पोट्री व्हील यानी कि चाक के जो है वो स्टोन से क्ले को हाथ के शेप देकर बनाया जाता है, और इन पर केन के जो हैंडल्स हैं वो लगे होते हैं, और इनमें खाना बनाने से एक अलग ही अर्थी टेस्ट जो है वो आता है। लोकल ईमा मार्केट में ये आइटम खरीद आप पाएंगे। आप उन लोगों से जो है वो कारीगरों की मेहनत को डायरेक्ट सपोर्ट वो करते हैं, और वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे मार्केट में। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज बड़ी देखिए खूबसूरत गाने आपको सुनाए हैं और साथ ही साथ आज बात करी हमने मणिपुर की। कई अलग अलग जगहों पर हम घूमने के लिए गए और बहुत सारी बातें करी खाने की और देखिए जगहों की, घूमने की। तो चलिए इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। जाते जाते यही कहूँगी कि जाइए, घूमिए, इन्जॉय कीजिए ऐसी जगहों को जो कि मैं आपको बताती हूँ और मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। नंबर है 8010781078। फ़िलहाल कहीं मत जाइए और बस रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूं प्रागा आपके साथ और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक जी हां और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांगा आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स. जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूं कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर, और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय इस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है, है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा। आप च्युइंगम अपने पास में रखिए और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है. और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको. उसके लिए हो सकता है आप सोचेंगे ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है. और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे. और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है. आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है. जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए. उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें, यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है. अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की.

0: कोशिश कीजिए. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए. मतलब आप ये समझ लीजिए आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियां भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं. पता है, आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मज़बूत आप हो पाएंगे. और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो बहुत ऑसम होती है. आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे. और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये जब भी आप करें, और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है. तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूं बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूं. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूं ना, ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा, कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो, खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है, और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसका चेहरा ही बता देता है कि ये अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज भी करते हैं और उसको हम मानते हैं, तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना, तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए. और हाँ, मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताती हूं जिससे आपको फायदा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फायदा होगा, क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है। देखो, हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अब आप जाइए किचन में और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी। जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं। पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है। इस वजह से और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं, बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना। तो उसकी नीड जब उसे होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना। और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है। तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन हाँ ये एक सच बात है कि इसका फायदा हर एक एक को मिलेगा। तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं। तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है। अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना। अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है, क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है। लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप, मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक, वो इसी से ही जुड़ा है। अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना, और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं तो कुछ लोग एक घंटा लगाया और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये शायद आपको ना पता हो। हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं। जी हाँ, है ना कितना इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं। हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना, लेकिन आप इस तरह से करके देखें और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा। तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके, सुन करके। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगाइए। नंबर हमारा है 8010781078। मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ प्रांका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूँ आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो ख़िलाफ़ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हों बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्राग का और मेरे चलने का वक्त हो गया है, तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, बताने के लिए आप मैसेज कीजिए, नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्राग का और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त। और आज आपके लिए जिस शख्स की कहानी लेके आई हूँ और जिनके बारे में मैं आपसे कुछ बातें उनकी ज़िंदगी की रूबरू करूँगी, साथ ही सुनाऊँगी आपको उन पर फिल्माए गए गीत। ऐसे एक्टर हैं जो नाम सुनते ही आप जहाँ पर भी खड़े हैं या बैठे हैं आप वहीं पर ही थिरकने लगेंगे, क्योंकि ये एक्टर थे बहुत ही जिंदा दिल। इनकी अदाएं, इनका चलने का तरीका, इनका डांस करने का तरीका, इनका पहनावा, हर चीज़ दुनिया को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती थी। और जिस दौरान इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर ये छाए रहे, उस दौरान एक्चुअल में सारे जो यूथ था वो इन्हीं का फैशन, इन्हीं के लाए हुए ट्रेंड्स फॉलो करता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन फिल्म एक्टर जितेंद्र जी, अ सुपर हिट हीरो और जिसे कहते हैं स्टारडम जो था इनके पास। दोस्तों जितेंद्र जी का नाम जितेंद्र नहीं था, इनका नाम रवि कपूर है। मतलब इनका जो पैदाइशी नाम है वो रवि कपूर है और जितेंद्र जो इन्होंने अपना नाम रखा वो फिल्म में आने के लिए इन्होंने अपना नाम बदला। क्योंकि एक टाइम था बॉलीवुड में जब जो एक्टर आता था ना वो अपना नाम बदल ही लेता था। अगर हम किसी के भी हम जो कहानी उठाएं 60s 70s में, तो बहुत लोग फिल्म एक्टर्स ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम बदला और उनमें से एक जितेंद्र जी भी थे। तो जितेंद्र जी ने बहुत मूवीज़ में काम किया और आज भी वो बहुत एक्टिव हैं। उनकी बेटी एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, एकता जी, और इनके बेटे तुषार वो भी एक्टर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं ले रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और आज का हमारा सफ़र जितेंद्र जी के नाम। जल्दी वापस आऊँगी, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 FM पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म एक्टर जितेंद्र जी की। दोस्तों जितेंद्र जी का जन्म एक पंजाबी खत्री फैमिली में हुआ जो

अमृतसर पंजाब में रहती थी और इनके पिताजी का नाम अमरनाथ जी और इनकी माता का नाम कृष्णा कपूर था। पूरा परिवार बिजनेस में लगा हुआ था और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस ये करते थे। मुंबई के बहुत अच्छे स्कूल से इन्होंने तालीम ली है और बचपन के फ्रेंड थे इनके राजेश खन्ना साहब जी, यहाँ दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ तक कि कॉलेज में भी ये इकट्ठा ही गए। इनका कॉलेज था सिद्धार्थ कॉलेज। और ये वी शांताराम जी, जो कि एक हम सब जानते हैं कि एक मशहूर शख्सियत है हमारे बॉलीवुड के, उनको ये ज्वेलरी सप्लाई करते थे। तो एक बार जब इन्होंने इनको ज्वेलरी देने जाना था वी शांताराम जी को, तब उन्होंने इनको कास्ट कर लिया। एक मूवी आई थी नवरंग दोस्तों 1959 में, उसमें संध्या का एक सीन में कैरेक्टर ऐसा था जिसमें वो बॉय का भी उन्होंने आधा हिस्सा पीछे का कर रखा है और बहुत ही खूबसूरत सा डांस है वो, तो उसका डबल जो है वो जितेंद्र जी ने करा है। ये बात शायद हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस तरह से जितेंद्र जी का जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद में वी शांताराम जी ने ही इनको गीत गाया पत्थरों ने, जो कि मूवी आई थी 1964 में। ये इनका फर्स्ट मेजर ब्रेक रहा और उसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं भी गाना आपको सुनाने का, और आपका भी मन कर रहा होगा कि मैं आपको कुछ अच्छे गाने सुना दूं। बातें करेंगे ढेर सारी इसलिए भी क्योंकि जितेंद्र जी की लाइफ जो है बहुत ही सुंदर रही है, बहुत कुछ इन्होंने ज़िंदगी में किया है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो ले रही हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आई विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज हम बात कर रहे हैं आपसे मशहूर एक्टर जितेंद्र जी के बारे में, जिनका ओरिजिनल नाम है रवि कपूर। पैदा हुए ये एक मशहूर पंजाबी खत्री फैमिली में और मुंबई से ही इन्होंने पढ़ाई करी और यूनिवर्सिटी भी वहीं गए मुंबई में। और फिर वी शांताराम जी की मूवी गीत गाया पत्थरों ने, जो कि 1964 में रिलीज़ हुई, ये इनका फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू था। उसके बाद में इनकी मूवी आई बूंद, जो बन गए मोती 1967 में, अगेन अ ब्लॉक ब्लस्टर मूवी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हुआ फ़र्ज़ के साथ। जी हाँ, एक ऐसी पिक्चर जो कि 1967 में आई, एक ऐसी मूवी जिस मूवी ने इनको एक स्टेपिंग स्टोन दिया, नॉट ओनली जस्ट लाइक एन एक्टर बट ऑल्सो एज अ फैशन आइकन। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इन्होंने वो टी शर्ट और वाइट शूज़ का ट्रेंड चलाया, वो तो भाई साहब ऐसा चला, सारा जो यूथ था कॉलेज का, हर कोई उस ज़माने में वाइट शूज़ और पैंट टी शर्ट जीन्स टी शर्ट पर आ गया और सब किसको फॉलो करते थे, केवल और केवल जितेंद्र जी को। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडमार्क बन गया था इनका वो स्टाइल। और उसके बाद इनकी मूवीज़ हैं कारवां, जिसमें इनके वो जो डांसिंग स्टेप्स थे वो बहुत हिट हुए, और फिर मूवी आई हम जोली, ज़बरदस्त विगरस डांसिंग जो ये करते थे, कुछ इनके ऐसे स्टेप्स थे जो यही कर सकते थे। और हर इंसान का जब डांसिंग एक स्टाइल बनता है ना दोस्तों, तो कुछ ना कुछ वो एक ऐसा स्टेप ज़रूर करता है जो उसका एक पेट स्टेप बन जाता है। और उस अदा के लिए, उन सभी स्टेप्स के लिए, उस विग्रस डांसिंग के लिए इनका नाम रख दिया गया जंपिंग जैक ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, ये इनको उपाधि उस समय दे दी गई। जितेंद्र जी जब काम करने के लिए आए तो उस समय पर धर्मेंद्र और काफ़ी सारे एक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो धर्मेंद्र जी के साथ भी इन्होंने काफ़ी मूवीज़ करी, जैसे कि धर्मवीर, जानी दोस्त, इंसाफ की पुकार, नफरत की आंधी। और कुछ जो मूवीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं करा, लेकिन जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उनमें से एक है द बर्निंग ट्रेन, एक हटके प्लॉट था उस मूवी का। सारी ही मूवी, मतलब अराउंड 60% मूवी ट्रेन में ही शूट हुई, तो उसका एक अपना ही एक अंदाज है मूवी का। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर उस मूवी ने बहुत अच्छा काम नहीं करा, बट मुझे अच्छी लगी। आपने नहीं देखे तो आप भी इसको देख सकते हैं। तो ये तो इनका था शुरुआती करियर और किस तरह से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। एक समय था जब जितेंद्र और रेखा जी की मूवी जो है वो आनी शुरू हुई, और उसके बाद जितेंद्र श्रीदेवी जी का इनका साथ बना। ऑलमोस्ट 16 फिल्म्स इन्होंने इकट्ठा करी, और बातें करूँगी अभी इनके बारे में आपसे और भी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। फिलहाल ले रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आती हूँ। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त, और लेके आई हूँ आज एक प्यारा सा एपिसोड जो है जितेंद्र जी की जिंदगी की कहानी पर। दोस्तों जितेंद्र जी आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं सोशली, और उनके बच्चे एकता जी और तुषार दोनों ही बॉलीवुड में अच्छा उन्होंने काम किया है। तो जितेंद्र जी की लाइफ से तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। मैं आपसे बात कर रही थी इस ब्रेक पे जाने से पहले कि जितेंद्र जी की जोड़ी जो है कई एक्ट्रेस के साथ बनी और बहुत अच्छा उन मूवीज़ ने काम किया। जितेंद्र श्रीदेवी जी की जोड़ी, इन्होंने 16 फिल्में इकट्ठी करी और जिसमें से 13 हिट थी। जितेंद्र और जयप्रदा जी की जोड़ी, इस जोड़ी ने तो खैर तूफानी मचा दिया था। 24 फिल्में इन्होंने साथ करी जिसमें से 18 हिट गईं और 6 जो हैं फ्लॉप तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा अच्छा काम नहीं करा। जितेंद्र जी ने टोटल मतलब जितने भी उन्होंने टोटल करी उसमें से 113 तो इनकी डिक्लेयर्ड हिट मूवीज़ थी, और अंदाजन कहूँ तो 125 फिल्में इन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग करी जिसमें इन्होंने लीड हीरो का रोल किया। जल्दी से बता देती हूँ कुछ और मूवीज़ के नाम, हो सकता है आपका देखने का मन कर जाए। नवरंग, खिलौना, रोटी, उम्र कैद, रानी और लाल परी, नया बकरा, अनोखा बंधन, बेगुनाह और ओम शांति ओम में इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस करी। तो बहुत सारी मूवीज़, अभी तो कितने मूवीज़ का मैंने अभी शायद बीच में नाम भी नहीं लिया, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी सफ़र में उन मूवीज़ का जिक्र भी करूँगी, क्योंकि ये मूवीज़ ऐसी हैं जिनका जो कहानी की जो

प्लॉट है, स्टोरी लाइन है, वो बड़ा जिसे कहते हैं ना मकसद लिए होती है। इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो जितेंद्र जी से तो हमें वैसे भी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि देखिए परिवार में कोई भी एक्टर नहीं था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम था, तो ये किस साइड देखिए आ गए और कितने अच्छे से इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश करा। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, जब फ्लॉप जाती हैं मूवीज़ तो डिप्रेशन में भी इंसान जाता है और काम मिलना आगे बंद भी हो जाता है, लेकिन हिम्मत तो उसी इंसान की होती है जो गिर कर दोबारा खड़ा हो जाता है, और जितेंद्र जी के साथ ऐसा कई बार हुआ। तो दोस्तों यहाँ दोबारा मैं ले रही हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और फिर हम बात करेंगे जितेंद्र जी की निजी जिंदगी के बारे में, थोड़ा सा झांकेंगे। आई विल बी राइट बैक, आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना प्रोग्राम कैफे क्लासिक्स, और आज का हमारा एपिसोड हमने समर्पित किया है मशहूर एक्टर जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी आज भी एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, हम उनको कई प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए देखते हैं। बात करेंगे इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों इनका विवाह हुआ शोभा जी से, और मैं आपको बता दूं ये शोभा जी को जब वो 14 साल की थीं तब से ही ये जानते थे। दोनों स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और उसके बाद शोभा जी ब्रिटिश एयरवेज में एज एयर होस्टेस काम करने चली गई। जिन दिनों जितेंद्र जी स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए, उन दिनों इनका शोभा जी से बहुत अच्छा सा इनका फ्रेंडशिप का इनका पीरियड चल रहा था, और शोभा जी ने दिया इनका भरपूर साथ। जी हाँ दोस्तों, 1974 में इन्होंने विवाह करने की सोची और सिंपल सी सेरेमनी में इनका विवाह हुआ। कुछ ही दोस्त इनके थे और फैमिली मेंबर्स थे, और भगवान ने इनको दो बच्चों से ब्लेस किया, तुषार कपूर जी और एकता कपूर जी। एकता जी बड़ी हैं। 6 नवंबर 2021 में द कपिल शर्मा शो में भी इन्होंने शिरकत करी। जितेंद्र जी एकता जी वहां पर गेस्ट के तौर पे आए, और तब भी उन्होंने हम सबको अपने लाइफ की बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने चीज़ें सुनाई। तो दोस्तों सीखने को तो जितेंद्र जी से यही मिलता है। पहली चीज़ तो एक ये भी है कि जिसका साथ पकड़ो तो उसे छोड़ो मत। तो ये एक्चुअली में इनसे सीखने को मिलता है कि शोभा जी अब 14 साल की थी तब इन्होंने उनका हाथ थामा था, और आज तक शोभा जी इनके साथ हैं। तो ये तो बहुत ही एक सुंदर सीख आज की पीढ़ी को तो ज़रूर सीखनी चाहिए कि जिनका साथ में आप हैं आप उन्हीं के साथ रहिए और रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश करिए। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इनके सारे उन अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में जिनसे इनको नवाजा गया। तब तक के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, मैं तुरंत वापस आऊँगी। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का ये सफर समर्पित किया मैंने मशहूर एक्टर जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी जिन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, खूब मेहनत करी, बहुत अच्छे डांसर रहे, बहुत अच्छी एक्टिंग का परिचय भी दिया, बड़ा स्टाइल में रहे, फैशन आइकन भी रहे, यूथ के लिए ये एक आइडल बन के रहे, तो बहुत एक प्रेरणादायक ज़िंदगी इन्होंने जी है। और अब मैं अगर बात करूँ इनके अवार्ड्स और ऑनर्स की, तो 1998 में इनको मिला गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड जो कि दिया इनको उजाला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड ने। 2002 में मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2003 में मिला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2004 में अगेन लेजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा। 2012 जी सिने अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए था। तो दोस्तों ये सभी अवार्ड्स तो मैंने आपको बताए 1998 और 2000 के, लेकिन उससे पहले इनको बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। कई बार इनको नॉमिनेशन मिला, जीते नहीं, लेकिन इनकी झोली में बहुत सारे अवार्ड्स हैं। जितेंद्र जी, अगर रेडियो मानव रचना के माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो हम सभी आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहिए और हम आपको यूं ही देखते रहें। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम से मैं आप लेती हूं विदा। अगले प्रोग्राम में फिर आऊंगी एक नए अदाकार के साथ, एक नई कहानी के साथ और लेके आऊंगी आपके लिए ढेर सारे गाने। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। अपने बारे में बताना चाहूंगा, यहां पर सब ठीक है। शो बहुत स्पेशल है, वजह भी बहुत स्पेशल है कि आपको लीगल फ्रेमवर्क से थोड़ा रूबरू कराते हैं। एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, क्यों इतना मैटर करती हैं, आपको क्या पता होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम इस देश के नागरिक हैं। एक तो पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि हम कंज्यूमर हैं, है ना। अभी दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आपको नहीं पता अपने अधिकारों के बारे में, तो समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो वी फोकस ऑन दोज पार्ट्स जहाँ पर हम लोग आपको बता सकें एग्जैक्टली कि क्या चीज़ें हैं, क्या आपके राइट्स हैं, लीगली आपको क्या क्या जो है राइट्स मिले हुए हैं। अगर कुछ गलत होता है तो आप क्या कर सकते हैं? लेट्स से कि आपके डाटा को यूज़ कर लिया बिना आपके कंसेंट के, क्या करोगे? एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। सो या दैट इज द मोटिव ऑफ द शो। द नेम ऑफ द शो इज सत्यमेव जयते, माय नेम इज सागर तेवतिया। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक बहुत खास लीगल फ्रेमवर्क की। उसका शॉर्ट फॉर्म तो है DPDP, बट फुल फॉर्म उसका है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। 2023 में आया था, तो बहुत नया है, बहुत रिसेंट है, बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल लेकिन मेरे सलाम कबूल कर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून, फील गुड, फील

0: ताब हो।
1: वेलकम बैक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया ये म्यूजिकल ब्रेक। शो को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये नहीं बताएंगे आपको डाटा क्या है, सीधा मुद्दे पर आते हैं, आपका डाटा लिया क्यों जा रहा है। एंड दिस इज योर राइट टू नो। अगर एक उदाहरण के तौर पर आप किसी दुकान पर गए हैं, आपने कुछ सामान की खरीदारी करी है, आपने पैसे दे दिए हैं, आपका फोन नंबर मांगा जा रहा है वहां पर, आपके पास ये पूरा अधिकार है जानने का कि मेरा नंबर क्यों लिया जा रहा है। आपके पास इसी के साथ एक और अधिकार है मना करने का, डिनाई करने का। देखिए, जब भी कोई संस्था आपके डेटा को कलेक्ट करती है, आपके पर्सनल डेटा को, ठीक है, उसको आपको बताना चाहिए कि वो क्यों कलेक्ट कर रहे हैं एंड क्यों उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी आप दुकान को, जो मैंने एग्जांपल दिया, आप वहां पर गए तो क्यों कलेक्ट किया जाता है वहां पर डेटा, ताकि वो आपको बता सके अपने ऑफर्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में। हो सकता है कि जब भी कोई अच्छा ऑफर आए तो आपको पता लगे उसके बारे में, तो ठीक है, फेयर डील है, है ना, आपको पता लगेगा, आपके पैसे बचेंगे, उसका सामान बिकेगा, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये है एक इंपॉर्टेंट चीज। बट एक शॉपिंग एप्लीकेशन पे आप गए, वहां पर आपका फोन नंबर मांगा, ठीक है, इट शुड हैव अ पर्पस टू कलेक्ट योर डाटा। और ये 2025 के नियम बोलते हैं, 2025 के रूल्स बोलते हैं कि क्लियर नोटिस होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है। डाटा देने से पहले आप पूछ सकते हैं, मेरा डाटा क्यों कलेक्ट हो रहा है, उसे कहां यूज किया जाएगा, क्या करने वाले हो इसके साथ, मना भी कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी, लेकिन डाटा बहुत सर्कुलेट हमारा होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर जाकर सिर्फ ये चेक किया था कि पॉलिसीज क्या क्या है, क्या क्या प्लान्स अभी चल रहे हैं, कंपेयर किए थे कुछ। अब यकीन मानिएगा, जमाने भर की कंपनी से मुझे कॉल्स आने लग गए, क्यों आए मुझे भी नहीं पता, बट मुझे समझ में आ गया कि मैंने एक जगह पर नंबर छोड़ा और इतनी जगह सर्कुलेट हो गया। इट शोज अस कि प्राइवेट तो बस कुछ नहीं है, घुमाया जा रहा है डाटा को, एंड दैट इज अ पेन पॉइंट। इसलिए डाटा को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है हमारे डाटा के साथ और कैसे आप उसको बचा सकते हैं। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।
2: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा है ये शो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया यहाँ तक जितनी जानकारी आपको दी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपने कंसेंट दे दिया अपने डाटा का, अब आपको रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं चाहिए, तो कंसेंट क्या आप वापस ले सकते हो? यस, जहां पर प्रोसेसिंग आपकी कंसेंट के बेस पर हो रही है वहां पर आप कंसेंट दे सकते हो, कंसेंट को डिनाई कर सकते हो, कंसेंट को विदड्रॉ भी कर सकते हो, वापस ले सकते हो। सो थिंक अबाउट समथिंग, जहां पर आपने कुछ साइन अप किया किसी एप्लीकेशन के ऊपर, लेट्स टेक आपने एक एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करी। अब एडिटिंग के लिए आपको अपनी गैलरी का एक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन है आपके पास, या तो लिमिटेड एक्सेस दो, या पूरा एक्सेस दो, या एक्सेस दो ही मत। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, आपने लिमिटेड एक्सेस दे दिया, आपने वीडियो एडिट कर ली, फोटो एडिट कर ली, एक्सपोर्ट मार लिया, आपके पास फाइल आ गई। अब आप कंसेंट को अपने वापस ले सकते हैं और लेना चाहिए। अच्छा, ये दूसरी कहानी है जिसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा सा हम ऑफ रूट जा रहे हैं, बट देयर वाज अ केस जो बहुत फेमस हुआ था, जहां पर एक इंसान है जिसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी, उन्होंने उसको माइक्रोफोन का एक्सेस दे दिया, रात को सो गए, सोए हुए आराम से, सुबह उठे, अपने फोन की हिस्ट्री चेक करी, हर एक चीज की, माइक्रोफोन की, कैमरा की। अब यकीन मानिए, ट्विटर के ऊपर, उस टाइम पर ट्विटर था उसका नाम, अभी तो एक्स है, बवाल मचा था इस चीज का कि रात को 2:30 बजे जब मैं सो रहा हूं मेरा माइक्रोफोन यूज कैसे किया गया, क्यों यूज किया गया, और ये लेजिट हुआ था। अब वो एग्जैक्ट रूट कॉज क्या था ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया, बट यू शुड नो दिस कि आपके डाटा को इस्तेमाल किया जाता है वंस यू हैव गिवन द कंसेंट, द कंपनी इज यूजिंग इट। अच्छा, यहां पर दूसरी चीज ये आती है, चेंजेस हुए हैं काफी। पहले आते थे ऑलवेज अलाउ, आपका डाटा अगर आप किसी चीज का राइट दे रहे हो, एक्सेस दे रहे हो, अलाउ या डिनाई का होता था, अलाउ मतलब अलाउ। अभी लेकिन चीजें काफी बदल गई हैं। अभी हमने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा है तीन ऑप्शन होते हैं, अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ वंस, या डिनाई। या तो एक बार अलाउ करेंगे, या जब आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तब आप अलाउ करेंगे उसको, या आप उसको डिनाई करेंगे। ये रिफाइन हुआ है काफी, एंड इट्स अ गुड साइन। सो कमिंग बैक टू अवर पॉइंट कि कंसेंट देके वापस आप ले सकते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, अपने कंसेंट को आप विदड्रॉ कर सकते हैं। 2025 के रूल्स बोलते हैं कि एक विदड्रॉल प्रोसेस है, और विदड्रॉल प्रोसेस हर एक कस्टमर को इतना ही आसानी से मिलना चाहिए जितनी आसानी से कंसेंट देने का प्रोसेस मिलता है। कंसेंट दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल हमेशा के लिए चला गया है, वापस भी लिया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे वो किसी दुकान पे जाके नंबर दिया है वहां से हटवा सकते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास है बोल सकते हैं DND में मेरा नंबर डालो, या मेरा नंबर अपने रिकॉर्ड से आप हटाओ, या किसी एप्लीकेशन को अपने फोन में आपने एक्सेस दिया है उसको आप हटा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। यू शुड नो दिस। उम्मीद कर रहा हूं समझा पाए हूं यहां तक। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, जय हिंद जय भारत। शो का नाम सत्यमेव जयते, मेरा नाम सागर। और यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है विच इज डीपीडीपी, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में ये आया था। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उम्मीद भी ऐसी कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। आपके पास ये भी अधिकार है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ले सकते हो। आपने डेटा का एक्सेस दे दिया, कंसेंट दे दिया, कंपनी यूज कर रही है, आपके पास ये राइट है, आप जान सकते हैं मेरा डेटा कहाँ यूज किया जा रहा है, कहाँ रखा है। You can definitely ask this question to the organization कि previously मैंने consent दिया था, ठीक है, information दी थी अपना personal data का। अब problem ये है कि मुझे जानना है कहाँ पर आपने उसको इस्तेमाल किया है, and it can include everything and anything। अपने personal data की summary आप जान सकते हो कि कौन सा data आपने process किया है। आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि और कहां पर मेरा डाटा आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप ये भी जान सकते हो कितना डाटा आपने कितनी बार यूज किया है मेरा। ये एक्ट आपको राइट देता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने किसी को फोन नंबर दिया, ईमेल दिया, अपना एड्रेस दिया, पूछ सकते हैं मेरे बारे में आपके पास क्या डाटा है और वो किसके साथ शेयर हुआ है। मेरे साथ हिस्ट्री बताइए, शेयर करिए। अगर शेयर किया है तो यहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि आपने मेरे कंसेंट के बिना शेयर कैसे कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक को आपने अपना नंबर दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, आईसीआईसीआई बैंक को आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी दी, आपके पास कॉल आई एक्सिस बैंक से, तो आप ये पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपका राइट है कि वहां तक नंबर मेरा ट्रेवल कैसे किया, मैंने तो सिर्फ आपको दिया था। हालांकि ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आईसीआईसीआई बैंक या कोई भी बैंक ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करता है, बट कंपनीज ऐसा बहुत सारी हैं जो ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करती हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करे। किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि भैया आपके बिना कंसेंट के आपके डाटा को उठा के कहीं भी शेयर कर दे, ट्रांसफर कर दे, आपके डाटा को प्रोसेस करने लग जाए। नो, ये होता है, लेकिन इसलिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए। दिस इज डीपीडीपी एक्ट, आपका अधिकार, आपकी सेफ्टी के लिए अधिकार, आपकी प्राइवेसी के लिए अधिकार आपको दिया गया है। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर, शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। शो को आगे बढ़ाएंगे तो अब आगे बात करते हैं डीबीटीपी एक्ट, क्योंकि अपने आप में बहुत खास एक एक्ट है। हालांकि बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें कितनी भी बात हो सकती है, मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, मल्टीपल विंग्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और ये भी उठ के आती है कि गलत डेटा है, प्रॉब्लम हो रही है आपको, आपके डेटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी फ्रेमवर्क है कि अगर आपके एंड पे गलत डेटा आपने दे दिया गया है तो आप उसको करेक्ट करा सकते हो, अपडेट कर सकते हो, दैट इज फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंपनी उसको करेक्ट नहीं कर रही है तो आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके डेटा को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, अगेन आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई मना करता है आप जा सकते हो, लीगल फ्रेमवर्क है आपके लिए, आप जाके केस कर सकते हो। डीपीडीपी एक्ट 2023 आप कोर्ट करेंगे, आपका केस उसके अंडर फाइल होगा, डेफिनेटली आपकी जो भी बात है वो सुनी जाएगी और जो भी इंसान वहां पर कल्प्रिट पाया जाएगा उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो आपका डिजिटल डाटा सिर्फ एक कंपनी का रिकॉर्ड नहीं है, उसके प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग आपके राइट्स भी हैं। कुछ कैसे प्रोसेस किया जाएगा, आप कहते हो कि मेरा डाटा आगे नहीं जाना चाहिए, कंपनी के पास कोई राइट नहीं कि वो आपका डाटा आगे भेज दे या बेच दे या किसी और को दे दे, ठीक है। आज आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर या आपका आधार नंबर या आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आपकी लोकेशन या कोई और पर्सनल आपकी जानकारी हो सकती है, वो आप इजीली दे तो देते हो, लेकिन डीपीडीपी का फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप उसको वापस ले सकते हो, एक्सेस आप वापस ले सकते हो, कंसेंट आप वापस ले सकते हो, ऑल्टर आप उसको करा सकते हो, ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हो, हिस्ट्री आप जान सकते हो, प्रोसेसिंग आप जान सकते हो। दिस इज डीपीडीपी एक्ट। फिलहाल इसी के साथ आज का शो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। आशा करता हूं कुछ जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी।

पुरस्कार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग ले एक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आपको भी पता है कि इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ, ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूँ जो सशक्त हैं, जो सशक्तिकरण फैला रही हैं, ऐसी महिलाएं जो महिलाओं के लिए ढेर सारा काम कर रही हैं और अपने लिए एक नाम कमा रही हैं, ऐसी महिलाएं जो स्वच्छंद हैं। और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। क्रिएटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक आर्टिस्ट हैं और इनका नेहा क्रिएशन ऑल इन वन मंडाला स्टोर जो है वो काफ़ी फेमस भी है। ना सिर्फ ये खुद मंडाला आर्ट करती हैं लेकिन बहुत सारी महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को ये आर्ट सिखाती भी हैं। और अच्छी बात ये है कि अब तो ये प्रूवन है कि ये जो आर्ट है ये अपने आप में एक थेरेपी के तरीके से काम करती है। तो इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी लेकिन नेहा जी की जिंदगी के बारे में आपने कुछ नहीं सुना होगा और वो हम सुनाने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो नेहा जी करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: थैंक यू भावना जी मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोगों तक अपनी ज़िंदगी की कुछ इन्फॉर्मेशन या अपने बारे में या मंडाला से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
1: नेहा जी, सबसे पहला सवाल जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे इस कार्यक्रम का, सो एक बड़े लंबे समय से इस कार्यक्रम को मैं कर रही हूँ, जब से मैं रेडियो मानव रचना के साथ हूँ राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, तब से ही मैं महिला सशक्तिकरण पर ये कार्यक्रम लेकर आई हूँ। सो मेरा जो पहला सवाल होता है ना वो हर महिला से यही होता है कि उनके नज़रिए में एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सशक्तिकरण जो वर्ड है या फिर एम्पावरमेंट जो वर्ड है इसकी जो डेफिनेशन है ना वो हर किसी के लिए अलग होती है। सो अगर आपसे पूछा जाए हाउ वुड यू डिफाइन कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है तो क्या कहेंगे आप?
2: ओके, सो इन माय टर्न वुमेन एम्पावरमेंट इज बेसिकली जब आप अपने डिसीजंस खुद ले पाते हो
1: जी,
2: अपनी आइडेंटिटी एक खुद क्रिएट करते हो एंड यू आर नॉट, यू कैन से यू आर नॉट नोइंग बाय द नेम ऑफ लाइक योर फैमिली और योर फादर और योर हस्बैंड और योर सिस्टर और योर चिल्ड्रंस, राइट? जब आप अपने डिसीजन खुद लेते हो, अपनी एक आइडेंटिटी खुद बनाते हो, देन एक्चुअली इट्स लाइक अ वुमन एम्पावरमेंट, राइट? जहाँ आप अपने डिसीजन लेने के लिए आपको कम्प्लीटली एक फ्रीडम है, चाहे आपको कहीं बाहर जाना है, आपको अपने बच्चों को घुमाने ले जाना है, आपको कोई एक छोटा सा सामान लेना है, मार्केट जाना है, या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब हम एज अ वुमेन जब हमारी शादी हो जाती है देन जनरली वी एक्सपेक्ट कि हमारी जो सैलरी है या समथिंग है वी हैव टू गिव इट टू अवर फैमिली एंड एवरीथिंग लाइक इन लॉज एंड वी हैव टू स्पेंड एवरीथिंग फॉर अवर, यू कैन से अवर हस्बैंड फैमिली, लाइक जो हमारी अपनी फैमिली हो जाती है। बट व्हेन यू आर एम्पावर्ड, व्हेन यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजन, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन टू टेक दैट डिसीजन कि अगर आप इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी थिंग टू योर फैमिली और इफ यू वॉन्ट टू बाई एनी थिंग फॉर देम यू आर फ्री टू डू सो। इट्स लाइक अ फ्री वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है एम्पावर होने के लिए। अगर आप वो एम्पावर्ड हैं देन यू विल फील अ कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, यू फील अ कॉन्फिडेंस इन योर एटीट्यूड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन एक्चुअली यू आर लाइक यू कैन से लाइक यस यू आर इंडिपेंडेंट वूमेन, यू आर नॉट नोइंग बाय द नेम ऑफ योर लाइक कि आप इसकी बेटी हैं या आप इसकी वाइफ हैं या आप इसकी मदर हैं। आप अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हैं, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं ना कि किसी और के नाम से।
1: सो स्वीट भाई, देखिए नेहा जी के लिए वाकई सशक्तिकरण का मतलब है अपनी एक आइडेंटिटी होना, जो कि मुझे हर बार ऐसा लगता है कि महिलाएं ना एक लंबे समय से इसे लैक कर रही थी। आप इमेजिन करिए फॉर इयर्स वीमेन हैव बीन नोन मिसेज ये हैं, मतलब इमेजिन करिए कि कई बार तो एक मिसेज और साथ में सरनेम, उनके खुद के नाम को लोग नहीं पहचानते हैं। और अगर आप मतलब अपने दोस्तों से या शहर में पूछें तो सब कहेंगे पता नहीं उनका फर्स्ट नेम है ही क्या। मतलब आप सोचिए औरतों की आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा छुपी रहती थी। लेकिन हाँ, आइडेंटिटी के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। इस सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपने माता पिता की मदद कर पाएँ या अपने परिवार की मदद कर पाएँ, लेकिन आप खुद अगर स्वावलंबी होंगे, अगर आप खुद आत्मनिर्भर होंगे। सो बहुत सारे ऐसे डिसीशंस हैं जो महिलाएं ले नहीं पाती हैं, उनको सिर्फ ये डर लगा रहता है कि मेरे इस डिसीशन से इस पूरे परिवार पे फ़र्क पड़ेगा। उस डिसीशन को आप खुशी खुशी ले सकती हैं और जो डिफरेंस आज के समय में हम महसूस भी कर पा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक प्यारे सी म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वापस लौट रही हूँ और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का। ये कार्यक्रम जो है ना, ये बड़ा खास है और इस कार्यक्रम के खास होने का एक ही रीजन है, क्योंकि हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। मजेदार बात यह है कि सालों से इसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन सही मायने में सशक्तिकरण आज भी नहीं मिल रहा है। इन द लाइट ऑफ ऑल द एक्सीडेंट्स दैट हैपन, ऑल द इंसिडेंट्स दैट हैपन, महिलाओं के खिलाफ होने वाला चाहे क्राइम है, महिलाओं के साथ होने वाला चाहे व्यवहार है, और महिलाओं के साथ किया जाने वाले कोई भी काम आज भी अगर आप देखें तो वो पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए इस सशक्तिकरण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। आज इस कड़ी में हमारे साथ नेहा गुप्ता हैं और नेहा गुप्ता के पास वो हुनर है जिस हुनर के साथ वो ना सिर्फ एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बनी हैं, लेकिन साथ के साथ अपनी आत्मनिर्भरता के साथ अपना नेहा क्रिएशन चला रही हैं। नेहा क्रिएशन एक ऑल इन वन मंडाला स्टोर है, जहां पर कि बहुत सारे लोगों को, ना सिर्फ हमारे भारत में ही लेकिन विदेशों में भी लोगों को ये मंडाला आर्ट सिखाती हैं। सो चलिए अब इनके मंडाला आर्ट के बारे में ही जानते हैं। नेहा जी, मंडाला आर्टिस्ट आपका बनने का सफ़र कैसा था? क्या बचपन से ही सोचा था मुझे आर्टिस्ट बनना है? क्या ये क्वालिटी आपने किसी से इनहेरिट की है? कई बार होता है ना कि माता पिता बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं या आपकी मम्मी की बहुत अच्छी पेंटिंग रही है, तो जेनेटिकली आपने इसे इनहेरिट किया है। सो कैसी रही आपकी पूरी जर्नी?
1: जर्नी तो एक सफ़र है, राइट? और ये बिगिन कैसे हुई उसकी एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ
0: जी।
1: जब हम छोटे होते हैं, राइट, देन एवरीवन सी अ ड्रीम कि हम ये बनना चाहते हैं या हम वो बनना चाहते हैं। तो व्हेन आई वाज इन माय 10th, राइट, तो उस टाइम डिसीजन लेना होता है कि आप 11th में क्या लेंगे। सो आई रिमेम्बर कि मेरा आंसर था कि आई वांट टू टेक आर्ट्स, आई वांट टू बी इन आर्ट फील्ड ओनली, लाइक आफ्टर 12th आई वांट टू डू बीए आर्ट्स। एंड उस टाइम पर लाइक बीटेक एंड एवरीथिंग इज ऑन पीक, राइट? माई सिस्टर वॉज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, वन इज ऑलरेडी डूइंग बीटेक, अनदर इज गोइंग टू डू बी फार्मा। सो फादर इज लाइक कि इसमें कोई करियर नहीं है, यू शुड गो फॉर द यू कैन से फॉर मैथ्स डिपार्टमेंट, यू कैन ईदर टेक अ बायोलॉजी और यू कैन टेक अ मैथमेटिक्स, राइट, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। एंड देन आई हैव प्रेफर्ड मैथ्स की चलो ठीक है मैथ लेके आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैंने मैथ लिया, बट उसके बाद भी 12th के बाद आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे बी ए आर्ट करना है। बट अगेन एक यू कैन से डिसीजन लिया गया कि चलो बी टेक करते हैं। फिर बी टेक किया, एम टेक किया, एंड उसके बाद 11 ईयर ऑफ यू कैन से जॉब किया, राइट, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जयपुर में। एंड उसके बाद फिर कॉरपोरेट में वर्क किया लाइक 5.5 ईयर एज अ इंटरनेशनल ऑपरेशन मैनेजर। बट आप एक कोइंसिडेंस देखिए कि मैं एट द एंड हूँ उसी फील्ड में जहाँ मैं जाना चाहती थी। इट इज़ अ वेरी बिग कोइंसिडेंस जो मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ। एंड मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से स्टार्ट हुई
0: जी,
1: जो हमारे इंडिया में आई तक मुझे लगता है कि हर दूसरी लेडी एक इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जाती है, बट लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, करेक्ट? तो आई वॉज ऑल्सो वेरी इंट्रोवर्ट कि मुझे अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करना नहीं आता। इवन मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं किया कि आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज। बट धीरे धीरे धीरे मुझे आई गॉट टू नो अबाउट मंडाला आर्ट्स, करेक्ट? एंड फिर मुझे लगा कि चलो कुछ बनाते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आर्ट बचपन से ही एक इंटरेस्ट तो था ही आर्ट में। फिर तब पहली बार बर्ड सुना था मंडाला कुछ होता है, तब मंडाला बनाना चालू किया, यूट्यूब से देख के एक वीडियो देखा, और तब धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। और वो जर्नी स्टार्ट होते होते आज मुझे यहाँ तक ले आई कि मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ और इस बिज़नेस में मैं अपनी अपनी आर्ट वर्कशॉप्स रन करती हूँ, कोर्सेज रन करती हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, नेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। मैंने अपनी 5 बुक लॉन्च करी हैं जो आप अमेज़न के किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ले सकते हैं। इंडिया में भी आप हमारे अमेज़न वेयर हाउस में हमारे पैकेट सारे आते हैं, हम फ्लिपकार्ट, मीशो, सब जगह आप हमें देख सकते हैं। एंड अदर देन दैट यू कैन से हम मंडाला अवार्ड शोज़ भी करते हैं। 1 अवार्ड शो हमने ग्लोबल अवार्ड शो लास्ट 2 साल पहले किया था। मंडाला आर्ट चैलेंजेस, हम हर साल में एक मंडाला आर्ट चैलेंजेस भी करते हैं, इंटरनेशनल चैलेंज, जिससे कि लोग आएँ और उसमें पार्टिसिपेट लें, करेक्ट? बट ओवरऑल जो थीम है, जो करने का है, वो जो आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी थी वहीं पर है। हमारे हर कोर्स का एक एम रहता है कि आप सिर्फ बनाए नहीं, आप इसमें कुछ अपना करियर भी अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको एज अ करियर ऑप्शन भी ले सकते हैं। आप अच्छा खासा इससे भी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को एक ये मिसकंसेप्शन या मिथ है कि आर्ट में रखा ही क्या है।
0: Yes.
1: आर्ट से कुछ हो भी सकता है क्या? तो मेरा आंसर है बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी आर्ट आने की ज़रूरत है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक जब मैं कोई भी सफ़र आसान या डिफ़िकल्ट नहीं होता, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो एक सफ़र होता है जो आप जीते हैं और फिर आप उसको एंजॉय करके जीते हैं। इन 6 सालों में मैंने उस सफ़र को एंजॉय करके सीखा है और उसको इतना यू कैन से इतना हैप्पीली जिया है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि कुछ कहीं निगेटिव जा रहा है। एंड बाय गॉड ग्रेस ऐसा होता है कि जब भी मुझे कभी लगता है कि शायद मेरे बिजनेस का कुछ डाउनफॉल जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है व्हेन यू फील लाइक दैट वाओ समथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड। जस्ट लाइक अभी लास्ट मंथ ही एक सेलिब्रिटी इंडिया के बहुत बड़े सेलिब्रिटी है जिन्होंने हमारे मंडाला कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, करेक्ट। उन्होंने हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्स ऑप्ट किया बिकॉज वो नहीं कर सकते लाइव कोर्सेज, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम थिंग। सो लाइक हर वक्त अगर आप कुछ अच्छा करते जाते हो ना, देर इज समवन हु इज सीइंग यू कि आप क्या कर रहे हो, दे आर गिविंग अ पार्ट टू यू कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, जस्ट गो ऑन, हम आपके साथ हैं। सो आई हैव मैनी मैनी मैनी You can say a blessings with me, जो मुझे हमेशा blessings देते हैं कि you are doing good, कहीं कुछ wrong नहीं जा रहा है, बस इस path पे चलते रहो। तो ये journey बिल्कुल basic से ही start की, zero से start की, क्योंकि कुछ आता नहीं था और वहाँ से करते करते करते मैं आज यहाँ तक आई हूँ। पीछे मेहनत तो लगती ही, हर चीज़ में मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। बस एक पैशन और एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है
0: जी।
1: जब उसमें आप में वो जुनून होता है तो आप अपना स्टार्ट करने के बाद कोई चीज़ पैर पीछे नहीं खींचते हो, बट अगर आपको उसमें पैशन नहीं है तो आप स्टार्ट करते हो फिर एक स्टेप पीछे ले लेते हो, फर्क करते हो फिर पीछे ले लेते हो, बट अगर आप में वो जुनून है तो आपका वो सफ़र धीरे धीरे धीरे चलता ही जाता है।
0: क्या बात है, सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी, और मैं तो ये कहूँगी सच एन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी। देखिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो टर्मिनोलॉजी है ना, आज के ज़माने में हम इस टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, लेकिन एक ज़माने में लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। कितनी महिलाएं हैं जो शायद इससे गुजरी होंगी, कितनी महिलाएं हैं जिन्हें ऐसा लगा होगा कि उनका वजूद ही ख़त्म हो रहा है, मतलब सुबह से लेकर रात तक और फिर अगली सुबह तक। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक नवजात शिशु का ख्याल रखना है। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि जहां हम महिलाओं की आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, वहां पर इस डिप्रेशन के बारे में परिवार के सदस्य ही नहीं जानते हैं। कई बार तो हेल्प्स नहीं होती हैं, कई बार सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है माओं के पास। और जो न्यूली मॉम्स होती हैं ना, देखिए भाई हर चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, जिस प्रकार आर्टिस्ट के लिए ये कह रही हैं कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप निखरती जाती है, आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही माँ बनना भी है, आप कोई पहले से ही इसका सर्टिफिकेट तो लेकर आते नहीं है, ना ही आपके पास इसका कोई एक्सपीरियंस होता है, एंड एवरीथिंग इज़ न्यू, बच्चे के लिए भी माँ के लिए भी, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते। बट यस, मंडाला ऑफकोर्स एक थेरेपी के रूप में काम करता है और इसे भी अपनाया जा सकता है, जैसे कि नेहा ने इसे अपना जीवन और साथ के साथ अपनी आइडेंटिटी बना ली है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट की आज इस कड़ी में हम नेहा गुप्ता से बात कर रहे हैं। नेहा गुप्ता जो कि नेहा क्रिएशन की CEO हैं और साथ के साथ ये चलाती हैं नेहा क्रिएशन ऑल इन वन मंडाला स्टोर। अब आपको थेरेपी की जरूरत है या नहीं भी जरूरत है, लग रहा है स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा और आपके पास कुछ 2-4-5 घंटे हैं, तो चलिए एक मंडाला आर्ट का जो पूरा का पूरा स्केच होता है ना उसे ले लीजिए और उसे अलग अलग रंगों में रंगने की कोशिश करिए। आपकी ज़िंदगी उतनी ही कलरफुल होती जाएगी जितना आपका वो पेज बनेगा। नेहा जी, अब एक बड़ा अहम सवाल आपको ना, मैं आपके बचपन से और आज तक के एक फ्लैशबैक में लेकर जा रही हूँ जहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि सशक्तिकरण भरा एक ऐसा डिसीशन जहाँ आप किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हुई, आपने अपना डिसीजन लिया एंड यू आर एक्चुअली हैप्पी और आज आप उससे रिग्रेट नहीं करती। कोई भी डिसीजन, चाहे शादी करने का डिसीजन हो, चाहे

0: पढ़ाई का डिसीजन हो, चाहे बिजनेस का डिसीजन हो, एक ऐसा कौन सा डिसीजन आपने लिया है जिंदगी में जिसको आप अपना सशक्तिकरण भरा डिसीजन कह सकती हैं?
1: बिल्कुल, एक डिसीजन है जो शायद मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी
0: जी,
1: और वो डिसीजन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का।
0: वाओ,
1: अगर इसके भी पीछे का एक छोटा सा किस्सा बताओ, रात के 3 बज रहे थे और यू कैन से जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपको सब कुछ खराब लगता है
0: जी।
1: सामने वाला कितना भी अच्छा हो बट यू फील लाइक कि कहीं ना कहीं सब गड़बड़ जा रहा है, करेक्ट। एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एंड वो एक ऐसा मोमेंट था जो रात के 3 बजे आपको ऐसा क्लिक किया कि नहीं आप बना रहे हो, क्योंकि व्हाट वाज माय शेड्यूल इज कि मैं पूरे दिन बच्चे का ध्यान रखती, बिकॉज इट वाज अ कोविड टाइम, कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, इन लॉज भी नहीं थी, अपनी फैमिली भी नहीं थी, मैं, मेरी बच्ची और मेरा हस्बैंड, हम 3 ही लोग एक घर में थे। तो क्या करते थे, मैं पूरे दिन बच्चा संभालती थी, पूरे दिन घर को देखती थी, एंड जब बच्चा सो जाता था रात के 10 बजे, उसके बाद मैं 8 लेकर बैठा करती थी और 11 बजे से लेकर जब तक बोवर नहीं जाती थी, चाहे 4 बजे हो चाहे 5 बजे, मैं बनाकर फिर सोती थी, एंड अगले दिन फिर सेम शेड्यूल जो था, रूटीन था, वो चलता था। मेरे हस्बैंड ने उसमें टाइम में मेरा बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, बट उसका वर्क फ्रॉम होम चलता था तो ही मैनेज इट, तो मैं आराम से 10-11 बजे सोकर उठती थी, पूरा दिन करती थी, अगेन सेम शेड्यूल, करेक्ट। बट कभी कभी जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपको सब खराब लगने लगता है, बट जब बनाते गए, काफ़ी दिन तक बनाया, बट जब आपको लगा कि नहीं अब शायद ज़्यादा हो रहा है, एंड देन एक डिसीजन लिया रात के 3 बजे कि मैं मंडाला वर्कशॉप करूँगी और देखते हैं कि क्या होगा। उससे पहले कुछ भी नहीं पता था कि कुछ सही होगा नहीं होगा, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, इट्स नॉट कि आप सिर्फ मंडाला बना रहे हो, करेक्ट, आप मल्टीपल चीज़ें बना रहे हो। आज की डेट में हमें पता है नीश एक वर्ड होता है, उस टाइम पर पता भी नहीं था कि नीश कोई वर्ड होता है, तो सब कुछ बनाते थे। फिर डिसाइड किया कि चलो मंडाला की वर्कशॉप करते हैं, उस रात को अनाउंस किया, उस दिन थर्सडे था, वर्कशॉप अनाउंस की संडे की, करेक्ट। उस टाइम पर यह भी नहीं पता था कि जूम मीटिंग चलती कैसे है, और मुझे याद है जब वो वर्कशॉप मैंने कंडक्ट की उसमें मेरे पास 42 स्ट्रेंजर्स थे, और ये देख के मैं शॉक थी कि इतने सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। वो एक अकेला ऐसा डिसीजन था जो शायद मैंने बहुत ही सैड मोमेंट में लिया था, बट वो डिसीजन जो मैंने लिया, उस डिसीजन ने आज मुझे यहाँ तक ला के खड़ा किया कि उस एक वर्कशॉप ने मुझे ये पावर दी कि मैं इस छोटी सी चीज़ को एक बहुत बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ उस एक डिसीजन की वजह से आया था। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोविड किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अच्छा गया, सबके लिए अलग अलग मोमेंट गए, बट अगर आपको कभी लग रहा है कि यू वॉन्ट टू डू समथिंग और आपको कोई चीज़ पिंच कर रही है, उस पिंच को पॉजिटिवली पिक करो एंड उसको अपने ड्रीम को एक पैशन में जाकर कन्वर्ट कर दो, वो बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि हम करते क्या है एज अ वुमेन, हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचते रहते हैं, वो पेपर पे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, दिमाग में सब चल रहा है ये करना है ये करना है, बट जब तक आप उसको पेपर पे लेके नहीं आते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। आपको बस उसी चीज़ को पेपर में लेकर आनी है सो दैट आप उसको कन्वर्ट कर पाएं। तो वो मेरा एक अकेला डिसीजन था जिसे मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि उस एक डिसीजन की वजह से मेरी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई, पूरा एक जिंदगी को देखने का परसेप्शन बदल गया, बिकॉज उससे पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, जहाँ शायद ही रेयर कोई लोग थे जो मुझे जानते थे, मैं शायद इतना ज़्यादा लोगों से मिलती भी नहीं थी, मैं सिर्फ एक अपनी ही शेल्फ एक में था जिसमें मैं रहना पसंद करती थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे धीरे जब आपने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद दुनिया को आपके देखने का नज़रिया बदल गया है, वो लोग अब आपको दूसरी नज़र से देखते हैं, पहले लोग आपसे, आप लोगों के पास जाके बात नहीं करना चाहते थे, बट लोग अब आपके पास आकर आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, आपसे नॉर्मल डेली, मतलब एक एक डिसीज़न बहुत कुछ बदल सकता है किसी की लाइफ में।
0: सो इसीलिए भाई मैं हमेशा महिलाओं से एक ही बात कहती हूँ कि अपने डिसीजंस ना ज़रूर लीजिए और अपने लिए लीजिए विदाउट थिंकिंग कि इसका परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ना हम हमेशा अपने बारे में तो नहीं सोचते, हम पूरे परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में या फिर समाज के बारे में। महिलाओं को जरूरत है कि वो अपने बारे में भी सोचें। जुड़े रहिए रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं नेहा गुप्ता जी से। नेहा क्रिएशन ऑल इन वन मंडाला स्टोर की ना सिर्फ ये सीईओ है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी मंडाला आर्टिस्ट भी हैं। अब मुझे बताइए कि एक बड़ा अहम डिसीजन होता है हर महिला की जिंदगी में, और वो डिसीजन आपकी जिंदगी में जब आया तो आपने शायद उस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत खूबसूरती से लिया। हर महिला की जिंदगी में माँ बनने वाला एक फेज आता है, और ऐसे में ज्यादातर महिलाओं से कहा जाता है कि आप अपने करियर को सैक्रिफाइस कर दीजिए क्योंकि बच्चे का ख्याल आपने रखा। देखिए, इनिशियली मैं मानकर चलती हूँ 5 से 7-8 साल बच्चे को एक माँ की बहुत ज़रूरत होती है, और ऐसे में चाहे समाज की कह लें, इक्वालिटी कहें, आजकल फादर्स को भी न पटर्निटी लीव मिलती है, ये सब कुछ है। डिस्पाइट दैट एक मदर की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है, बट महिलाओं के साथ परेशानी हो रही है कि यही फेस उनकी लाइफ का जो करियर के कहना चाहिए सबसे बड़ा टाइम होता है, उस टाइम में उनको पीछे ले आना, और फिर वो ना कुछ ऑल्टरनेट चीज़ें करने लग जाती हैं। जो एक गोल था लाइफ का, जिसके साथ शायद उन्होंने शादी से पहले या शादी के बाद जो एक लाइफ शुरू की थी और जो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी, वो कहीं धूम में लो जाती है। इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए, या क्या इसका कोई सोल्यूशन है जो आपने कभी सोचा है?
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है, मैं ये नहीं कहती जब आप माँ बन जाते हैं, ये आपके माँ बनने से जब स्टार्ट जर्नी होती है ना आपकी, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। मुझे याद है जब मैं एज ए इंटरनेशनल ऑपरेशन मैनेजर एक कंपनी में काम कर रही थी, तो हमारी इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, हम लोगों को मैटरनिटी लीव दी जाती है। बट आज की डेट में हजारों ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ मैटरनिटी लीव नहीं देते हैं, वो आपको फोर्सफुली रिज़ाइन कराते हैं। द सेम थिंग हैपेंड विद मी, बट उस टाइम पे मी एंड माय हस्बैंड, आई एम लाइक वेरी स्टिक टू माय थिंग्स कि ये अगर लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है, आई विल गो विद दैट। मुझे याद है मैंने उसके लिए इतना फाइट किया है कि वो लीगल कंपनी है एंड यू आर द वन जो ये लॉस फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो। आई लाइक नहीं, आपको मैटरनिटी लीव तो देनी ही पड़ेगी बिकॉज इट इज़ एज पर द लॉ। तो स्ट्रगल तो तब से ही स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। मेरे साथ के बहुत सारी कलीग हैं जिन्होंने ऑफिस छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ दैट, करेक्ट। कभी फैमिली छोड़वा देती है कि क्या करोगे करके, ऑफिस जाना बहुत डिफिकल्ट है, कैसे ट्रैवल करोगे, कैसे वो करोगे। बट अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके पास है, आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके पास है, तो ये जर्नी और आसान हो जाती है, करेक्ट। और ये तो बिल्कुल श्योरी है कि जब हम माँ बन जाते हैं उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो जाती हैं, हमारे करियर का देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारे पास एक मैंडेटरी लीव हो जाती है जो एक गैप हो जाता है। जब हम दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हमें वापस से अपने करियर को बहुत पीछे खींचना पड़ता है। जो सैलरी पैकेज हमें पहले मिल रहा होता था, आप वापस से फिर वापस पहुंच जाते हो, फिर अपना स्ट्रगल स्टार्ट करते हो, जिसमें आपकी फैमिली भी बीच में कहती है कि आपके बच्चों को आपको ज़रूरत है, बेटर टू टेक अ स्टेप बैक, करेक्ट। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपना स्टेप बैक लेती भी हैं, करेक्ट। बट अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके पास है तो ये चीज़ आगे जा सकती है, आपको इतना प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं। जस्ट लाइक मी एंड माय हस्बैंड वर वेरी क्लियर कि हमारे जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाएगा हम उसे क्रच में डाल देंगे, डे केयर में डाल देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर कोविड आ गया और हमें ये करने का मौका ही नहीं मिला, करेक्ट। फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि मुझे जॉब छोड़नी ही पड़ गई, करेक्ट। बट एक टाइम ऐसा था कि जब मैं ये वर्कशॉप करती थी बिल्कुल बिगनिंग में, तो मैं 99 रुपीज़ की वर्कशॉप करती थी, 49 की करती थी, 199 की करती थी। तो मैंने शायद जब 4-5 वर्कशॉप की, मैं हर संडे करती थी, हर सैटरडे संडे, बिकॉज हस्बैंड का ऑफिस सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी होता है, राइट। बाकी दिन तो वो वर्क फ्रॉम होम उनका चल ही रहा होता है। तो मुझे याद है कि एक दिन मैंने उससे बहुत हिम्मत करके ये बात पूछी ली कि मैं ये 99 रुपये की वर्कशॉप करती हूँ, तुम्हें इससे शेम तो फील नहीं होता, करेक्ट? बिकॉज आई फीलिंग 49 रुपीज़ की वर्कशॉप करना, माई हस्बैंड इज़ ए CACS, करेक्ट, एंड करंटली इज़ अ CFO इन अ कंपनी, राइट। तो उस टाइम पर आपको बहुत बुरा फील होता है कि आप ऐसा काम कर रहे हो और आपके हस्बैंड। देन ही सेड अ वन थिंग टू मी, जिसने मुझे लाइफ में मोटिवेट किया कि कोई क्या कहता है इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको लगता है तुम सही कर रही हो तो करो, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फीलिंग कि दिस इज़ ओके फॉर यू, जस्ट गो फॉर इट। उस एक चीज़ ने शायद करियर को देखने का नज़रिया बदल दिया, और वहाँ से आज तक कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर वो बैलेंस सपोर्ट आपको सिर्फ फिजिकली नहीं चाहिए होता, आपको एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है कि आपका पार्टनर और आप मिलके, या आपकी फैमिली आपको बोले कि यू आर डूइंग गुड, करेक्ट, तो आप एक नया रास्ता बनाकर भी रास्ता बना सकती हैं, करेक्ट। और अगर आप अपना कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आप अपनी जो भी जॉब करें उसको कंटिन्यू भी कर सकती हैं, बट फैमिली का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। समटाइम ऐसा होता है कि इन लॉज आपको ताने मार रहे हैं, कभी आपकी फैमिली आपको ताना मारी, कभी फ्रेंड्स आपको ये एडवाइस वो एडवाइस कि बच्चे के लिए ये बेटर है ये बेटर है, बट मुझे लगता है कि आप अगर एक सपोर्ट लेके चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, तो ये जर्नी उतनी ही आसान हो जाती है हर वुमेन के लिए। बस वो सपोर्ट ज़रूरी होता है, और स्पेशली मेंटल सपोर्ट मोर देन अ फिजिकल सपोर्ट, क्योंकि हमें अगर आप काम करने को बोलोगे हम पूरे दिन काम कर सकते हैं, बट अगर आप रात में आकर एक हग दे दोगे तो आपका वो जो काम करा हुआ सारा है ना वो आप वैसे ही वेंट आउट हो जाता है, एंड देन यू फील हैप्पी। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, बस वही सपोर्ट हमें चाहिए।
0: भाई देखिए, नेहा ने बड़ी स्वीटली ये बताया है कि जो महिलाएं होती हैं ना उनका दिल बड़ा

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में उतनी ही प्यारी सी नेहा हमारे साथ बैठी हैं। नेहा जो कि नेहा क्रिएशन की CEO फाउंडर हैं, ऑल इन वन एक मंडाला स्टोर चलाती हैं और ये ऑनलाइन बहुत कुछ करती हैं। मतलब अगर आप एनरोल करना चाहते हैं जरूर जाइए और चेकआउट करिए और आप एनरोल कर लीजिए। नेहा एक

0: बड़ा अहम सवाल। हम लोगों ने, यानी हम इन द सेंस महिलाओं ने, काफ़ी प्रगति की है। एक समय था जब हमें शायद पढ़ाई का मौका नहीं मिलता था, हमें पैदा ही नहीं किया जाता था, कन्या भ्रूण हत्या वॉज वेरी कॉमन इन इंडिया। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें तो प्रोग्रेस हो गई हैं, और अगर मैं हमारे कहना चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ तो काफ़ी प्रोग्रेस दिखती भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी इक्वालिटी नहीं है। खास तौर पर मैंने देखा है घरों के अंदर जो है ना, वहीं इक्वालिटी नहीं दिखती है, और ये इक्वालिटी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर या फिर कहना चाहिए लोगों की स्पीचेस में या ऐसे कार्यक्रमों में नज़र आती है, बट चार दीवारी में, समाज में, परिवारों में आज भी इक्वालिटी की कमी है। सो क्या लगता है, सबसे पहले तो इक्वालिटी कैसे आ सकती है और किन किन चीज़ों में आज भी ये इक्वालिटी नहीं है?
1: ओके, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे का अगर समझाऊं, मेरे टर्म्स में जब आप कोई काम करते हैं करेक्ट, तो आपका जो आपने जो भी काम किया है वो सबको बहुत अच्छा लगता है करेक्ट, पर जब ही वो काम गलत जाता है तो हजारों लोग उस पर आके क्वेश्चन करने लगते हैं करेक्ट। ऐसे ही क्या होता है कि हर एक फैमिली में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है बच्चे की केयर करना, एक डिपार्टमेंट होता है घर की केयर करना, एक डिपार्टमेंट होता है अपना ऑफिस जॉब या जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप हाउस लेडी हैं या वो हैं। एज अ फीमेल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट दो डिपार्टमेंट तो संभालेंगी जो आपकी प्रायोरिटी हैं, एक आपका घर, एक आपका बच्चा
0: जी।
1: दो मेन प्रायोरिटी तो आपकी हैं करेक्ट, फिर आप साथ में ऑफिस भी संभालती हैं। आपने मेट्रोपॉलिटन की बात की, बिल्कुल सही बात है, मेट्रोपॉलिटन में एक डिपार्टमेंट कम हो जाता है, वो है आपका किचन वाला, क्योंकि जनरली हम लोग कोक या मेड्स वगैरह लगा लेते हैं, डोमेस्टिक हॉल हमारे पास बहुत सारी होती है, जैसे वो एक डिपार्टमेंट कम हो जाता है, लेकिन तब भी हमारे पास दो मेन डिपार्टमेंट रहते हैं, बच्चे को संभालना जो हमारी मेन प्रायोरिटी होती है और जो हमें ऑफिस का काम करना। बट इसी कंपैरिजन में अगर आप मेन की बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ एक डिपार्टमेंट उनकी प्रायोरिटी पे होता है, वो उनका काम करना, वो बच्चों को संभालते जरूर है बट वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होते हैं, मतलब इट्स नॉट देयर कंपल्सरी ड्यूटी। अगर होमवर्क कराना है तो उनकी कंपल्सरी ड्यूटी नहीं है, उनके पास टाइम होगा तो वो करा देंगे, अदरवाइज आप ही की ड्यूटी है करेक्ट। तो जहाँ पे स्टेप बैक लेना होता है वहाँ एज अ मदर को ही उस चीज़ में सेक्रीफाइस करना होता है, फादर शायद वहाँ पर उतना इनिशिएटिव नहीं दिखाते करेक्ट। वहीं पर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लैक है हमारे पूरे सोसाइटी में कि हमने हमारी वुमेन को एम्पावर करना सिखाया, उनको पढ़ना सिखाया, उनको जॉब करना सिखाया, बट शायद जिस जनरेशन में हमें ये सिखाया हमारी मदर ने, हमारी उससे पहले वाली जनरेशन ने, शायद उस टाइम पे वो लड़कों को ये सिखाना भूल गए कि उन लड़कियों को डील कैसे करते हैं।
0: yes.
1: ये तो सिखा दिया कि हमें कैसे पढ़ाना है, हमें कैसे करियर बनाना है, हमने बना भी लिया, हमने सारे डिपार्टमेंट संभाल भी लिए, बट शायद उनको ये सिखाना भूल गए कि आप एक और डिपार्टमेंट भी अपनी प्रायोरिटी लेके संभाल सकते हैं। तो अभी भी अगर आप में और आपके हस्बैंड में कभी सेक्रीफाइस करना पड़े तो जाता उधर ही है सेक्रीफाइस करने की, एज अ मदर आप ही को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो शायद आगे नहीं लेते। ये मुझे लगता है कि एक सोसाइटी में एक लैक है जिसको इम्प्रूव होने की काफ़ी ज़रूरत है, और ये मुझे लगता है जैसा आपने कहा एजुकेटेड फैमिली में भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप गाँव में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा, ये हर फैमिली की कहानी है, तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत आज भी है।
0: और इस माइंडसेट में ना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो रोल है वो परिवार और समाज निभाता है। ऑब्वियसली यार परिवारों से ही समाज बन रहा है, सो सबसे पहले तो परिवारों में ये इक्वालिटी नज़र आए, यानी महिलाएं जब काम कर रही हैं तो उसे नॉर्मलाइज ना किया जाए, और पुरुष जब काम नहीं कर रहे हैं तो उसे भी नॉर्मलाइज नहीं किया जाए, एक इक्वालिटी रहे। कि मान लीजिए आप दोनों ऑफिस से आए हैं और आते ही ये कहा जाए कि तुम चाय बना लो, तो इसकी जगह होना चाहिए चाय मैं बना लेता हूँ, तुम खाना बना लो। सो देयर हैज टू बी एन इक्वालिटी। एंड अगर मान लीजिए कि और भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी है कि भाई बच्चे का होमवर्क करवाना है, सो ये बांटना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूं ही मानकर चलेंगे कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सिर्फ महिलाएं ही संभाल सकती हैं, तो मैं इसे इसलिए डिसएग्री करना चाहूंगी क्योंकि ये ना मुझे लगता है एक थोपी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अच्छे शेफ्स की बात करें तो पुरुष बहुत अच्छे शेफ्स हैं, और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं ही, जैसे सिर्फ एक मुझे लगता है कि माँ बनने वाली जो चीज़ है वो प्रकृति ने डिसाइड कर दी थी, बाकी सारी चीज़ें प्रकृति ने नहीं डिसाइड की थी। सो अब टाइम है कि ये इक्वालिटी भी हमें अपने समाज में नज़र आए, और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत किसी लॉ की नहीं है, किसी और चीज़ की नहीं है, किसी रिफॉर्म की नहीं है, सिर्फ छोटी सी सोच बदलने की, और वो हर इंडिविजुअल की, और ख़ास तौर पर पुरुषों की है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रेष्टा 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रेष्टा 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नेहा गुप्ता जी से। ढेर सारी बातें आज हमने इनसे की और वाकई एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट और एक बहुत ही कहना चाहिए सशक्त महिला ये हैं। ना सिर्फ बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी को बदल रही हैं लेकिन उनके जीवन में थोड़ी थोड़ी खुशियां भरने की कोशिश कर रही हैं। तहे दिल से धन्यवाद नेहा जी, आज अपने अपना समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की। हमारी बहुत सारी महिलाएं पुरुष हमारे लिसनर को इतनी बेहतरीन जानकारी आपने दी। जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगे उन्हें?
1: बस एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि हर फीमेल को एक रोल में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। वो एज अ मदर भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, एज अ बिजनेस पर्सन भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। रादर देन आप डिसाइड करें कि आप सिर्फ मदर बनना चाहती हैं या सिर्फ वाइफ या सिर्फ डॉटर बनना चाहती हैं, आप एक स्टेप आगे भी ले सकती हैं। जो आपके दिमाग में चल रहा है अगर आप उसे पेपर पे उतार लें तो आप बहुत कुछ आगे कर सकती हैं, रादर देन आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक रोल में रखें।
0: ये तो बड़ा अच्छा सा मैसेज था क्योंकि अक्सर महिलाएं क्या होती है ना, वो छोटी सी चीज में सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि चलिए भाई हमने ये पा लिया है तो ये ठीक है। सो अगर आपको भी लगता है कि जीवन में कुछ सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं तो जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि टाइम किसी के पास गारंटीड नहीं होता है और ये क्या पता यही सही समय हो जब आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो करियर से और साथ के साथ जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। लेकिन तहे दिल से धन्यवाद नेहा जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। आई होप जैसे कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा भी शायद इससे रिलेट कर पाए या इस कहानी से मेरी रिलेट कर पाए और अपने करियर की एक नया, अगर वो अपने करियर को एक नए पंख देना चाहते हैं वो बिल्कुल दे पाए।
0: वाकई भाई हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, अपनी बस उस क्वालिटी को पहचान लीजिए और उसे अपनी आइडेंटिटी बना लीजिए। लेकिन जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ क्योंकि मैं आरजे भावना ले रही हूँ आपसे इजाजत। आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा,
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। हर बार की तरह आज फिर लेकर के आए हम आपसे, हमसे, हम सबसे जुड़ा हुआ एक विषय, एक मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे और तलाशेंगे एक नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएंगी एक बेहतर भविष्य की ओर, हमारे एक अच्छे फ्यूचर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में हमने दीपावली का महापर्व सेलिब्रेट किया और बहुत सारे त्यौहार, जो एक आजकल फेस्टिवल जो सीजन चल रहा है उसको हमने सेलिब्रेट किया, उसी के बीच में एक ऐसी समस्या जिससे हम दिन और रात दो चार होते हैं, जाने अनजाने हमें कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी भी करनी पड़ती है, लेकिन वो समस्या, वो परेशानी जुड़ी हुई है हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से और हमारे स्वास्थ्य से भी। शायद आपको मेरी बात से कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आज हम बात करेंगे प्रदूषण को लेकर के या पर्यावरण में जो फैल रहा वायु प्रदूषण है उसको लेकर के, लेकिन आज का विषय उससे थोड़ा हटके और ज़्यादा गंभीर है, और वो है एडल्ट्रेशन यानी मिलावट, यानी जिसको हम बहुत दिनों से, अगर हम बात

करें तो कई दशकों से या जब से भी हमारे जीवन का शुरुआत हुई है, एक परंपरागत तरीके से एक व्यापारिक रूप जो खाने पीने की वस्तुओं ने लिया है, उसके बाद से शायद ये एक प्रकार का अभिन्न अंग बन गया है हमारे जीवन का। मिलावट हमारे खाने पीने की वस्तुओं में, चाहे वो दूध है, चाहे वो सब्जियाँ, कुछ भी आप ले लीजिए, केमिकल का यूसेज ले लीजिए, या फिर दूध का सबसे पहले नंबर आता है, या हम खाद्य जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उनकी हम बात करें, मसालों की बात करें, या जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया दीपावली के पर्व का, उसमें बनने वाली मिठाइयों की बात करें, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलेगी मिलावट। और केवल यही नहीं कि जिन खाने पीने की चीज़ों के बारे में हमने बात की, बात हम करते हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करती हैं या हमें जो बीमारियों से बचाती हैं, आज की डेट में उन दवाइयों में भी मिलावट होती है, वो दवाइयां भी प्योर मिल पाना भी एक चैलेंज हो गया है और एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या हमारे सामने मिलावट के रूप में हो गई है। यानी आप समझ के देखिए कि अगर हम मिलावट की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि प्योरिटी वाली चीज़ कौन सी है और किस चीज़ में मिलावट है, यानी हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ घटिया है जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, हमें उस सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चल पाता। और एक बड़ी साधारण सी बात है कि इस चीज़ के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, जो मिलावट का जो काम है, जो लोग करते हैं इस काम को, जो एक प्रकार का गंभीर अपराध भी है, मतलब अगर हम सामाजिक बुराई की बात करें तो बुराई के अलावा एक अपराध भी है जो पूरी की पूरी मानव जाति के अगेंस्ट ये लोग करते हैं जो मिलावट का धंधा करते हैं। उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो केवल और केवल होता है अपने मुनाफे को बढ़ाना, यानी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना। केवल एक कारण मात्र होता है मिलावट करने का, चाहे वो हमारे खाने पीने की वस्तुओं की मिलावट हो या फिर दवाइयों में होने वाली मिलावट। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के, एक बहुत ही सीरियस मैटर जो है एडल्ट्रेशन यानी मिलावट। मिलावट हमारे खाने पीने की वस्तुओं में, हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों में, मिठाइयों में, और यहाँ तक कि दवाइयों में भी। जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको बताया कि मिलावट करने के पीछे का जो मुख्य पर्पज होता है वो केवल मुनाफा कमाना। कुछ लोग हैं जो केवल अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार में होने वाले मुनाफे को बढ़ाने के लिए इस मिलावट का सहारा लेते हैं, चाहे उसके लिए उनको किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करनी पड़े, चाहे वो उनको सामाजिक बुराई के रूप में उस बुराई को अपनाना पड़े, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक अपराध करने का भी जोखिम उठाना पड़े, लेकिन उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है केवल प्रॉफिट बनाना, पैसे बनाना। तो आखिर ऐसे लोगों को अगर हम सामाजिक बुराई की हम बात करते हैं, तो अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो ये मानवता के दुश्मनों के रूप में हम जान सकते हैं इनको, जिनके लिए हमारे कानून में भी बहुत प्रावधान है जिसमें इनको सजा भी दी जा सकती है। लेकिन अगर हम इस मुद्दे को अगर विस्तृत रूप से हम डिस्कस करना चाहें, तो आखिर हम कुछ ऐसे कारण अब आपके सामने लाना चाहते हैं कि जो इस मिलावट के काम का, इस सामाजिक बुराई का करने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला जो कारण है मिलावट के काम के पीछे का जो जुड़ा हुआ है वो है आर्थिक लाभ। यानी आपको जो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, अपना मुनाफा बढ़ाना है, उसके लिए लोग मिलावट करते हैं। क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ में कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी की आइटम को मिलाना जो उस वस्तु के मूल्य से कम की हो, जैसे हम बात करते हैं शुद्ध घी की, बात करते हैं देसी घी की, यदि आप उसमें वनस्पति घी की मिक्सिंग कर देते हैं तो वनस्पति घी के मुकाबले में देसी घी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और वो लोग उसी को उसमें मिला करके अपना प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट रेशो बढ़ा लेते हैं। या हम बात करते हैं मसालों की, मसालों में आमतौर पर आपने सुना होगा कि ईंट का पिसा हुआ चूरा लाल मिर्च में मिला दिया जाता है, हल्दी के अंदर भी शीशा मिला दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह के जानवरों से संबंधित जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको भी मसालों में कई तरह से प्रयोग कर लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका केवल और केवल पर्पज होता है कि उनका प्रॉफिट रेशो बढ़िया हो जाए, ज़्यादा हो जाए। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण अगर हम भारत की बात करें, तो यहाँ पर एडल्ट्रेशन के खिलाफ जो मिलावट का जो अपराध है, जिसको हम सामाजिक बुराई के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, उसमें हमारे पास जो कानूनी व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि अक्सर आपने देखा होगा कि फलां व्यक्ति को मिलावट के आरोप के में बंदी बनाया गया या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कानूनी तौर पर कोई भी सख्त कार्रवाई या एक होता है उसको सजा देने का जो एक कार्य होता है वो सरकारी एजेंसियों द्वारा उस तरह से नहीं किया जा सकता जिससे कि इन मिलावटखोरों के मन में किसी प्रकार का कोई भय आए। तो वो किसी भी प्रकार का जो दंड जो होता है, जो उनके खिलाफ जो सजा का प्रावधान है, उसका कोई जब भय नहीं होता तो उनको इस मिलावट के धंधे को जारी रखने के लिए एक तरह का मोटिवेशन मिलता है, वो परवाह करना छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे एक मेजर रोल प्ले करती है मिलावट के धंधे को बढ़ाने में, कि हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है। हम लोग जो यूज़ करते हैं जितनी भी चीज़ें, हमारा खुद का एक नेचर बन गया है कि यदि हमें कोई वस्तु सस्ती मिल रही है तो हम बिना इस बात को देखे हुए, बिना प्रमाणों की जांच किए हुए कि ये वस्तु इतनी सस्ती आखिर क्यों है और इसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट होने की संभावना ज़्यादा है, हम इस बात की परवाह किए बिना उस वस्तु को खरीदते हैं, उसको उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो मिलावटखोर द्वारा कोई भी चीज़ मार्केट में बेची गई सस्ते रेटों पर, तो जब उसका सेल का जो वॉल्यूम है बढ़ता है और उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो वो भी एक तरह की प्रथा का चलन हो जाता है कि मिलावट वाली वस्तु की एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी होने की वजह से वो लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। तो जो अवेयरनेस की कमी है, जो उपभोक्ताओं के अंदर, जो हम लोग अपने आप को जो ग्राहक के रूप में हम कहते हैं, उनके अंदर जागरूकता अगर नहीं होती है तो मिलावट के जो कारोबार है मिलावट का, उसको बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि मार्केट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर आइटम की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, तो आप यकीन मानिए कि उसके अंदर मिलावटी सामान के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि बाज़ार के अंदर जो एक डिमांड है, जो एक किसी भी माल की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी अगर ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड है, तो उसकी जो आपूर्ति अगर कम है, तो मिलावटखोरों के लिए जो एडल्ट्रेशन का काम करते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर पैदा हो जाता है कि वो उस वस्तु में मिलावट करके उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं और आपके सामने एक जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो आपके सामने रख देते हैं और हम उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के अंदर का यदि गैप किसी भी सूरत में किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए बढ़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस पर भी नज़र रखने की कि अगर ऐसा है तो हम थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतें उस वस्तु को खरीदने में, क्योंकि उसके मिलावटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, कि आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं वस्तुओं में मिलावट की, खाने पीने के सामान की बात करें, रोजमर्रा की चीज़ों की बात करें, यहाँ तक कि दवाइयों की। तो जैसा कि हमने अभी आपको पहले प्रोग्राम के हिस्सों में बताया कि किस किस चीज़ों में किस तरह से मिलावट की जाती है, और लोग जो एक सामाजिक इस बुराई को जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जो मिलावटखोर हम जिनकी बात करते हैं, उनका केवल और केवल उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, अपनी लाभ की मात्रा को बढ़ाना। आज हम जानेंगे कार्यक्रम के आगे के हिस्से में कि आखिर ये मिलावट कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है। जब कभी भी मिलावट का जिक्र आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है दूध, जो हमारे रोज़मर्रा की सबसे ज़्यादा ज़रूरी वस्तु है या सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या हमारे परिवार का या हमारे समाज का कोई भी वर्ग हो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर होता है तो वो दूध का होता है विभिन्न रूपों में। और आज के समय में जितनी दूध की डिमांड है उसके मुकाबले में उसकी आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती है, तो लोगों को एक बहुत बड़ा मौका मिलता है दूध के अंदर मिलावट करने का। खाली केवल मिलावट की बात हो कि केवल पानी मिला दिया जाए तब भी शायद बात समझ में आती है, लेकिन जब बात आती है ये कि आप केमिकल से दूध को बनाते हैं, यूरिया प्रयोग करके बनाते हैं या विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को यूज़ करके दूध बनाते हैं, तो वो सीधा सीधा खिलवाड़ होता है लोगों के स्वास्थ्य से, उनके जीवन से। तो इस प्रकार की भी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि बड़े बड़े कारखाने ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर यूरिया से बना हुआ दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और जो सिंथेटिक दूध जिस प्रकार से हम उसको बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी में एक तरह से जहर के रूप में चला जाता है। साथ ही साथ आमतौर पे आपने देखा होगा कि मसालों में बहुत ज़्यादा जो हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने में प्रयोग होते हैं उन मसालों में भी मिलावट होती है, क्योंकि मसाले एक ऐसी चीज़ है यदि उसमें कोई मिलावट कर दी जाए तो उसका स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलता है, चाहे उसका स्वाद बदल जाए। और मसालों को आमतौर पर किसी भी सब्जी में या आप जो भी कोई खाने पीने की सामग्री बनाते हैं उसमें डाल करके ही टेस्ट किया जाता है, उसके अतिरिक्त आपको मसाले चखने का या इस तरह का कोई जरिया नहीं होता है, तो वो बहुत कम पकड़ में आती है। या दूसरी एक बात हमने बताई आपको, वनस्पति घी जिस प्रकार से देसी घी के अंदर मिला करके उसकी एक जो कॉस्ट है उसको कम कर देते हैं मिलावटखोर, और आप उसको सामने मार्केट में बेच देते हैं क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और उसकी अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली कम रहती है, और साथ ही साथ जब मिलावट के बाद उसका दाम कम हो जाता है तो उसकी बिक्री और ज़्यादा हमारे समाज में, हमारे बाज़ारों में होने लगती है। केवल और केवल एक मिलावट का जो कारण है वो केवल आर्थिक लाभ ही नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे या जो लोग ग्रेन्स का स्टोरेज का काम करते हैं उनका जो स्टोर हुआ हुआ होता है अनाज, उसमें कई बार जाने अनजाने में भी मिलावट हो जाती है। लेकिन क्योंकि एक जिम्मेदार व्यापारी होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो उस मिलावट के कारणों को पहचाने और उस मिलावटी सामान को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकें। जैसा कि आमतौर पर देखा होगा आपने कि जो अनाज जहाँ पर स्टोर किया हुआ होता है बड़े बड़े गोडाउंस में, तो वहाँ पर चूहे अनाज की बोरियों को काट देते हैं, या दो प्रकार का घटिया और अच्छा जो अनाज है वो आपस में मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार की जो आकस्मिक जो भी मिलावट हो जाती है उसको रोका जा सकता है यदि हम थोड़ी जिम्मेदारी से और समझदारी से काम लें। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमने मसालों में बात की, मसालों में आमतौर पर देखा जाता है कि लाल मिर्च के अंदर आप ईंटों का जो चूरा है पाउडर बना करके डाल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो अभी हमने हाल ही में सेलिब्रेट किया दीपावली का फेस्टिवल, तो उस दौरान एक अनुमान के अनुसार तकरीबन बाजार में मिलने वाली जो खोए से निर्मित या अन्य प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं उसमें 30% तक मिलावट वाली मिठाइयाँ पाई गई हैं, ऐसा एक रिपोर्ट के सर्वे में आया है, जिसमें यह बताया गया कि जब विभिन्न

ऐसा भी होता है कि मिलावट होने के बाद उन सामान का, उन वस्तुओं का जो शुद्धता है या उनका जो स्वाद है ओरिजिनल, वो भी कम हो जाता है। तो लेकिन मिलावट अपने आप में एक सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक अपराध है। अभी एक पिछले दिनों एक रिपोर्ट में आया था कि हल्दी के अंदर उसका रंग बेटर बनाने के लिए शीशा मिक्स किया जाने लगा है ताकि उसका रंग और ज़्यादा बेटर लगे। तो कई बारी मिलावट इसलिए भी की जाती है कि प्रॉफिट तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ जो उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो किसी इन्फीरियर क्वालिटी का है तो वो थोड़ा बेहतर दिखे। जिस प्रकार से हम आमतौर पर देखते हैं कि गर्मियों में जब तरबूज का सीजन होता है तो उसके अंदर हमने देखा है कि इंजेक्शन लगा करके उसको लाल कर दिया जाता है, तो वहाँ पर उनका कोई प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा। तरबूज बेचने वाले के लिए उसको लाल करना, तरबूज को एक

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य से, हमारे जीवन से जुड़े हुए एक ऐसे मुद्दे की जो जुड़ा है हमारे रोजमर्रा के खाने पीने की वस्तुओं से, यानी मिलावट का। अभी हमने हाल ही में बात की आपसे कि दीपावली के पर्व पर मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावटें वाले सामान बाजार में बिक रहे थे, और बहुत प्रकार की चीज़ें जो भी हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल होती हैं उनमें भी एडल्ट्रेशन ने अपना एक घर बना रखा है। एक प्रकार का ये जो सामाजिक बुराई है, दिन प्रतिदिन पनपती जा रही है। अब तक हमने बात की कि किस प्रकार से मिलावट की जाती है, मिलावट किन वस्तुओं में होती है। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको चिंता में डाल सकती हैं, परेशान भी कर सकती हैं, लेकिन आपको बेहतरी के लिए, आपके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो है इस मिलावट के कारण होने वाले नुकसान, यानी अगर हम बात करें दुष्परिणामों की जो हमें भुगतने पड़ते हैं मिलावटी सामान के उपभोग करने से, यानी मिलावटी वस्तुओं को खाने से। सबसे पहला जो खतरा आता है वो मिलावटी, यदि आपने किसी भी चीज़ का सेवन किया तो सबसे पहले ये आपके पेट को डिस्टर्ब करता है, आपके इंटेस्टाइन हो चाहे आपका स्टमक हो, उसमें कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो केमिकल से दूध बनता है, यूरिया से जो दूध बनता है, जिसको हम सिंथेटिक मिल्क की बात भी करते हैं, यदि आप उसका सेवन करते हैं और लगातार सेवन आप करते जाते हैं तो आपके पेट में गंभीर प्रकार के रोग बन सकते हैं, ऐसा स्टडी में साफ तौर पर आया है। और बहुत सारे रोगी अक्सर अपने पेट की समस्याओं को लेकर जब डॉक्टर से मिलते हैं तो पता चलता है कि वो पिछले काफ़ी समय से ऐसा केमिकल वाला सिंथेटिक दूध या उस दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। यदि हम बात करें एक सर्वे की, तो एक सर्वे के अनुसार आप यकीन मानिए लगभग मिलावटी खाद्य पदार्थों से जो लोग हर साल बीमार पड़ते हैं भारत में, उनकी संख्या ही लाखों में है, जबकि कुछ लोगों की तो इस मिलावटी सामान के उपयोग के कारण मृत्यु तक हो जाती है। साथ ही साथ हमें जानने की ज़रूरत है कि इन सामानों के प्रयोग से आपको कैंसर जैसा भयंकर रोग भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमें इनके दुष्परिणामों के बारे में पता होते हुए भी हम बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक बात और विशेष तौर से समझने वाली है कि जब कभी भी आप किसी मिलावटी सामान का उपयोग करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो उसके जो दुष्परिणाम हैं वो एकदम से आपके सामने नहीं आते। आमतौर पर आपने देखा होगा कि यदि आप केमिकल वाला दूध या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो छोटा मोटा आपको पेट की बीमारी हुई, परेशानी हुई, वो ठीक हो गई तो आपको थोड़ी उसकी गौर नहीं रहती, लेकिन कैंसर जैसी जो घातक बीमारी हैं यदि वो मिलावटी सामान के प्रयोग से आपको हो रही हैं तो उसके जो लक्षण हैं वो एकदम से सामने नहीं आते, वो लंबे समय के बाद बड़े ही दीर्घकालिक उसके परिणाम होते हैं। और जो बाद में जब वो समस्या आपके सामने उभर के आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं आर्थिक परिणामों की, यदि हम आर्थिक बेनिफिट की बात करते हैं, जो हमने आपको कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए मिलावट को और इस काम को करते हैं, तो उसी का एक दूसरा पहलू भी यह है कि

जब हम किसी मिलावट वाले सामान को खरीदते हैं तो जो कीमत हम उस सामान की चुकाते हैं वो हम चुकाते हैं एक असली और शुद्ध आइटम के रूप में, लेकिन हमें मिलता है बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का मिलावटी सामान। तो एक प्रकार की जो आर्थिक हानि है, जो आर्थिक नुकसान है, वो कहीं ना कहीं हमारे ग्राहक का, हमारे जो उपभोक्ता हैं वो करते हैं। जिस चीज़ की वैल्यू के लिए वो पैसा चुका रहे हैं, हमें वो वैल्यू वाला सामान नहीं मिलता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से मैंने मिलावट की बात की, तो मिलावट में एक बात तो तय है कि किसी भी चीज़ को हमेशा अच्छा कह करके बेचा जाता है, नाम लेकर के बेचा जाता है, लेकिन वो वस्तु उस प्रकार के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है। तो एक प्रकार का मार्केट के अंदर जो अविश्वास का माहौल बनता है, जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, वो उस वस्तु के प्रति या उस वस्तु से मिली जुली जो चीज़ें रहती हैं उसके प्रति उनके मन में विश्वास की कमी हो जाती है। और मार्केट के अंदर उपभोक्ताओं का यदि भरोसा किसी भी प्रकार की वस्तु के प्रति, जैसे मैंने अभी आपको घी का एग्जाम्पल दिया, तो जिस प्रकार की मिलावट देसी घी में चल रही है, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, परफ्यूम डाल करके खुशबूदार घी बना दिया जाता है, तो लोगों में एक अलग तरह का भय का वातावरण बन जाता है कि असली घी भी असली मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे कोई सही व्यक्ति सही सामान को भी मार्केट में बेचे तो उसको भी उपभोक्ता शक की दृष्टि से देखते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने सही सामान को भी बेचना। साथ ही साथ जो एक हमने चिकित्सकों की जो एक रिपोर्ट, एक सर्वे हमने चेक किया, उसमें एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि जो मिलावटी भोजन, जो मिलावटी सामान बच्चे उपयोग करते हैं बचपन से, तो उनका विकास, जो उनका आर्थिक और मानसिक, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो धीमा पड़ जाता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में यदि आप मिलावटी सामान का प्रयोग करते जा रहे हैं तो आपके लीवर, किडनी और आपके लंग्स और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के, तो वो बहुत एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाती है। यदि हम पोषण के नाम पर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को देख करके उसके हिसाब से किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर वो मिलावटी सामान है, तो एक चीज़ का जहां आपको लाभ मिलना चाहिए लाभ ना हो करके वही चीज़ आपको नुकसान देने लगती है, तो एक चिंताजनक और खतरे वाली स्थिति से हमको जूझना पड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

चर्चा की, लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर इस सामाजिक बुराई पर, जो ये अपराध है एक तरह का बनता जा रहा है, उस पर अंकुश लगे कैसे, आखिर इसके लिए हमारे देश में व्यवस्था है क्या। अब अगर हम बात करें उपभोक्ताओं की, तो वो हमारे पार्ट पे हो सकती है कि ठीक है हम अपनी तरफ से सावधानी बरते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है, यदि कोई स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाला काम कर रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, हमारे देश के नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए, जो मैंने अभी आपको बात की कि दीर्घकाल में लंबे समय तक अगर मिलावट वाला सामान आप उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर जैसे भयंकर रोग होने की भी संभावना बनी रहती है, तो इन चीज़ों पर आखिर रोक लगे कैसे, हमारे कानून में व्यवस्था क्या है। दोस्तों, भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत मिलावट को यानी एडल्ट्रेशन को क्लियरली एक क्राइम का दर्जा दिया गया है, एक अपराध माना गया है। और आप मान के चलिए कि FSSA जो है उसने स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि मिलावट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन को भी खतरा हो सकता है, उसके जीवन को भी हानि पहुंच सकती है, उसके स्वास्थ्य को खतरा होता है, तो ये एक्ट को सीधा सीधा अपराध में डिक्लेयर करता है एडल्ट्रेशन को। इसमें जो इस कानून के तहत जो प्रावधान है, उसमें यदि कोई एडल्ट्रेशन का बहुत गंभीर मामला आपके सामने आता है, यदि कोई ऐसी वस्तु ऐसी चीज़ की मिलावट है कि जो सीधे सीधे किसी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन रही है या उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यानी यदि आप एडल्ट्रेशन करते हैं, जो समाज के अपराधी हैं, अगर एडल्ट्रेशन करने वाले लोग जो अपने आर्थिक मुनाफे को बढ़ाने के लिए एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, तो ऐसा कोई गंभीर मामला यदि आता है तो उस व्यक्ति को जो भी इस काम के लिए जिम्मेदार है उसको आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। साथ ही साथ यदि हम पेनल्टी की बात करें, आमतौर पर हमने देखा गया है कि लोग अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, तो उस दशा में यदि वो अपराध सिद्ध हो जाता है या ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता है, तो 10 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड उस व्यक्ति पर या उस जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करने वाली जो भी दुकान है, कंपनी है, उसके ऊपर लगाया जा सकता है, यदि वो इस प्रकार का कोई कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं, यदि वो आरोप उन पर सिद्ध हो जाता है। साथ ही साथ अक्सर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि यदि कोई वस्तु हमें लग रहा है, डाउट है कि ये मिलावट वाली हो सकती है या ये खतरनाक, इसके अंदर कोई केमिकल मिले हुए हैं या ये उतनी प्योर नहीं है जितना कि इसको बता करके बेचा जा रहा है, तो उसकी सुविधा के लिए हमारे देश में, भारत की हम बात करते हैं, तो हर स्टेट के अंदर, हर राज्य में फूड सेफ्टी विभाग और लैब टेस्टिंग की भी व्यवस्था है। यानी आप किसी भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा सामान आपने मार्केट से खरीदा और आपको लगा कि जब आपने उसको उपयोग किया तो किसी प्रकार का आपको संदेह हुआ कि इसमें मिलावट होने की संभावना है, तो आप उसको फलां लैब के पास, जो भी आपके कंसर्न एरिया में है, बहुत इजीली अवेलेबिलिटी है कि आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, तो वहां पर उस फूड सैंपल को आप जा करके टेस्ट करा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर शॉप की कोई आइटम में आपको लग रहा है कि मिलावट की संभावना है, या आपको लगा या आपने देख लिया ऐसा कुछ, तो आप जो फूड सेफ्टी विभाग आपके क्षेत्र का है उसको आप एक शिकायत द्वारा जानकारी दे सकते हैं, और आपकी शिकायत को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है, और उस फलां दुकानदार जो भी मार्केट में उस प्रकार का जो मिलावट वाला सामान बेच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, छापेमारी करके उसके सामान की टेस्टिंग भी कराई जाएगी, और यदि कोई अपराध उस पर सिद्ध होता है, यदि उसकी मिलावट पकड़ी जाती है, तो उस पर जैसा मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, और यदि वो जो भी अपराध है मिलावट वाला बहुत गंभीर श्रेणी वाला, सीधे सीधे जान को जोखिम में डालने वाला है, तो उम्र कैद की सजा तक भी उस अमुक व्यक्ति को दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं मिलावट की, जो एक जिसका जन्म होता है कि आप अपने आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं मिलावट करने के लिए, या आपकी जो ग्रीडीनेस है, जो आपका लालच है पैसा कमाने का ज़्यादा, वो आपको प्रेरित करता है इस प्रकार के सामाजिक अपराधों को करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे कानून में जो प्रावधान है वो किसी हद तक अभी लचर स्थिति में है, जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा, तो उनको बहुत ज़्यादा सख्ती से लागू कराने की भी आवश्यकता है। यानी कि लोगों के अंदर इस बात का भय होना चाहिए कि यदि आप मिलावट वाला सामान बेचते हैं जो किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, किसी के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आपको आजीवन कारावास की सजा भी मिल सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बातें ऐसी हैं जिनको एक भय के रूप में लोगों के बीच में जाना जाना चाहिए, ताकि वो मिलावटखोरी के काम से
अपने आप को अलग रख सकें और इस सामाजिक बुराई का हम अपने समाज से, अपने देश से अंत कर सकें। दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मैं

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल के साथ। आज हमने चर्चा की मिलावटखोरी के ऊपर, एडल्ट्रेशन के ऊपर, जिसको हम भुगत रहे हैं, जिसको हम झेल रहे हैं कई दशकों से, यदि हम बात करें तो पिछले अनेकों वर्षों से, और जो एक सामाजिक बुराई के साथ साथ एक सामाजिक अपराध भी बन चुका है। कुछ लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए इस सामाजिक बुराई को, इस सामाजिक अपराध को करते हैं, जिनके ऊपर अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमने बात की कानून के प्रावधानों की, लेकिन आखिर इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने पार्ट पर किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, उसमें अगर हम बात करें कंज्यूमर का क्या रोल होना चाहिए, या हमारा बतौर एक ग्राहक जो इसको कंज्यूम करते हैं सामान को, उनका क्या रोल होना चाहिए, तो उसमें हम कुछ टिप्स आपको बताते हैं कि जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। यदि आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं, यदि वो पैक्ड प्रोडक्ट है, खुले तौर पर सामान मिलने वालों में केवल और केवल दुकानदार की विश्वसनीयता या उस सामान का जो रंग रूप है या उसका जो स्वाद है, वो आपको बता देगा कि वो मिलावट वाला है या नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यदि कोई पैक्ड आइटम आपके पास है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर FSSAI का लाइसेंस नंबर जरूर देखें, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है, उसके हिसाब से जो लाइसेंस दिया जाता है वो केवल उन्हीं कंपनीज को दिया जाता है जो पूरी तरह से किसी भी चीज़ की प्योरिटी को मेंटेन रखती हैं, या जो जिस प्रकार के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करती हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो खुला सामान है उसको खरीदने से बचें, क्योंकि उस खुले हुए सामान की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। वो सामान जिस स्थिति में जहाँ रखा होता है केवल और केवल वहीं तक सीमित रहता है, आप कभी भी उसका स्रोत नहीं पता लगा पाते हैं। तो ऐसी दशाओं में अक्सर अपराधी जो है, सामाजिक अपराध करने वाले मिलावटखोर जो लोग हैं, वो बच जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप खुला हुआ सामान ना खरीदें, उसको खरीदने से बचें। साथ ही साथ जो हमने बात की कि दूध एक ऐसी चीज़ है हमारे जीवन से जो जुड़ा हुआ, हमारे परिवार के सभी वर्ग, हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग दूध को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि सिंथेटिक मिल्क की आपको पहचान करनी है, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप उसको उबाल कर देखें। उसके झाग और रंग से किसी हद तक ये पता चल जाता है कि वो दूध यूरिया वाला सिंथेटिक मिल्क है या प्योर मिल्क है। साथ ही साथ चूँकि दूध अक्सर खुला हुआ भी मिलता है और पैकेट वाला भी मिलता है, यदि खुला हुआ दूध आपको लेना भी पड़े तो विश्वसनीय स्रोत से लें, यानी जो लोग भैंस गाय अपने घर में पालते हैं या जो इस प्रकार के व्यवसाय करते हैं, सीधे उनसे ही खरीदें, किसी भी मीडिएटर के थ्रू दूध को ना लें। क्योंकि सीधे सीधे जो भैंस और गाय पालते हैं उन लोगों से खरीदें, किसी मीडिएटर से दूध को खरीदने से बचें, क्योंकि इस बीच के समय में उसमें मिलावट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो कई बार पानी मिलाने से या केमिकल मिलाने से भी ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ एक जागरूक उपभोक्ता होने का भी आपको फर्ज निभाना चाहिए। जैसे मैंने कार्यक्रम के पिछले हिस्से में कहा कि यदि कहीं भी आपको कोई संदिग्ध वस्तु ऐसी लगती है, किसी वस्तु में आपको संभावना या संदेह है कि इसमें मिलावट की गई है या की जा सकती है, या ऐसा आपको प्रतीत होता है उसके स्वाद से या रंग रूप से कि ये मिलावट वाला सामान है, तो उसकी कंप्लेंट आपको फूड सेफ्टी हेल्पलाइन जो है 1800112100 पर कर सकते हैं, या कोई अन्य नंबर जो आपके पास स्थानीय नंबर हेल्पलाइन का है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं या लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा एक जो आवश्यकता है वो ये कि हमें सामाजिक स्तर पर, यानी कम्युनिटी में लेवल पे, इस चीज़ को लेकर के हमेशा, खास करके जब ये त्योहारों का मौसम रहता है, क्योंकि उस समय पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी नहीं होती है, तो ये सबसे ज़्यादा गोल्डन और सुनहरा अवसर होता है मिलावटखोरों के लिए अपने मिलावट वाले सामान को बिना किसी झंझट के मार्केट में बेचने का। तो हमें खास करके ऐसे समय पर विभिन्न स्कूलों के माध्यम से या कम्युनिटी प्रोग्रामों के माध्यम से जागरूकता फैलानी चाहिए, इस बारे में बताना चाहिए लोगों को कि हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है, ताकि हम मिलावटी सामान को खरीदने से, उसके प्रयोग से और उससे होने वाली स्वास्थ्य हानि से बचा जा सके और हम उसको रोक सकें। और सामाजिक स्तर पर ऐसे लोगों का बायकॉट भी करना चाहिए, जो लोग, उनका बहिष्कार करना चाहिए जो लोग इस व्यवस्था के, सामाजिक बुराई के जिम्मेदार हैं या जो इस प्रकार का काम करते हैं मिलावट का। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम आपके अपने कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल के साथ। अभी ताजा हमने सेलिब्रेट की दीपावली, दीपावली का महापर्व, खूब पटाखे चलाए, मिठाइयां खाई, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाद किरकिरा हो जाता है जब पता चलता है हमें कि उन मिठाइयों में भी मिलावट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थीं और हमने जाने अनजाने में उनका सेवन किया। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और अब क्योंकि निष्कर्ष का समय है, कार्यक्रम के समापन का समय है, तो अब हम बात करते हैं आखिर इस सामाजिक समस्या से, इस बुराई से बचने के लिए क्या समाधान किया जाए और इसके उपाय आखिर हो क्या सकते हैं। स्पष्ट रूप से तय है कि ये कोई एक तरफा होने वाला काम नहीं है, यानी मिलावट को यदि रोकना है, यदि अपने जीवन से इसको दूर भगाना है, तो हमें समाज के हर स्तर पर काम करना पड़ेगा। ना केवल प्रशासन, ना केवल सरकार, बल्कि हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाना पड़ेगा और हमें जागरूकता लोगों के बीच में लानी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जरूरी बात कि हमारे, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हमारे जो कानून हैं, जो हमने फूड सेफ्टी जो एक्ट की बात की, उसके बारे में एक विशेष बात कि जो उसके प्रावधान हैं उनको सख्ती से लागू कराना। जिस किसी भी प्रकार का सैंपल कलेक्ट होता है, यदि वहाँ पर कोई संभावना ऐसी पाई जाती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर जो जुर्माना लगना है, उसको जो सजा देनी है, वो की जानी चाहिए, और इस बात का स्पष्ट संदेश समाज के अंदर जाना चाहिए ताकि लोगों को इससे भय व्याप्त हो और वो इस प्रकार का काम करने से बचें। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस बात की भी है कि जो भी आइटम मार्केट में मिलती हैं खाने पीने की, अक्सर एक चैलेंज रहता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ मिलावट वाली है या प्योर है। तो सरकार को सरकारी लेवल पे एक अपने आप में एक सुविधा प्रदान करनी चाहिए, चाहे वो सरकार करे या जो व्यक्तिगत जो संस्थाएं हैं वो भी इस चीज़ को कर सकती हैं, कि ऐसी किटें बनाई जानी चाहिए, ऐसे सामान हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए, या जिनको हम कहते हैं ऐसे तरीके कि जिनके द्वारा तुरंत इमीडिएट आप चेक करके ये पता लगा सकें कि फलां चीज़ प्योर है या नहीं है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा शहद को भी एक प्योरिटी चेक करने का एक तरीका होता है कि पानी में डालते हैं उसको कि वो घुल रहा है या बैठ रहा है। इसी प्रकार से मसालों में हम बात करते हैं कि उनको पानी में घोल करके देख लेते हैं कि वो नीचे बैठ रहे हैं या कलर ऊपर आ रहा है। बहुत तरह के जो तरीके हैं, और जिनमें ये देसी जो तरीके हमारे बुजुर्गों द्वारा बताए जाते हैं या आम जनजीवन में हम देखते हैं, उसके अतिरिक्त यदि कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसको टेक्निकली वेरीफाई करना है, तो उसकी किट मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम इमीडिएट चेक करके पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ एडल्ट्रेटेड है या प्योर है। साथ ही साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी आइटम खरीदते हैं उनको कोशिश करें कि हम सील बंद पैकेट वाली ही आइटम लें, ताकि हमें किसी प्रकार की यदि कोई समस्या उस आइटम से होती है तो किसी अमुक व्यक्ति को या संस्था को जिम्मेदार ठहराया जा सके, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन पूरी उस पैकेट के ऊपर होती है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम FSSAI द्वारा अप्रूव्ड जो लाइसेंस नंबर होता है उस वाली ही प्रोडक्ट को खरीदें, ताकि हम एक श्योर कर सकें कि जो आइटम इस पैकेट के अंदर है वो प्योर है। साथ ही साथ हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब कभी भी मार्केट में किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है और उसकी हमें पता है कि अभी अवेलेबिलिटी कम है, तो हम एक प्रयास अपने स्तर पर कर सकते हैं कि हम उसका प्रयोग भी कम कर दें, ताकि उसके बिक्री से, उसकी डिमांड से, जो मार्केट में अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कोई चीज़ शॉर्टेज में हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिमांड उसकी मार्केट में करने लगते हैं, और ख़ास करके एक पर्टिकुलर ऑयल्स और घी और तेल की बात हम करते हैं तो उसमें ऐसा होता है, या किसी विशेष अवसर पर दूध की एक कमी हो जाती है, तो वो उन अवसरों पर हमें ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी जो डिमांड है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको भी लिमिटेड करें, ताकि मार्केट के अंदर जो मिलावट खोर हैं, जो मुनाफेखोरी के चक्कर में मिलावट के धंधे को बढ़ावा देते हैं, उनको हतोत्साहित किया जा सके, उनको हम ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रमोट ना करें। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को यदि हम ध्यान रखते हैं, यदि हम एक जो जागरूकता अभियान भी हम चला के रखते हैं कि यदि हमें किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी मिलती है कि ये फलां चीज़ मिलावट वाली हमने देखी यहाँ पाई गई, तो हम उसकी जानकारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच में भी फैलाएं। यदि आपने कोई ऐसा तरीका विकसित किया है कि जिससे आप मिलावट वाले सामान की पहचान कर सकते हैं, तो उसको भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में फैलाना चाहिए। साथ ही साथ अपनी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आपके अंदर, समाज के अंदर जागरूकता आए, और मिलावटखोरी का धंधा करने वाले जो मिलावटखोर लोग हैं उनका जो प्रमोशन है वो किसी प्रकार से रुके, और वो इस कार्य को बहुत ज़्यादा
लंबे समय तक ना कर पाए, ताकि हमारे देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और हमारा भविष्य बेहतर बन सके। क्योंकि बिना बेहतर स्वास्थ्य के बिन बेहतर भविष्य की कल्पना करना भी बेकार है। एक और विशेष बात दोस्तों जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, मिलावट केवल खाने में नहीं होती है, मिलावट होती है आपकी सोच में भी। यदि आप किसी भी मिलावट वाले सामान की जानकारी को छिपाते हैं या आप किसी को नहीं बताते हैं, तो आप यकीन मानिए उस मिलावट करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है, जाने अनजाने आप भी उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। तो आज जरूरत है हमें एक संकल्प लेने की कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को मिलावट के जहर से बचाएंगे। और आप एक संकल्प और भी लें कि जो साफ सुथरा खाना है, जो व्यापार को ईमानदारी से करना है, जो हमारे उपभोक्ताओं के अंदर जो एक जागरूकता आनी है, सच्चे मायनों में एक स्वस्थ भारत की पहचान यही है। यदि हम मिलावट मुक्त भारत को बना पाते हैं, अपने समाज को बना पाते हैं, तो यही हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे 1 धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह के चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है, इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और इसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावल पिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावल पिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्शते कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में, यहाँ क्या धरा है भाई। होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है।

0: घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबो गरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: डरने की बात ही क्या थी?
0: इस पर सुल्ताना ने कहा,
1: मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए।
0: वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया,
1: तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है।
0: ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया,
1: नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ।
0: चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा,
1: मेरा नाम शंकर है।
0: सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा,
1: फरमाइए।
0: ये सुनकर वो लेट गया।
1: मैं क्या फरमाऊं?
0: तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं?
1: शंकर ने जवाब दिया,
0: यही जो तुम करती हो।
1: क्या?
0: तुम क्या करती हो?
1: मैं कुछ नहीं करती।
0: तो मैं भी कुछ नहीं करता।
1: सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना।
0: शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया,
1: तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी।
0: झक मारती हूँ।
1: तो मैं भी झक मारता हूँ।
0: तो आओ झक मारे।
1: मैं हाजिर हूँ मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता।
0: होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं।
1: तो मैं भी वॉलंटियर नहीं।
0: सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं?
1: जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे?
0: इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूँ।
1: सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो।
0: शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा,
1: मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना। मैं बहुत काम का आदमी हूँ।
0: शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी? ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। साफ साफ कहो तुम उनसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ। तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी ऊटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस अब खुश हो गई? सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल।

0: उपहार जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार, आज मैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, ऑर्गन इंडिया की सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, आप सभी का इस कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर राजीव सेठिया। डॉक्टर सेठिया मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट के यूनिट हेड हैं और सीनियर कंसल्टेंट की तरह कार्यरत हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सेठिया बात करेंगे किडनी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में दो किडनी या गुर्दा मौजूद रहते हैं और वो अपना कार्य करते हैं। तो आज हमें डॉक्टर साहब किडनी और किडनी के कार्य के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, सरल शब्दों में किडनी होता क्या है और उसके क्या कार्य हैं हमारे शरीर में?
2: धन्यवाद डॉक्टर गीतिका। किडनी हमारे शरीर में एक रेनिफॉर्म शेप ऑर्गन है जो कि शरीर में खून का फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, उनको ब्लड से सेपरेट करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है किडनी। इसके अलावा जो हमारे बॉडी का पीएच, जिसे मैं कहूँ कि एसिडिटी लेवल, भी मैनेज करने का काम करते हैं। तीसरा इसका काम होता है कि खून बनाने के लिए एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। और चौथा काम होता है कि ब्लड प्रेशर मैनेज करने में, मॉनिटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी इसका रोल होता है। तो ये इस किडनी के मुख्य फंक्शन है, मुख्य काम है।
1: यदि हम बीमारियों की बात करें तो किडनी की ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिससे एक व्यक्ति ग्रस्त हो सकता है?
2: किडनी की कॉमन बीमारियों में, जो मैं यूरोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी में गांठ या कैंसर बन गया है, किडनी में इन्फेक्शन है, इस तरह की बीमारियां कॉमन है।
1: गुर्दा में पथरी की बीमारी के बारे में बहुत सुना जाता है, लाइक बहुत ही लोग इस कंप्लेंट के साथ या इस शिकायत के साथ आते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लक्षण क्या होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जताते हैं कि उनको पथरी की बीमारी हो सकती है?
2: जब भी किडनी में पथरी बनती है तो वो कई तरीकों से प्रेजेंट कर सकती है, जैसे दर्द होना। दर्द ज़्यादातर किडनी स्टोन का जो दर्द होता है वो फ्लैंक्स रीजन में होता है, बगल में, बैक साइड में, और वो पीछे से कई बार आगे की तरफ आता है। दर्द के अलावा कई बार पेशाब में खून भी आ सकता है, कई बार स्टोन की वजह से इन्फेक्शन होता है तो बुखार भी आता है, पेशाब में जलन भी रह सकती है, बार बार पेशाब भी करना पड़ सकता है। ये मुख्य सिम्टम्स हैं स्टोन के, किडनी स्टोन के।
1: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सेठिया, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट के, और वो आज हमें बता रहे हैं किडनी और किडनी की बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर सेठिया, ब्रेक में जाने से पहले हम किडनी की पथरी के बारे में बात कर रहे थे, किडनी स्टोन या गुर्दा में जो पथरी हो जाती है, तो ये पथरी बनती कैसे है, आप यदि हमारे श्रोताओं को ये बताएं?
2: डॉक्टर गीतिका, पथरी बनने की कई वजह हैं, उसमें से सबसे जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो कम पानी पीना है। जब यूरिन ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है तो उसमें जो सोल्यूट्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो किडनी में जम जाते हैं, रुक जाते हैं, और उनके ऊपर लेयर बाय लेयर स्टोन बनते रहते हैं। तो जो सबसे कॉमन रीज़न है वो कम पानी पीना है। इसके अलावा कई बार किडनी में कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे यूरिन का स्टेसिस होता है, पेशाब रुका रहता है, तो रुके हुए पेशाब में स्टोन बनते हैं। कई बार कुछ जेनेटिक बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें स्टोन बनने का टेंडेंसी होता है बॉडी में, उसकी वजह से भी कई बार स्टोन बनते हैं। कई बार कुछ किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन बनते हैं। ये वो मुख्य रीज़न है।
1: तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, और या हम कैसे पता चलता है, आप कौन सी ऐसी जांचें की जाती है व्यक्ति की जिससे कि पथरीका पता चलता है?
2: देखिए, जब भी कोई मरीज हमारे पास पेन दर्द की कंप्लेंट लेके आता है फ्लैंक रीजन में, फ्लैंक मतलब साइड में बगल में, और या फिर पेशाब की कोई दिक्कत आती है दर्द के साथ, उसको पेशाब में खून आ रहा है, बुखार है, बार बार पेशाब करना पड़ रहा है, पेशाब करने में दर्द है, तो हमें स्टोन का सबसे पहला ख्याल आता है कि शायद स्टोन हो सकता है। तो उसकी जांच के लिए सबसे पहले हम पेशाब की जांच करवाते हैं, यूरिन का रूटीन टेस्ट करवाते हैं। रूटीन टेस्ट में ज़्यादातर केसेस में यूरिन में पस ज़्यादा मिलती है। एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में किडनी में जब भी कोई स्टोन होता है तो उसमें पकड़ में आता है। कई बार स्टोन नहीं दिखता लेकिन स्टोन की वजह से किडनी में जो सूजन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, वो पकड़ में आता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्सरे करवाते हैं, और अगर और भी कंफर्म करना होता है तो फिर हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं।
1: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सेठिया, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट के। सो ये बात हुई कि कैसे हम पथरी का पता लगाते हैं कि किसी को पथरी है या नहीं है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पथरी हो गई है, आपको पता चल गया, तो उसका इलाज कैसे कर, मतलब उसका इलाज क्या होता है?
2: देखिए डॉक्टर गीतिका, इलाज डिपेंड करता है कि स्टोन किस जगह पे है, कितना बड़ा है। पहले हम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या फिर सीटी करके देख लेते हैं कि किस जगह पे स्टोन है, और फिर उसका इलाज डिसाइड करते हैं। जब भी हम इंटरवेंशन करते हैं तो उससे पहले ये इंश्योर करते हैं कि यूरिन में किसी तरह कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर पथरी की वजह से कुछ इन्फेक्शन है तो पहले एंटीबायोटिक देके वो इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर मरीज हमसे पूछते हैं कि कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे कि स्टोन घुल जाए, कट के बाहर निकल जाए। तो बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी इलाज नहीं है, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे कि स्टोन घुल के, कट के, बह के पानी में, पेशाब में निकल जाए। स्टोन जो 5 mm से छोटे होते हैं या 7 mm तक भी कई बार वो पेशाब के जरिए बह के निकल जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर ठीक से पानी पियेंगे, खूब एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, अच्छे से लिक्विड्स लेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि छोटे स्टोन 5 mm 7 mm तक के जो स्टोन है वो पेशाब में बह के निकल जाएंगे। जब स्टोन का साइज इससे ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर उसको दूरबीन से निकालते हैं। आजकल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिनके चलते हम बिना चीरा लगाए स्टोन को दूरबीन से निकाल देते हैं। दूरबीन को किडनी के अंदर लेके जाते हैं या यूरेटर के अंदर लेके जाते हैं, और वहाँ पे स्टोन को लेज़र से तोड़ देते हैं, चूरा कर देते हैं, रेत बना देते हैं, और जिससे कि वो बह के निकल जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्टोन के टुकड़ों को बाहर निकाल के टेस्टिंग के लिए भी भेजते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में, बिना चीरा लगाए, बिना किसी स्कार के, बिना किसी होल के दूरबीन से ही ज़्यादातर स्टोन ट्रीट कर लिए जाते
1: हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सेठिया के साथ। सो डॉक्टर सेठिया, आपने हमें बताया कि कैसे किडनी का पथरी बनता है, क्या उसके कारण होते हैं, और क्या जांचें करके हम उसका पता लगा सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात कि हम पथरी की बीमारी हो ही ना, ऐसे कौन से आहार विहार का पालन करें कि जिससे पथरी से बचा जा सके?
2: डॉक्टर गीतिका, बचने के लिए अब प्रिवेंटिव मेजर्स में मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि हमको लिक्विड एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। लिक्विड का मतलब है जो भी तरल पदार्थ अच्छे लगते हैं, पानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी ही पीना है, जो भी लिक्विड फॉर्म में लेमन जूस, प्लेन वाटर, बटर मिल्क, छाछ, और सर्दियों में है तो सूप वगैरह। तो ज़्यादा लिक्विड की मात्रा लेने से यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगा और स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली एडवाइस तो है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। दूसरा है एडवाइस ये है कि खाने में नमक की मात्रा संतुलित रखें या कम रखें। नमक की मात्रा ज़्यादा होने से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा ये एडवाइस दूंगा कि जंक फूड जितना हो सकता है अवॉइड करें, जितना कम मात्रा मिले, स्पेशली जिनको स्टोन बार बार बनते हैं वो उनको अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ खाने के चीज़ें ऐसे हैं जिनमें स्टोन बनने की टेंडेंसी जिनको है उनको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भी खाने में बैन नहीं करना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि स्टोन किस चीज़ का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस एडवाइस नहीं करते हैं। इन जनरल जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि मॉडरेट अमाउंट में लें, बंद ना करें। कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं, कुछ बीज वाले जो सब्जियां हैं या फ्रूट हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनको मॉडरेट अमाउंट में लें, लेकिन बंद कुछ नहीं करें। जब स्टोन की केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट आती है उसके बाद हम उनको ठीक से डाइटरी एडवाइस बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों को कम मात्रा में लेना है। बंद पूर्णतया बंद करने के लिए हम उनको कभी एडवाइस नहीं करते, मात्रा कम कर देते।
1: इन सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे श्रोताओं को पथरी और पथरी से जितनी भी संबंधित बातें हैं उनका आज ज्ञान हो गया होगा और वो सब अपना बेहद ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।
0: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में अभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर दोस्तों हाजिर हूं मैं सरिता आपके साथ और लेकर आ गई हूं कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। वो सदाबहार नगमे, रेट्रो गाने जो वाकई में ही मोती बन चुके हैं, लेकर आते हैं हम आपके लिए हर शनिवार शाम 8 बजे। और दोस्तों, आप जानते हैं हर हफ्ते एक नया थीम, एक नया टॉपिक होता है और उसी टॉपिक के साथ आपको बहुत सारे प्यारे रेट्रो गाने सुनाते हैं। और आप जानते हैं कि मैं अकेली नहीं होती इस कार्यक्रम में, मेरे साथ होते हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर्स। तो चलिए पहले उनका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट शैलेंद्र नांगिया जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: जी सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी, और मेरे साथ हैं प्रदीप गर्ग पराग जी भी। सर, आपका भी स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच सरिता जी, और सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी, तो दोस्तों आज का थीम टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और बहुत सारे गाने हैं इस टॉपिक के साथ, तो देखते हैं कि कितने गाने सुनाएंगे। और फिर आप तो जानते ही हैं, अगर गाने पूरे नहीं होते तो हम आगे सीरीज़ बना देते हैं, पार्ट 2 पार्ट 3। तो देखते हैं आज इस कार्यक्रम में हम कितने गाने आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बताती हूँ आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है चल, चला, चलो, चलें, चलते, चलने। तो आप समझ गए कि चलने से जुड़ा हुआ है आज। जैसे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, बहुत सारे गाने हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप इन गानों को जान भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे। तो अपनी फरमाइश भी ज़रूर भेजिए अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं जिसके मुखड़े में चल, चलो, चलें, चलना, चलते, चलने ऐसा कोई शब्द आया है, तो आप हमें 8010781078 पर कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके अपनी फरमाइश ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ, रियल रेट्रो गाने। तो आज का पहला गाना हमें बता रहे हैं प्रदीप जी।
3: जी, आप सभी ने सुना होगा एक कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, आज का आगाज हम एक बहुत ही पुराने सॉन्ग से कर रहे हैं जो कि लगभग 77 ईयर ओल्ड है, लेकिन सुनने में वही आकर्षण, वही मधुरता और वही जो है लोकप्रियता इस गीत को आज भी हासिल है। फिल्म है बड़ी बहन, 1949 की फिल्म है। लता जी का गाया हुआ गीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, हुस्न लाल भगत राम का मधुर संगीत है और गीता बाली और प्राण पर पिक्चराइज्ड है।
1: जी।
3: चले जाना नहीं

0: दुनिया बेदर्दी।
1: जी जी प्रदीप जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने गीत को पेश किया।
0: थैंक यू रंगिया जी।
2: जी श्रोताओं, बड़ी बहन 1949 की फिल्म से बहुत ही बेहतरीन नगमा आज के टॉपिक के साथ, चल चले चलो चले चलना। तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 के साथ, और भी बहुत सारे बेहतरीन गानों का सफर आज तय करेंगे आपके साथ। फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, फील गुड
0: फील लाइव।

0: स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती। और दोस्तों आज का हमारा थीम टॉपिक है चल चलो चले चलना चलते चलते। तो दोस्तों आज बहुत ही प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे गाने हैं, तो चलते हैं अगले गाने की ओर। और अगला गाना हमें बता रहे हैं नांगिया जी।
1: जी सरिता जी, अगले गाने के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस गीत के 3 वर्जन्स हैं
0: जी।
1: एक वर्जन है लता दी की आवाज में, 2 वर्जन्स हैं, एक स्लो और एक फास्ट तलत महमूद की आवाज में। फिल्म है दाग 1952। पर्दे पर हैं दिलीप कुमार, निम्मी, उषा किरण, लीला मिश्रा, ललिता पवार, कन्हैया लाल व अन्य कलाकार। शंकर जयकिशन ने गीत की धुन तैयार की है, शैलेंद्र के बोल हैं, और जो मैं वर्जन पेश करने वाला हूँ वो है तलत महमूद का स्लो वर्जन।
0: जी बिल्कुल।

0: अब कोई घर नया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल।
1: आपने गीत को बखूबी बहुत ही डूब कर गाया, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल तलत महमूद ही गा रहे हों। मतलब आपका स्वर बहुत मैच किया इस गाने में, बहुत बहुत बधाई।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: जी तो दोस्तों वाकई में ही बहुत ही बेहतरीन नगमा दाग फिल्म से आप इसे एंजॉय करें तलत महमूद जी की आवाज़ में, और कोशिश करती हूँ लता जी का भी थोड़ा वर्जन आपको सुना दूँ। तो आप एंजॉय कीजिए इस गाने को और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती, और आज का टॉपिक चल चलो चलें चलते चलने फील गुड
1: फील लाइव।

0: स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नगमे आज लेकर आए हैं टॉपिक चल चलो चले चलना के साथ और गाने तो बहुत सारे हैं। और चलिए अब जो अगला गाना है वो है एक रिक्वेस्ट सॉन्ग, मैसेज आ गया है मेरे पास दिव्या जी का। और दिव्या जी गाना सुनना चाहती हैं मेरा साया फिल्म से तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। बहुत ही बेहतरीन फिल्म, बहुत ही बेहतरीन गाने फिल्म के सभी, तो जानकारी ले लेते हैं प्रदीप जी से।
1: जी फिल्म है मेरा साया, साधना सुनील दत्त की जोड़ी है, 1966 की ये फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला जी, लता जी का गाया हुआ ये गीत है, राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं और मदन मोहन का कर्णप्रिय संगीत है
0: जी।
1: और इस जोड़ी की, सुनील दत्त और साधना की जोड़ी की, एक फिल्म वक्त आई थी 1965 की, वो भी बहुत सुपरहिट हुई थी। और एक गीता मेरा नाम आई थी 1974 की फिल्म, जिसमें भाई बहन का किरदार किया था, सुनील दत्त डॉन बने थे और साधना जो है उनकी बहन बनी थी। लेकिन दोनों का ही बहुत अच्छी ये जोड़ी रही है और सारी फिल्में इनकी सुपरहिट हुई हैं
0: जी।
1: तो इस फिल्म का ये गीत।
2: और इसी कड़ी में जैसा कि अभी हमारे साथी प्रदीप जी ने बताया कि सुनील दत्त की और साधना की दो फिल्में आई थीं, वक्त और मेरा साया, तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि दोनों ही फिल्मों में सुनील दत्त ने वकील का रोल किया था।
1: क्या बात है, बिल्कुल। ये बहुत सुरीला गीत है, लता जी का गाया हुआ, और मैं चाहूँगा सरिता जी इसे स्टार्ट कर लें
0: जी।

0: सरिता जी, प्रदीप जी, बहुत अच्छे से गीत को आपने बहुत ही अच्छे से पेश किया।
1: थैंक यू जी, थैंक यू
2: जी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये नगमा, दिव्या जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की, आप इसे एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर लता जी की बहुत ही बेहतरीन आवाज में। और दोस्तों इसी तरह आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं अपने पसंद का तो 8010781078 ये हमारा नंबर है, आप हमें इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए। आज का टॉपिक है चल चलो चले, चलना चलते चलते फील गुड,
3: फील लाइव।

0: इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरत्न 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और बहुत ही बेहतरीन नगमा हमने एंजॉय किया, मेरा साया फिल्म का टाइटल ट्रैक। और अब एक और रिक्वेस्ट, बहुत ही प्यारा गाना और रियल रेट्रो गाने हम आपको सुनाते हैं, तो मुझे तो बहुत ही आनंद आता है ये गाने सुन के। और दोस्तों आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं 8010781078 पर। और दोस्तों आप इस कार्यक्रम को हमारी रेडियो मानव रचना की एप्लीकेशन पर भी इंजॉय कर सकते हैं, इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना 107.8। आप अपने फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल फ़ोन पे रेडियो मानव रचना ऐप को डाउनलोड करें और उस पर आप इस प्रोग्राम को इंजॉय कर सकते हैं ठीक 8 बजे शनिवार को। और दोस्तों चलिए अब जोग लगाना है, उसके लिए मुझे मैसेज किया है नितिन जी ने, और नितिन जी गाना सुनना चाहते हैं चली चली रे पतंग मेरी चली रे, बहुत ही बेहतरीन गाना। तो चलिए बाकी की जानकारी ले लेते हैं नांगिया जी से।
1: जी बहुत ही अच्छे गीत की फरमाइश आई है, बहुत ही मनपसंद बहुत ही लुभावना गीत। फिल्म भाभी 1957, पर्दे पर बलराज साहनी, श्यामा, नंदा, दुर्गा खोटे, जगदीप, ओम प्रकाश व अन्य कलाकार गीत को आवाज़ें दी हैं रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर ने, राजेंद्र कृष्ण ने बोल लिखे हैं और चित्रगुप्त ने धुन तैयार की है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: और इसमें मेरा साथ दे रही हैं सरिता जी। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, ओ चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग।

0: बहुत खूब बहुत खूब, मस्ती भरा गीत और मस्त अंदाज में पेश किया आप दोनों ने।
1: जी धन्यवाद सर।
2: जी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नगमा और कितने ही पुराने गाने हैं, लेकिन आज भी सुनने में ही उतना ही मजा आता है। आज भी जब पतंगे उड़ाते हैं तो ये गाने याद आते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन नगमा नितिन जी ने इस गाने की फरमाइश की, आप इसे एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर रफी और लता जी की आवाज में। और सुनते रहिए रेडियो कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती, और आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना चलते चलने। फील गुड
0: फील लाइफ।

0: बहुत ही बेहतरीन नगमा दोस्तों आपने सुना। अभी रेडियो मनोरचना 107.8 पर कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती, और हर हफ्ते एक नया थीम, एक नया टॉपिक, और आज का टॉपिक चल चलो चलें चलते चलते। और दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन नगमा आपको सुना रहे हैं, और अभी इंजॉय किया 1957 की फिल्म भाभी से एक बहुत ही बेहतरीन नगमा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला गाना भी बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, लेकिन कौन सा है फिल्म और गाना, जानकारी दे रहे हैं प्रदीप जी।
1: जी ये फिल्म है दो बदन, 1966 की फिल्म है, पारिवारिक फिल्म थी। आशा पारेख और मनोज कुमार का बेहतरीन अभिनय इसमें देखने को मिला। आशा भोंसले का गाया हुआ ये गीत है, शकील के बोल हैं और रवि का मधुर संगीत है
0: जी।
1: और मैं चाहूंगा सरिता जी से स्टार्ट करें।
0: जब चली

मुझे जैसे तुम नजदीक हो, इस चमन से जाने जा, सुन के पी पी की सदा दिल धड़कता है मेरा, आज पहले से सिवा तुम याद आए।

0: जी श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। और अगर आपने रेडियो 8 बजे ऑन किया होगा तो आपको पता होगा कि आज का हमारा टॉपिक है चल चला चली चले चलते चलते चलते रहना। और बहुत ही मधुर गीत अब तक हम आपको पेश कर चुके हैं और अब चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। और इसकी फरमाइश आई है मनोज कुमार की तरफ से, ये सुनना चाहते हैं गुमराह फिल्म का गीत। गुमराह फिल्म आई 1963 में, पर्दे पर नजर आए सुनील दत्त, माला सिन्हा, अशोक कुमार, शशिकला, निरुपा रॉय, नाना पलसीकर, रहमान व अन्य कलाकार। और इसमें खास बात एक ये है कि हमारे बहुत ही मशहूर सिंगर महेंद्र कपूर ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था।
1: जी बहुत खूब।
0: साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रवि का मधुर संगीत है। और गीत है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से।

0: कश्मकश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार।
1: क्या बात है,
2: बहुत खूब,
1: बहुत
2: बहुत बखूबी आपने इस गीत को गाया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: जी। श्रोता, बहुत ही दमदार आवाज महेंद्र कपूर जी की, चलो एक बार फिर से, गुमराह फिल्म से ये गाना। मनोज जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की, आप इसे एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर और जल्दी से लौट कर आइए कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में, और कुछ गानों का सफर तय करेंगे आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में। टॉपिक चल चलो चलें, चलते चलने के साथ फील गुड
2: फील लाइव।

0: बहुत ही बेहतरीन नगमा दोस्तों आपने सुना अभी रेडियो मनोरचना 107.8 पर। कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती, और हर हफ्ते एक नया थीम, एक नया टॉपिक, और आज का टॉपिक चल चलो चलने चलते चलते। और दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन नगमे आपको सुना रहे हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। और अगला गाना भी बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, लेकिन कौन सा है फिल्म और गाना, जानकारी दे रहे हैं प्रदीप जी।
1: ये फिल्म है एक हसीना दो दीवाने, जितेंद्र बबीता की जोड़ी है, और 1972 की ये फिल्म है। जितेंद्र बबीता की जोड़ी की दो फिल्में और आई हैं, एक फर्ज बहुत ही सुपरहिट हुई थी, वो भी डिटेक्टिव टाइप फिल्म थी लेकिन उसमें सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, और एक फिल्म इनकी आई थी अंडर वाटर फिल्म, जो बॉलीवुड की पहली पानी के अंदर उसकी शूटिंग थी ज़्यादातर पूरी फिल्म की, अनमोल मोती। तो उसमें भी यही जोड़ी थी, जितेंद्र और बबीता
0: जी।
1: लता और मुकेश का गाया हुआ डुएट सॉन्ग है, काफिल हजार के बोल हैं, और कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत है। और मेरा साथ देंगी सरिता जी, बल्कि वो स्टार्ट करेंगी
0: जी।

0: स्वागत है दोस्तों इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। तो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती। और दोस्तों आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना चलते। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नगमे हैं आपको सुना रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे गाने हैं तो आगे पार्ट 2 पार्ट 3 मे बी पार्ट 4 भी हो जाए वो तो हमें पता चलेगा आगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन नगमे की तरफ जिसकी आ गई है रिक्वेस्ट। मैसेज किया है मुझे आर के सिंह जी ने और आर के सिंह गाना सुनना चाहते हैं आज चल के तुझे मैं लेके चलूं। बहुत ही प्यारा गाना किशोर जी का गाया हुआ। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं नांगे जी से।
1: जी ये गीत मेरे दिल के तो बहुत करीब है। मेरी पूरी फैमिली को भी ये गीत बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को ये गीत बहुत पसंद है। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये गीत बहुत पसंद है। और ये गीत है फिल्म दूर गगन की छांव में 1964। और श्रोताओं दिल थाम कर सुनो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सिंगर लिरिसिस्ट म्यूजिक किसका है किशोर कुमार
0: जी।
1: और पर्दे पर नजर आए किशोर कुमार के साथ सुप्रिया चौधरी इफ्तिखार सज्जन राज मेहरा नाना पलसीकर व अन्य कलाकार।
2: वन एंड ओनली किशोर कुमार
1: जी। और गीत है आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक

0: तले।
1: दिल को छूने वाला गीत जहां प्यार ही प्यार फले, तो बेहतरीन इमेजिनेशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस गीत को गाया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर,
1: मन को छू गया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी दोस्तों, वाकई में बहुत ही बेहतरीन नगमा। आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ, आप इंजॉय कीजिए। फील गुड,
0: फील।

0: पले।
1: स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 108.8 पर। और दोस्तों, चलते चलते अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अब जो समय है वो इजाजत लेने का हो गया है, तो चलिए एक अंतिम गाना हम आपको सुना देते हैं। और ये फिल्म कौन सी है, गाना कौन सा है, सारी जानकारी दे रहे हैं प्रदीप जी।
2: जी, ये फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, 1960 की फिल्म है, आरके प्रोडक्शन की फिल्म थी ये। राज कपूर, पद्मिनी, प्राण भी इसमें राका डाकू के रोल में बहुत मशहूर हुए थे। लता मुकेश का गाया हुआ ये गीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का मधुर संगीत है
1: जी।

0: गुड वन प्रदीप जी,
1: थैंक यू,
0: वेरी वेल सॉन्ग
2: जी दोस्तों। वाकई में ही बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही रियल रेट्रो गाने दोस्तों ये होते हैं जब हम इन्हें सुनते हैं तो। आप लॉर्ड चिलेस नाम की एक फिल्म भी आई थी, ऋषि कपूर जी ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म। लेकिन फिलहाल ये गाना जिस देश में गंगा बहती है, इस गाने के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं आज आप लौट चले। आप इसे इंजॉय ज़रूर कीजिए मुकेश जी की आवाज़ में, और इसी के साथ हमें दे इजाज़त क्योंकि वक्त जाने का हो गया है। तो नागेश जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: जी सरता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मानव का, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम का। और जाने से पहले एक सुविचार दोस्तों, शब्द भी एक भोजन की तरह है, बोलने से पहले चख लीजिए, खुद को अगर अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए।
2: क्या बात है, बहुत खूब।
1: बहुत सारे गीत हमने लिए, और जैसा कि सरिता जी पहले ही कह चुकी हैं कि आगे का एपिसोड भी हम इस पे लेंगे क्योंकि बहुत गाने हैं, तो 3-4 एपिसोड तक भी इसमें जा सकते हैं। लेकिन एक गीत मैं पड़ोसन फिल्म का मेरे याद आ रहा है, सायरा बानो की बहुत अच्छी एक्टिंग इस गीत पर थी, तो इस गीत को मैं अपने श्रोताओं को पेश करना चाहूंगा।
0: जी जरूर प्रदीप जी।
1: मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। और जी एक सुविचार भी चलने पर मैं देना चाहूंगा कि चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं, दोनों को ही हमें स्वस्थ रखना चाहिए।
0: जी, और इसी तरह से एक और गीत किशोर कुमार की आवाज़ में भी है जो रह गया है, वो है फिल्म धड़कन से। जैसे आपने लता दी की आवाज़ में कहा मैं चली ऐसे ही किशोर साहब कह रहे हैं

0: जिधर चले रास्ता।
1: क्या बात, क्या बात। और इसके साथ ही मैं आज की अपनी सहयोगी टीम रेडियो मानव रचना और श्रोताओं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
2: जी तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे चलने का वक्त हो गया है। हम चलते हैं और आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में सेम थीम सेम टॉपिक के साथ। चल चलो चलें, इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। और आप सभी को पता है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फील गुड फील लाइफ। जी हाँ, और इसी के साथ मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आ जाते हैं हम आपके लिए हर हफ्ते किसी नई जर्नी को, किसी नई स्टोरी को, जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती है बल्कि अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है। और दोस्तों मैं आपको सही बताऊं, लाइफ में ना हम सबके पास कुछ ना कुछ सपने होते हैं, सबके ड्रीम्स होते हैं। हम अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई राइटर बनना चाहता है, तो कोई बस इतना चाहता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिले और हम अपनी मुकाम को हासिल कर सके। लेकिन एक सवाल कि क्या हम अपने सेफ करियर को छोड़कर अपने पैशन को चूज करने की हिम्मत कर सकते हैं? आज के सक्सेस मंत्रा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी की, जी हाँ, जिन्होंने एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर से अपनी राइटिंग जर्नी की तरफ कदम बढ़ाया और आगे चलकर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर राइटर में से एक अपनी जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिनकी, उनका नाम है चेतन भगत। जी हाँ, ये नाम आपने सुना होगा मुझे पता है। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उन्हें सिर्फ एक राइटर के रूप में ही नहीं जानेंगे बल्कि हम जानेंगे कि उस यंग चेतन भगत को, जो दिल्ली में बड़े हुए, IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की और IIM अहमदाबाद से MBA किया और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में चले गए। और एक तरफ था उनका सक्सेसफुल करियर और दूसरी तरफ थी उनकी राइटिंग करने की पैशन। और फिर आया वो मोमेंट जब उन्होंने अपनी पहली नॉवल 5 Someone लिखी। शायद उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये कहानी एक दिन इतनी पॉपुलर होगी कि इससे इंस्पायर होकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 Idiot बन जाएगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, उनकी और भी बुक्स आई, उनकी स्टोरीज पर मूवीज भी बनी, उन्हें अवार्ड्स ऑन नेशनल लेवल तक के रिकॉग्नाइजेशन भी मिले। और वो सिर्फ राइटर ही नहीं बल्कि स्क्रीन राइटर, कॉलमनिस्ट और पब्लिक स्पीकर के रूप में भी पहचाने गए। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल स्टोरी की तरह चेतन भगत की जर्नी में भी चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म और डिफिकल्ट सिचुएशन भी आई, डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़े उन्हें। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे उनको, बहुत करीब से जानेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर राइटर कैसे बन गए, उनकी बुक्स ने यंग इंडिया को कैसे कनेक्ट किया, उनकी स्टोरीज सिल्वर स्क्रीन तक कैसे पहुंची और उनकी जर्नी हमें सक्सेस के बारे में क्या क्या सिखाती है। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम चेतन भगत की जर्नी पर चलने वाले हैं। पर उसी के साथ मैं आपके लिए कर आ गई हूँ बहुत ही प्यारे प्यार से गाने भी। तो गाने भी सुनेंगे और उनकी जर्नी को भी जानेंगे, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, आज सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ मैं और जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत की। जी हाँ, चेतन भगत की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं और अब जब हम चेतन भगत का नाम सुनते हैं ना तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक राइटर की इमेज क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन राइटर बनने से पहले उनकी जर्नी एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ही जा रही थी। जी हाँ, चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 को दिल्ली में हुआ था। उनकी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल धोलाकुआं से हुई। स्कूल के बाद उन्होंने एक ऐसा करियर चूज किया जो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है और वो है इंजीनियरिंग। जी हाँ, उन्होंने आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उनकी जर्नी रुकने वाली कहाँ थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करना चाहते हैं और फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया IIM अहमदाबाद में, जहाँ से उन्होंने फिर MBA करा। और अब जरा इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट जो IIT और IIM जैसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ा ही कर चुका हो, उनके सामने करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन चेतन भगत ने भी एक कॉर्पोरेट करियर को ही चूज किया था उस समय। MBA के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना शुरू किया और हांगकांग में गोल्डमैन सच के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। यहाँ तक उनकी स्टोरी एक ट्रेडिशनल सक्सेसफुल करियर जैसी ही लगती है। लेकिन गुड एजुकेशन, टॉप इंस्टीट्यूशन और एक रेप्यूटेटेड कॉर्पोरेट जॉब, लेकिन इसी बिजी कॉर्पोरेट लाइफ के बीच उनके अंदर एक राइटर भी अलाइव था। जी हाँ, उन्हें राइटिंग का इंटरेस्ट था और वो अपने आइडियाज और एक्सपीरियंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहते थे। और धीरे धीरे उनके माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं एक नॉवल लिखूं। और बस फिर क्या, यही थॉट आगे चलकर उनकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल 5 Someone पर काम शुरू किया। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का अपनी फर्स्ट बुक लिखना शायद उस टाइम पर एक सिंपल सा डिसीजन लगा हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बुक उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल देगी। और दोस्तों, आगे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं कि इस बुक से उनकी लाइफ में कैसे वो टर्निंग पॉइंट आया, कैसे उनकी जर्नी बदली, उनकी जर्नी का ये रियल टर्निंग पॉइंट क्या बना, तो इसके बारे में भी जानेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel alive.

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास लोगों की जर्नी जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अपनी जर्नी से इंस्पायर करते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं ना, तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस आपके अंदर होनी चाहिए वो मेहनत करने की लगन और वो डेडिकेशन कि हाँ, आप इस काम को पूरा कर ही मानेंगे। तो बस इसीलिए अपने सपनों को ना पूरा करिए, अपने अंदर का जो जोश है, जो आग है ना, उसको बुझने मत दीजिए, उस पर काम करते रहिए। आप देखिए, आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और इसी के साथ आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों ने इनका नाम बहुत सुना है, बहुत जानते हैं आप इनको, जिनका नाम है चेतन भगत। जी हाँ, चेतन भगत की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे चेतन भगत ने IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाया, और हांगकांग में गोल्डमैन सैक्स के साथ काम भी किया, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ के बीच उनके अंदर एक राइटर भी था, और फिर उन्होंने लिखी अपनी पहली नॉवल यानी कि 5 Point Someone। ये नॉवल 2004 में पब्लिश हुई और इसका कनेक्शन भी इंटरेस्टिंग था। स्टोरी 3 IIT स्टूडेंट के अराउंड थी, उनके कॉलेज लाइफ, एकेडमिक फ्रेंडशिप प्रेशर और उन सपनों के अराउंड जो मार्क्स से कहीं ज्यादा बड़े थे। चेतन भगत ने एक ऐसी स्टोरी लिखी जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं थी, लैंग्वेज सिंपल थी, कैरेक्टर्स यंग थे और सिचुएशन रिलेटेबल थी। शायद इसी वजह से यंग रीडर्स ने इस बुक से बहुत ही जल्दी कनेक्शन फील करना शुरू कर दिया था। एक न्यू राइटर की फर्स्ट नॉवल का इतना पॉपुलर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन चेतन भगत के लिए ये सिर्फ एक बुक की सक्सेस ही नहीं थी, ये उनकी आइडेंटिटी चेंज होने की बिगनिंग थी। और यहीं से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज प्रूव की कि राइटर बनने के लिए सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड या फिर कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग जरूरी नहीं होगी, बल्कि अगर आपकी स्टोरी लोगों को रियल फीलिंग और एक्सपीरियंस से कनेक्ट करवा पाए ना, तो सिंपल वर्ड्स भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 5 Point Someone की जर्नी का एक और बड़ा चैप्टर था जो कुछ साल बाद सामने आया। 2009 में राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 Idiots रिलीज हुई। फिल्म ने स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, फ्रेंडशिप और ड्रीम्स को एक कम्प्लीटली मेमोरेबल वे में प्रेजेंट किया। ये फिल्म चेतन भगत की 5 Point Someone से इंस्पायर्ड थी। जी हाँ, और 3 Idiots की सक्सेस ने चेतन भगत के नाम को और भी ज्यादा हाउस होल्ड तक पहुंचा दिया। सोचिए, जिस स्टोरी को एक राइटर ने अपने शब्दों में क्रिएट किया था, वही स्टोरी इंस्पायर्ड इतने बड़े स्क्रीन पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच रहा था। लेकिन चेतन भगत की जर्नी में 5 Point Someone के बाद भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। उनकी नेक्स्ट बुक्स आई, उनकी स्टोरीज ने अलग अलग थीम को टच किया और धीरे धीरे वो इंडिया की मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑथर्स में काउंट होने लगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आगे जानेंगे बहुत सारी बातें उनके बारे में कि उनकी बाकी की जो बुक्स थी उन बुक्स से बॉलीवुड तक पहुंचने वाली स्टोरीज कौन कौन सी रही, बताऊंगी ये भी मैं आपको। पर आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनिए बहुत ही प्यारा सा गाना, फील गुड फी

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं चेतन भगत की जर्नी के साथ, बहुत सारी बातें जान रहे हैं आज हम उनके बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने बात की कि चेतन भगत की फर्स्ट नॉवल 5.7 की, जिसने उन्हें एक सक्सेसफुल राइटर के रूप में एस्टेब्लिश किया, लेकिन ये तो सिर्फ बिगनिंग थी। चेतन भगत ने एक के बाद एक स्टोरीज लिखी और उनकी राइटिंग का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि उनकी कई स्टोरीज का कनेक्शन बॉलीवुड से भी बना। जी हाँ, 2005 में आई उनकी सेकंड नॉवल वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर। जी हाँ, स्टोरी कॉल सेंटर में काम करने वाले यंग पीपल के अराउंड थी। वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप्स और ड्रीम्स और लाइफ के स्ट्रगल को उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। बाद में इसी नॉवल पर बेस्ड फिल्म आई हेलो, जिसे रिलीज किया गया। फिर आई द 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। इस स्टोरी में फ्रेंडशिप, बिजनेस, क्रिकेट और पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ एक सीरियस सोशल बैकड्रॉप भी था। इस नॉवल से इंस्पायर्ड फिल्म आई काईपोचे। जी हाँ, काईपोचे बनी, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से ही अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद चेतन भगत की एक और पॉपुलर बुक आई, वो आई 2 स्टेट्स। ये स्टोरी लव के साथ फैमिली और कल्चरल डिफरेंस को भी एक्सप्लोर करती है। डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले दो लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज, उनके कल्चर्स भी स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं। 2014 में 2 स्टेट्स नाम से फिल्म रिलीज हुई और ये भी ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। फिर आई फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। जी हाँ, एक लव स्टोरी जिसमें लैंग्वेज, बैकग्राउंड और सोशल डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस नॉवल पर भी फिल्म बनी। तो दोस्तों, अगर हम चेतन भगत की जर्नी देखते हैं तो एक पैटर्न क्लियरली नजर आता है कि उन्होंने स्टोरीज उन लोगों के बारे में लिखी जिनके बीच में हम खुद को देख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, फ्रेंड्स, लवर्स और फैमिलीज। और शायद इसी रिलेटेबिलिटी ने उनकी बुक्स को रीडर्स तक और उनकी स्टोरीज को स्क्रीन तक पहुंचाया है। लेकिन सक्सेस के साथ क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म भी आए हैं। उनकी राइटिंग को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस रहे हैं और हर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की तरह उन्हें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने लिखना कंटिन्यू रखा। जी हाँ, और यही कंसिस्टेंसी उनकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगले सेगमेंट में होगी उनके कुछ अलग फेस की बातें। चेतन भगत ने अपनी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर को पीछे छोड़कर फुल टाइम राइटिंग को कैसे चूज करा, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए हर हफ्ते कुछ नई मोटिवेशनल स्टोरीज। जी हाँ, मोटिवेशनल जर्नी आपके साथ हम शेयर करते हैं और उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं। और आज जिसकी जर्नी के साथ हम चल रहे हैं वो है चेतन भगत। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने स्टोरी में देखा कि चेतन भगत ने IIT और IIM जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाया और साइड बाय साइड राइटिंग को भी कंटिन्यू रखा। लेकिन अब आता है उनकी लाइफ का वो डिसीजन जहां उन्होंने अपने करियर की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। जरा सोचिए, आपने इंजीनियरिंग की है, MBA भी किया है, एक रेप्यूटेटेड इंटरनेशनल कंपनी में जॉब भी करते हैं, एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर है और प्रोफेशनली लाइफ में अच्छा भी चल रहा है सब कुछ। ऐसे में अगर आपको अपने पैशन और सिक्योर करियर में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप क्या करेंगे? चेतन भगत ने राइटिंग को चूज किया। जी हाँ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अपनी जॉब को ग्रेजुअली लीव कर दिया और 2009 में फुल टाइम राइटिंग की तरफ आ गए। ये डिसीजन सिर्फ जॉब चेंज करना ही नहीं था, ये एक माइंडसेट चेंज करना था, क्योंकि राइटिंग तब उनके लिए सिर्फ हॉबी नहीं रह गई थी। उनकी बुक्स रीडर्स तक पहुंच रही थी, उनकी स्टोरीज पॉपुलर हो रही थी और उन्हें एक राइटर के रूप में अपनी आइडेंटिटी भी मिल रही थी। और उनकी राइटिंग जर्नी भी सिर्फ नॉवेल्स तक ही लिमिटेड नहीं रही थी। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स लिखे, पब्लिक इश्यूज और यंग जनरेशन के टॉपिक्स पर अपनी ओपिनियंस भी रखी और स्क्रीन राइटिंग में भी काम किया। उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट फिल्म काईपोचे इससे भी जुड़ा हुआ है। फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें रिकग्नाइजेशन भी मिला और फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिला। यानी जो पर्सन कभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना फ्यूचर देख रहा था, वही पर्सन कुछ सालों बाद स्टोरीज और सिनेमा के थ्रू एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी बना चुका था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझना ज़रूरी है कि पैशन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस तुरंत मिल जाएगी। चेतन भगत की जर्नी में भी क्रिटिसिज्म आया, उनकी राइटिंग को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस भी रहे हैं लोगों के, लेकिन उन्होंने अपना क्रिएटिव वर्क कंटिन्यू रखा। और शायद सक्सेस का रियल मीनिंग भी यही है कि अपने फैसलों पर काम करते रहना चाहिए, चाहे लोग आपके डिसीजन को समझें या ना समझें। चेतन भगत की जर्नी हमें एक सिंपल सा लेसन भी देती है कि अगर आपके अंदर किसी काम को लेकर रियल पैशन है तो उसे सिर्फ कभी ना कभी हो जाएगा के लिए मत छोड़िए। उस पैशन को स्किल बनाइए और उस पर काम कीजिए, और जब राइट टाइम आएगा ना तो अपने डिसीजन पर बिलीव करने की हिम्मत भी रखिएगा। और दोस्तों, चेतन भगत की स्टोरी में सक्सेस के साथ रिकग्नाइजेशन भी आई है, अवार्ड्स, ऑनर्स और नेशनल लेवल अचीवमेंट्स भी मिले हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जानेंगे। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं चेतन भगत की जर्नी के साथ, और अब तक हमने चेतन भगत की जर्नी के कई सारे चैप्टर्स को देखा है कि कैसे उन्होंने दिल्ली से शुरुआत की अपनी पढ़ाई की, IIT में पढ़ाई की और IIM तक का सफर तय किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर भी बनाया, राइटिंग की तरफ कदम और फिर उनकी स्टोरीज का रीडर्स से लेकर बॉलीवुड तक पहुंचना। लेकिन जब कोई पर्सन अपनी फील्ड में कंटिन्यूसली काम करता है तो एक वक्त के बाद उसके काम को रिकग्नाइजेशन भी मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो काम करते हैं उसका एक एंड रिजल्ट ज़रूर आता है। अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिजल्ट भी ज़रूर आता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि चेतन भगत की जर्नी में भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स भी आए हैं। जी हाँ, उनके करियर का एक इंटरेस्टिंग माइलस्टोन राइटिंग से पहले भी आ चुका था। 1997 में IIM अहमदाबाद ने उन्हें बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड दिया था, यानी कि एकेडमिक्स और लीडरशिप के लेवल पर भी उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है। राइटिंग में आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, और फिर 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टाइम 100 लिस्ट में इंक्लूड किया, जो दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एनुअल लिस्ट है। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन ऑथर का नाम दुनिया के इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के साथ आना, ये भी राइटर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। उनकी स्टोरीज का कनेक्शन सिनेमा से भी स्ट्रांग होता है। काइपोचे के स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें रिकग्नाइजेशन मिला, फिल्म ने नेशनल लेवल पर अटेंशन को अट्रैक्ट किया, और चेतन भगत को स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिला। 2014 में उन्हें CNN और IBN इंडिया ऑफ द ईयर एंटरटेनमेंट रिकग्नाइजेशन भी मिला है, और उनके करियर के इंपॉर्टेंट ऑनर्स में से एक है IIT दिल्ली एलुमनाई अवार्ड, जो उन्हें 2018 में दिया गया था। यानी जिस इंस्टीट्यूट में कभी चेतन भगत एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ते थे, ईयर्स लेटर वही इंस्टीट्यूट उनके प्रोफेशनल अचीवमेंट को ऑनर कर रहा था। दोस्तों, अवार्ड्स कभी किसी जर्नी का ब्यूटीफुल पार्ट हो सकता है, लेकिन अवार्ड्स मिलना सक्सेस का फाइनल पॉइंट नहीं होता है। चेतन भगत की स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि उनकी जर्नी एक सिंगल फील्ड तक लिमिटेड नहीं रही। इंजीनियरिंग, MBA करना, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना, नॉवेलिस्ट बनना, कॉलमनिस्ट बनना और स्क्रीन राइटर और पब्लिक स्पीकर, उन्होंने अपने करियर में मल्टीपल रोल्स को एक्सप्लोर किया है, और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी यंग जनरेशन के लिए काफ़ी रिलेटेबल भी है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत से यंग पीपल ये सोचते हैं कि अगर एक करियर चूज कर लिया तो वही करियर लाइफ भर कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन चेतन भगत की जर्नी हमें दिखाती है कि करियर में डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल है। बस जरूरी है कि आप अपने डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और अपने चूजन पाथ पर कंटिन्यूसली काम करें। और दोस्तों, अवार्ड्स और सक्सेस के बाद एक और चीज ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की जर्नी में आती है, वो है क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे और भी बातें हैं इस प्रोग्राम को एंड तक लेकर के जाने का अब समय आ गया है, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ और भी बताऊंगी, इनके सक्सेस मंत्रा भी बताऊंगी। तो आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ, और आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज इस एपिसोड में हमने बात की चेतन भगत की, उनकी जर्नी के साथ चले और अब बहुत ही करीब से समझने की कोशिश की एक ऐसे स्टूडेंट की जर्नी जिसने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की, IIM अहमदाबाद से MBA किया और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे सक्सेसफुल करियर को चूज किया। लेकिन उनके अंदर का एक राइटर भी था, उन्होंने अपने फर्स्ट नॉवल 5.7 लिखी और फिर राइटिंग उनकी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। उसके बाद तो उन्होंने वन नाइट एट द रेट, द कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट्स रिवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, वन अरेंज्ड मर्डर, 400 डेज और दूसरी बुक्स रीडर्स तक पहुंचाई है। उनकी स्टोरीज का कनेक्शन बॉलीवुड से भी बना। हेलो, काइपोचे, टू स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्म्स उनकी बुक से इंस्पायर्ड या फिर अडेप्टेड रही है और 5.7 ने 3 इडियट्स को इंस्पायर किया है। उन्हें अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन भी मिले हैं। टाइम 100 में इंक्लूजन से लेकर IIT दिल्ली के एलुमनाई अवार्ड और स्क्रीन प्ले के लिए रिकॉग्नाइजेशन तक। लेकिन दोस्तों, चेतन भगत की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन अवार्ड्स या फिर बेस्ट सेलिंग बुक नहीं है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है अपनी जर्नी को डिफाइन करने की हिम्मत रखना। और कभी कभी हम अपने करियर इसलिए चूज करते हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है कि ये सक्सेसफुल करियर रहेगा, लेकिन सक्सेस सिर्फ एक सैलरी या फिर एक बिग डेजिनेशन या फिर एक रेपुटेटेड कंपनी का नाम ही नहीं होता है, बल्कि सक्सेस तब होती है जब हम अपने टैलेंट को पहचानते हैं और उस पर सीरियसली काम करते हैं। चेतन भगत ने भी एक पॉइंट पर अपने पैशन को प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपनी राइटिंग को सिर्फ हॉबी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अपना

सेक्शन बनाया। और हाँ, उनकी राइटिंग को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। हर किसी को उनकी राइटिंग पसंद आए ये जरूरी नहीं, लेकिन किसी भी क्रिएटिव फील्ड में डिफरेंट ओपिनियन का होना बहुत नॉर्मल होता है। आप सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद अपनी ओरिजिनल वॉइस खो देंगे। तो आज के इस एपिसोड सक्सेस मंत्रा को बहुत ही सिंपल तरीके से समझे तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपने पैशन को स्किल बनाइए, क्रिटिसिज्म से सीखिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लाइफ में हर किसी का पाथ अलग होता है। किसी की स्टोरी IIT से शुरू हो सकती है, किसी की राइटिंग से और किसी की बिजनेस से और किसी की बिल्कुल जीरो से। बस जरूरी ये है कि आप अपनी स्टोरी खुद लिखे। मैं हूँ आरजे स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ और सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की जर्नी के साथ, उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे, पर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिलीविंग और अपनी कहानी खुद लिखिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1980 के आसपास के बहुचर्चित गीत के साथ, छतरी न खोल उड़ जाएगी बारिश तेज है। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।

0: को ना
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, बड़ी देर है
0: कब आएगा।

0: बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये फिल्म थी दो झूठ 1975, शंकर जयकिशन का बाकमाल संगीत, लिरिसिस्ट थे विश्वेश्वर शर्मा, और छतरी नखोल उड़ जाएगी ये बड़ा ही पॉपुलर गीत था 1980 के आसपास, रेडियो पे इतना बजता था कि हमें याद है कि बहुत बार तो हमको ये हर घर से सुनाई देता था, किशोर कुमार उषा मंगेशकर की लाजवाब आवाज। बहरहाल पिछली बार जब मैं आपको छोड़ गया था तो बड़ी सारी बातें हुई थी और बड़ी सारी जो है वो शिकायतें भी आई थी। शिकायत नाना, प्रोग्राम के अंदर जो त्रुटियां तो आप कम निकालते हैं, आप जो निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि भाई आपने किस्से लिए, हिस्से लिए और बड़ी सारी बातें बीच में छोड़ी और नहीं भी छोड़ी, लेकिन शोले कहाँ गया। हाँ, तो शोले की बात तो हम इस प्रोग्राम में करेंगे ही करेंगे। अनुपमा चोपड़ा, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, और इसके साथ साथ हम जो है वो राज बब्बर से जुड़ी हुई कुछ बातें भी करेंगे, जब साइकिल स्टैंड ही बन गया था अड्डा। बड़ा ही रोमांचक सा जो है ये लेख है, जो हिस्से का किस्सा किस्से का हिस्से में हमें हासिल हुआ, और बड़ी सारी और भी चीज़ें थीं, जैसे कि कुछ जो मुझे याद आ रहा है नहीं आ रहा है कि हाँ, एक फिल्म थी साथी 1968 की, इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांस फिल्म मानी जाती है वो, जिसको लिखा और निर्देशित किया था सीवी श्रीधर जी ने, और फिल्म में राजेंद्र कुमार और वैचंदीमाला के साथ सिमी ग्रेवाल, डेविड वीड़ा, राममोहन आदि कलाकारों की फौज थी, और जबकि शशि कपूर, नंदा, संजीव कुमार, शबनम, डी के सप्रू और प्रतिमा देवी जैसे प्रमुख कलाकारों ने अतिथि भूमिका भी निभाई थी। फिल्म का निर्माण वीनस पिक्चर्स के एस कृष्णामूर्ति और टी गोविंद राजन ने किया था, इसकी भी बात करेंगे। अब बड़ी सारी बातें करेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन शोले की आपने जो बात कही भाई वो तो दिल पे लग गई, क्योंकि शोले तो दिल के पास है दोस्तों। तो उसमें जो हमने आपका जो है तारुफ कराया था वो अध्याय था ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे तो उसमें बड़ी सारे सीन्स की बात हो रहे थे, तो जो आखिरी सीन था जिसमें ट्रेन में वीरू और बसंती का मिलन था, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा होने के बाद शूट किया गया। अब ये शूट किया गया था इसलिए पंचम को बिना देखे ही सीन के लिए म्यूजिक क्रिएट करना पड़ा था। अब ये बड़ी शानदार बात थी, लेकिन ये मुश्किल नहीं था। अब बड़े लंबे समय तक रमेश के उत्साह में कमी नहीं आई थी, उन्होंने फिल्म को जो है वो जिया, यानी कि ही लिव्ड एवरी फ्रेम ऑफ द मूवी, और उसने दिया, पंचम ने इस तरह का विस्तृत वर्णन दिया कि क्या शूट करने जा रहा था, जिसमें ये दृश्य कितने शॉट्स होंगे, कितने दृष्टिकोण से होगा और कितने शॉट्स कितने सेकंड का होगा, यानी कि इस तरीके की सारी डिटेल्स जो है वो रमेश जी ने आडी बर्मन साहब को दे दी थी। अब ये जब शॉट वास्तव में किया गया था तो संगीत केवल कुछ फ्रेम द्वारा सिंक से बाहर था, लेकिन बाकी पूरे फ्रेम्स में वो बिल्कुल एकदम फिट बैठ गया था। अब ये जो बारीकियां होती हैं ये हमें कई बार समझ में आ जाती हैं, लेकिन आप लोग जब ये सिनेमा ये देखते हैं तो शायद आप ये बातें पकड़ ना पाएं, लेकिन ये जो बारीकियां थीं वो तो थीं ही। और बारीकियों से मुझे याद आ रहा है कि बड़ी जो है वो नाजुक फिल्म थी, नाजुक फिल्म कहेंगे या क्या कहें भाई, मौसम ही ऐसा है। अब बात तो चल ही रही है तो बात चलती है तो चलेगी अखियों के झरोखों से 1978, हिमलता, रविंद्र जैन, सचिन रंजीता पे फिल्माया गया था। अखियों के झरोखों से सुनते हैं, लौटते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे। हमारा नंबर है 8010781078, हमारे साथ बने रहिए, गीत सुनते रहिए, लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल के साथ। भाई हमने जो है ये फ्रेम्स की भी बात कर ली थी, आपने कहा साथी की बात आपने स्टार्ट करी थी, तो साथी की बात जो है वो आगे कंटिन्यू कीजिए। तो साथी मैंने जैसे आपको बताया कि 1968 की जो है इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांस फिल्म थी, जिसे लिखा और निर्देशित किया था सी वी श्रीधर जी ने। अब इसे एन एम शंकर द्वारा जो है वो संपादित किया गया था और मार्क्स बार्टले द्वारा फिल्माया गया था। अब साथी रवि, शांति और रजनी के बीच एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी है। ये फिल्म 1961 यानी 1961 की तमिल फिल्म पालम पजामुम की रीमेक थी। अब अगर मैं इसको ठीक से प्रनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जिसे ए भीम सिंह ने निर्देशित किया था। इसे तुर्की में यारीम कलान सादेत जो 1970 में बनी थी के रूप में बनाया गया था। तुर्किश यानी ये जो फिल्म थी ये थी तुर्कर इनाओग्लू, इनके द्वारा जो है ये जो है वो प्रचलित हुई थी। अब जब श्रीधर ने रचना के लिए नौशाद से संपर्क किया तो उन्होंने मूल फिल्म के गाने सुने, जिसे तमिल में विश्वनाथन राममूर्ति द्वारा रचा गया था। गाने सुनने के बाद नौशाद ने MS विश्वनाथन को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि इस अद्भुत संगीत की जगह नहीं ले सकते जिसे उन्होंने रचा है और वो इस परियोजना को अस्वीकार कर रहे हैं, यानी नौशाद साहब ने मना कर दिया। बाद में नौशाद ने विश्वनाथन के अनुरोध पर केवल फिल्म के लिए रचना करना स्वीकार कर लिया। गाने के बोल मजरू सुल्तानपुरी ने जो है वो दिए थे। अब इसमें बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों में अगर हम जाएंगे तो हम भूल जाएंगे कि फिल्म थी अपनापन 1977, आदमी मुसाफिर है। सुनते हैं, लौटते हैं, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, जीतेंद्र सुलक्षणा पंडित, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। फिल्म थी अपनापन 1977, रुकिए सुनिए लौटिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078, फील गुड फील लाइव, मानव रचना रेडियो 107.8 FM। और आज हमने कुछ भी ज्यादा नहीं सोचा है सिर्फ बातें करेंगे आपको, बड़ी सारी जो है वो बातें बताएंगे, शोले की बातें बताएंगे और एक रसरंग में जो है वो किस्से के हिस्से की बात भी करेंगे। और आपने देखो हमें बोल दिया कि भाई किस्सा कहाँ गया, हिस्सा कहाँ गया। तो भाई ये तब की बात है जब अभी कुछ हाल फिलहाल पहले जब रसोई गैस सिलेंडर की दिक्कत हो गई थी, उस समय रूमी जाफरी साहब ने जो है वो एक लेख जो है वो साझा किया था रसरंग में। अब कहते हैं कि राज बब्बर पिता को पढ़ने का बोलकर गए थे बड़े शहर, वहाँ करने लगे थे थिएटर। अब ये क्या बात थी, तो 90-80 के दशक में तो गैस कनेक्शन मिलना मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ कुछ दिक्कतें पहले हुई थी, लेकिन बहरहाल ये हो गई पुरानी बात। तब 90 में जब मैंने मुंबई में अपना पहला घर खरीदा तो भोपाल वाले गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन था वो ट्रांसफर करवा कर ले आया था, ये रूमी जाफरी साहब हमें बता रहे थे। सिलेंडर खत्म हो गया तो केरोसिन के स्टोव पर खाना बनाना था। अब किस्मत से 1994 यानी 1994 में राज बब्बर सांसद बन गए। अब सांसदों के पास गैस कनेक्शन देने का अधिकार होता था, तो एक दिन में कनेक्शन मिल जाता था। फिर मुझे एक और कनेक्शन मिल गया और मेरे घर में 2 कनेक्शन हो गए। तो आज अपने हिस्से के किस्से में उन्होंने कहा मैं बात करूंगा राज बब्बर की। अब राज बब्बर आगरा जिले के टुंडला में पैदा हुए और वहीं उनकी पढ़ाई हुई थी। अब अभिनय में उनकी रुचि शुरू से ही थी, थिएटर करते थे, पिता और दादा रेलवे में नौकरी करते थे और हर सरकारी कर्मचारी की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि उनके बेटे की नौकरी रेलवे या किसी सरकारी महकमे में लग जाए। अब ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, जैसा आप सोचते हैं वैसा करते हैं, और आप जो अपनी संतान से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर एक्सपेक्टेशन को लिमिट किया करिए। यानी कि अब इसके बारे में जो है ये तो एक मैनेजमेंट का जो है वो सेक्शन हो जाएगा जिसमें हम जो है वो अभी नहीं जाना चाहेंगे। बहरहाल एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे जिसमें जो है वो हम गाइडेंस और रिक्वायरमेंट और करियर इसकी बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आते हैं इसी मोड़ पर और इस मोड़ पे जो है वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो भाई बड़ा ही दिलकश गीत था, फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, 1977, मोहम्मद रफ़ी, सुषमा श्रेष्ठ, राहुल देव बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, ऋषि कपूर, काजल किरण, तारिक खान, इन पे फिल्माया गया था। क्या हुआ तेरा वादा, सुनते हैं, लौटते हैं क्योंकि वादा तो निभाना है ना दोस्तों।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनित सेठ के साथ। भाई जो हमारी बातें चल रही थी उसमें हिस्से का किस्सा किसी का हिस्से था, उसमें बोलने लगे आप लोग कि भाई थोड़ा सा और बताएं उसमें क्या हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। वैसे आप लोगों को लगता है पता ही चल गया है कि हमारा नंबर है, यहाँ हमारा नंबर है 8010781078, हमें लिखते रहिए, हमें बताते रहिए, हम प्रोग्राम को आपके हिसाब से ढाल लेंगे। और ढाल क्या लेंगे, आप लोगों की तारीफें और आप लोगों की नसीहतें भी जो है वो हम ज़रूर बताएंगे। तो बात ये हो रही थी कि भाई हर कोई जो चाहता है, भाई ऐसा ही चाहता है कि भाई हमारा जो पुत्र है या पुत्री है या जो भी सुपुत्र हैं या सुपुत्री हैं वो उसी तरीके से जो है वो, जैसे अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो पिता जो उनके थे राजबब्बर के, तो हर सरकारी कर्मचारी की तरह उनके पिता ये चाहते थे कि उनके बेटे की सरकारी रेलवे या किसी सरकारी महकमे में नौकरी लग जाए। ये सब सरकारी और मिडिल क्लास वाले लोगों की सोच होती है। इसमें हम नहीं जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को तो हम साइड में रखते हैं कि अगर बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई तो रिटायरमेंट तक तनख्वाह और उसके बाद पेंशन मिलती रहेगी, इसलिए वे निश्चिंत हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो है वो थॉट प्रोसेस रहा करता था 80s में 90s में। आजकल तो बड़ा ही जो है वो भाई उन्नति का डिफरेंट टाइप का ज़माना है, इसके बारे में भी बात करेंगे कभी और करेंगे। मगर राज भाई ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने पिताजी से जो है वो गलत बोला कि वे आगे पढ़ने जा रहे हैं और पटियाला आ गए। वहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट में 120 रुपए का उनको वजीफा मिल गया था। अब घर से पैसे भी नहीं मंगाने पड़े तो घर वालों को भी तसल्ली हो गई कि लड़का अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ से

के लिए साइन भी कर लिया। राज भाई कहते हैं बीआर चोपड़ा ने मुझे साइन कर लिया, मेरी लाइफ बन गई, मगर वो फिल्म शुरू ही नहीं हुई। इसी बीच सलीम खान और जावेद अख्तर ने मेरा नाटक देख लिया और वे मेरी परफॉर्मेंस से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने अपने एक स्क्रिप्ट के लिए मेरा नाम रिकमेंड कर दिया। अब हम जो है वो क्या रिकमेंड करें, हम रिकमेंड करते हैं जैसे हमने कहा था ना, कसमेवादे निभाएंगे हम, कसमेवादे 1978, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, गुलशन बावरा, अमिताभ बच्चन, राखी। अब इसको सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे थे बड़ी सारी, हमने बातें करी, हम तो साथी की भी बात कर रहे थे, किस्से के हिस्से और हिस्से के किस्से तो चलते ही रहते हैं और शोले तो कंटिन्यूड है। तो साथी रवि, शांति और रजनी के बीच एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी है। ये फिल्म 1961 की तमिल फिल्म पालम पझामुक की रीमेक थी, इसे तो हमने आपको बता ही दिया था। जब श्रीधर ने रचना के लिए नौशाद से संपर्क किया तो नौशाद जी ने जो है उसके गीत सुने और जो बोले कि इन अद्भुत गीतों की जगह मेरे गीत नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने जो है वो बोला कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर आता हूँ, यानी कि उन्होंने इस परियोजना को अस्वीकार कर दिया। बाद में नौशाद ने विश्वनाथन के अनुरोध पर केवल फिल्म के लिए रचना करना स्वीकार कर लिया। अब बोल जो गाने के थे वो मजरूह सुल्तानपुरी जी ने दिए थे। अपने नाटकीय रन के अंत में फिल्म ने बड़ी अच्छी कमाई की थी इस प्रकार। और भाई जो है जनमत और फैसले के साथ 1968 की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सरोज खान ने कई बॉलीवुड एक्टर्स को डांस करना सिखाया था, लेकिन उनके एक शिष्य में एक थे, गोविंदा भी थे। अब इस पे हम अभी यहाँ पे ले रहे हैं पॉज, क्योंकि भाई जो है हमें बात करनी थी, हमें बहुत सारी बातें करनी थी, राज बब्बर जी की भी बात है। तो मैं सोच रहा हूँ कि किस गीत को जो है वो पकड़ा जाए, कौन ये आया महफिल में, ऐसे एक जो है

वो बड़ी चुलबुले से बोल वाले जो है वो एक फिल्म थी होटल 1981, अमित कुमार, उषा खन्ना इंदिवर, यानी कि संगीत उषा खन्ना का था, इंदिवर के बोल थे, नवीन निश्चल, राकेश रोशन, लीना दास, डांस सॉन्ग था कौन ये आया महफिल में, इसे सुनते हैं और लौटते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, बड़ी सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें कर ली गई थी, लेकिन वही बात है कि आप लोगों ने बोला शोले आप छोड़ देते हैं बार बार। नहीं जी, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। हमने बिल्कुल जो है वो आपको जहां तक छोड़ा था उसके आगे हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि आगे क्या हुआ था। कि भाई हर शॉट दिया गया था, थोड़ा सा संगीत जो है वो फ्रेम से इधर उधर हो गया था, कभी कुछ फ्रेम्स में सिंक नहीं हुआ था, लेकिन ये बात जो है वो हमें पता है, आपको पता नहीं चलती। तो सिप्पी ने जल्दी फैसला किया था कि 70 mm जो प्रारूप में स्टीरियोफोनिक ध्वनि होनी चाहिए, अब समान रूप से प्रभावशाली ध्वनि के बिना महाकाव्य दृश्य आधे पके हुए हलवे की तरह होते हैं, ये उनका मानना था। फिल्म के हर नोट को ग्रैंड कैमरा वर्क से मैच करना था। पूरे समय रमेश ने स्टीरियोफोनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने शॉट्स की योजना बनाई थी। सिप्पी को इस बात का एहसास नहीं था कि स्टीरियोफोनिक साउंड का मतलब लंदन में ऑपरेशन शिफ्ट करना था। उस समय भारत में ऐसा कोई स्टूडियो नहीं था जो स्टीरियोफोनिक मिक्स को संभाल सके। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी सारी बातें भी होती हैं। अब उस समय का जो तकनीक थी, जैसी थी भाई, वो तो वैसी ही थी। अब जिम एलन ने पूछताछ की, उन्होंने ट्विकेनहैम स्टूडियो पाया जो लंदन के एक उपनगर में जो है वो स्थित था। पहले ट्विकेनहैम ने एक साउंड इंजीनियर को मुंबई भेजा, उन्होंने फिल्म देखी, नोट्स बनाए और निर्देश दिया कि ध्वनियों को कैसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। हर आवाज़, गाड़ी की गति यानी मूल तांगा रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में जो है वो लाया गया था। एक घंटी बजती थी, ट्रेन आ रही है, एक अलग ट्रैक पर दर्ज की गई थी। अब ये जो है वो ट्रैक्स जो थे वो डिफरेंट यूज़ किए गए थे। अब आज के टाइम में तो हम लोग ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक और मिक्सिंग, इसका आजकल तो सब लोग जो है इसके बारे में जागरूक हो चुके हैं और जान भी चुके हैं। अब उस समय जो है वो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट था, क्योंकि रमेश ने अपनी ज़रूरत की सभी आवाज़ें मुंबई से लंदन तक अब पहुँचाई। अब बुलेट साउंड इफ़ेक्ट्स और ढिशुम ढिशुम को छोड़कर सब कुछ, मुंबई में फाइट साउंड इफ़ेक्ट सामान्य थे, चाहे वो गिरावट हो या झटका या मुक्का हो, सब कुछ ऐसा एक जैसा ही लग रहा था। और इसलिए केवल लंदन में लड़ाई की आवाज़ बनाई गई थी, बाकी को मुंबई में रिकॉर्ड किया गया था और ट्विकेनहैम में ले जाया गया था। 3 महीने के लिए रमेश लंदन और मुंबई के बीच आगे पीछे होते रहे, ध्वनियों को मिलाते हुए, इससे पहले कि फिल्म पर आखिरी काम उनकी संतुष्टि के लिए पूरा ना हो जाता। अब शोले आखिरकार जुलाई में बनकर तैयार हो गई। 2.5 साल का श्रम टिन में जो है वो डूबा हुआ था, यानी उस समय टिन बॉक्स होते थे, जो गोल बॉक्स होते थे जिसके अंदर रील्स और वो सब जो है वो समेट ली जाती थी। फिल्म को देखते हुए रमेश ने सोचा कि उसने वक्त को बदल दिया है, पर जो सबसे जो मुश्किल काम था, जो सबसे कठिन हिस्सा था, वो तो अभी आने वाला था। अभी तो लड़ाई शुरू हुई थी। अब ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसको देते हैं पॉज और हम जाते हैं, क्योंकि ये नया शहर था, दो दीवाने शहर में। घरौंदा 1977, भूविंदर, रूना लैला, जयदेव, गुलजार, अमोल पालेकर, जरीना बहाव, सुनते हैं और लौटते हैं। आबुदाना आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने, सुनते हैं लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, अब भाई बिल्कुल जाने का एकदम मन नहीं कर रहा है, लेकिन घड़ी जो है ना वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। घड़ी कह रही है कि भाई अब हमारी तरफ ध्यान दें, लेकिन हम जो ध्यान देंगे तो आपने जो कहा कि भाई शोले को आपने बड़ी नाजुक मोड़ पे लाके छोड़ दिया, लेकिन उसका क्या हुआ, जो हिस्से का किस्सा था, किस्से का हिस्सा था। हाँ भाई बिल्कुल बात सही है कि उसका क्या हुआ, तो वो बात जो थी वो तो रह गई थी वहाँ पर। तो जाते जाते थोड़ा सा ये किस्सा तो पूरा किया जाए। तो राज भाई बताते हैं, रमेश सिप्पी साहब टैलेंट हंट वाला मेरा स्क्रीन टेस्ट देख चुके थे। मुशीर व्यास उस समय के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्होंने मुझे प्लेन का टिकट भेजा, बॉम्बे बुलाया। पहली बार मैं प्लेन में बैठा और पहली बार 5-स्टार होटल में रुका। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो उनको लगा कि इसका मतलब ये फिल्म मुझे मिलनी तय है। और इस पॉजिटिव नोट पर अब जो है बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन घड़ी साथ नहीं दे रही है। हम तो यही कहते हैं कि अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ, और आपका होस्ट और दोस्त जाते जाते आपको छोड़े जा रहा है। फिल्म तो सत्यम शिवम सुंदरम 1978, लता मंगेशकर, मन्ना डे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नरेश शर्मा, पद्मिनी कोल्हापुरी में फिल्माया गया था। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, और अगले हफ्ते मिलते हैं। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। अपने बारे में बताना चाहूंगा, यहां पर सब ठीक है। शो बहुत स्पेशल है, वजह भी बहुत स्पेशल है कि आपको लीगल फ्रेमवर्क से थोड़ा रूबरू कराते हैं। एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, क्यों इतना मैटर करती हैं, आपको क्या पता होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम इस देश के नागरिक हैं। एक तो पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि हम कंज्यूमर हैं, है ना। अब ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर आपको नहीं पता अपने अधिकारों के बारे में, तो समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो वी फोकस ऑन दोज पार्ट्स जहाँ पर हम लोग आपको बता सकें एग्जैक्टली कि क्या चीज़ें हैं, क्या आपके राइट्स हैं, लीगली आपको क्या क्या जो है राइट्स मिले हुए हैं। अगर कुछ गलत होता है तो आप क्या कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके डाटा को यूज कर लिया बिना आपके कंसेंट के, क्या करोगे? एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। सो या दैट इज द मोटिव ऑफ द शो। द नेम ऑफ द शो इज सत्यमेव जयते। माय नेम इज सागर तेवतिया। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक बहुत खास लीगल फ्रेमवर्क की। उसका शॉर्ट फॉर्म तो है DPDP, बट फुल फॉर्म उसका है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। 2023 में आया था, तो बहुत नया है, बहुत रिसेंट है। बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल लेकिन मेरे सलाम कबूल कर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून, फील गुड फील।

0: किताब हो।
1: वेलकम बैक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया ये म्यूजिकल ब्रेक। शो को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये नहीं बताएंगे आपको डाटा क्या है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपका डाटा लिया क्यों जा रहा है? एंड दिस इज योर राइट टू नो। अगर एक उदाहरण के तौर पर आप किसी दुकान पर गए हैं, आपने कुछ सामान की खरीदारी करी है, आपने पैसे दे दिए हैं, आपका फोन नंबर मांगा जा रहा है वहां पर, आपके पास ये पूरा अधिकार है जानने का कि मेरा नंबर क्यों लिया जा रहा है। आपके पास इसी के साथ एक और अधिकार है मना करने का, डिनाई करने का। देखिए, जब भी कोई संस्था आपके डेटा को कलेक्ट करती है, आपके पर्सनल डेटा को, ठीक है, उसको आपको बताना चाहिए कि वो क्यों कलेक्ट कर रहे हैं एंड क्यों उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी आप दुकान को, जो मैंने एग्जांपल दिया, आप वहां पर गए तो क्यों कलेक्ट किया जाता है वहां पर डेटा? ताकि वो आपको बता सके अपने ऑफर्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में। हो सकता है कि जब भी कोई अच्छा ऑफर आए तो आपको पता लगे उसके बारे में, तो ठीक है, फेयर डील है, है ना, आपको पता लगेगा, आपके पैसे बचेंगे, उसका सामान बिकेगा, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये है एक इंपॉर्टेंट चीज। बट एक शॉपिंग एप्लीकेशन पे आप गए, वहां पर आपका फोन नंबर मांगा, ठीक है, इट शुड हैव अ पर्पस टू कलेक्ट योर डाटा। और ये 2025 के नियम बोलते हैं, 2025 के रूल्स बोलते हैं कि क्लियर नोटिस होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है। डेटा देने से पहले आप पूछ सकते हैं, मेरा डेटा क्यों कलेक्ट हो रहा है, उसे कहां यूज किया जाएगा, क्या करने वाले हो इसके साथ, मना भी कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी, लेकिन डेटा बहुत सर्कुलेट हमारा होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर जाकर सिर्फ ये चेक किया था कि पॉलिसीज क्या क्या है, क्या क्या प्लान्स अभी चल रहे हैं, कंपेयर किए थे कुछ। अब यकीन मानिएगा, जमाने भर की कंपनी से मुझे कॉल्स आने लग गए, क्यों आए मुझे भी नहीं पता, बट मुझे समझ में आ गया कि मैंने एक जगह पर नंबर छोड़ा और इतनी जगह सर्कुलेट हो गया। इट शोज अस कि प्राइवेट तो बस कुछ नहीं है, घुमाया जा रहा है डाटा को, एंड दैट इज अ पेन पॉइंट। इसलिए डाटा को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है हमारे डाटा के साथ और कैसे आप उसको बचा सकते हैं। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।
2: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा है ये शो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया यहाँ तक जितनी जानकारी आपको दी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपने कंसेंट दे दिया अपने डाटा का, अब आपको रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं चाहिए, तो कंसेंट क्या आप वापस ले सकते हो? यस, जहां पर प्रोसेसिंग आपकी कंसेंट के बेस पर हो रही है वहां पर आप कंसेंट दे सकते हो, कंसेंट को डिनाई कर सकते हो, कंसेंट को विदड्रॉ भी कर सकते हो, वापस ले सकते हो। सो थिंक अबाउट समथिंग, जहां पर आपने कुछ साइन अप किया किसी एप्लीकेशन के ऊपर, लेट्स टेक आपने एक एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करी। अब एडिटिंग के लिए आपको अपनी गैलरी का एक्सेस देना पड़ेगा, यहाँ पर तीन ऑप्शन है आपके पास, या तो लिमिटेड एक्सेस दो, या पूरा एक्सेस दो, या एक्सेस दो ही मत। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, आपने लिमिटेड एक्सेस दे दिया, आपने वीडियो एडिट कर ली, फोटो एडिट कर ली, एक्सपोर्ट मार ली, आपके पास फाइल आ गई, अब आप कंसेंट को अपने वापस ले सकते हैं और लेना चाहिए। अच्छा, ये दूसरी कहानी है जिसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा सा हम ऑफ रूट जा रहे हैं, बट देयर वाज अ केस जो बहुत फेमस हुआ था, जहां पर एक इंसान है जिसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी, उन्होंने उसको माइक्रोफोन का एक्सेस दे दिया, रात को सो गए, सोए हुए आराम से, सुबह उठे, अपने फोन की हिस्ट्री चेक करी, हर एक चीज की, माइक्रोफोन की, कैमरा की। अब यकीन मानिए ट्विटर के ऊपर, उस टाइम पर ट्विटर था उसका नाम, अभी तो एक्स है, बवाल मचा था इस चीज का कि रात को 2:30 बजे जब मैं सो रहा हूं मेरा माइक्रोफोन यूज कैसे किया गया, क्यों यूज किया गया, और ये लेजिट हुआ था। अब वो एग्जैक्ट रूट कॉज क्या था ये अभी तक हमें समझ में नहीं आई, बट यू शुड नो दिस कि आपके डेटा को इस्तेमाल किया जाता है, वंस यू हैव गिवन द कंसेंट द कंपनी इज यूजिंग इट। अच्छा, यहां पर दूसरी चीज ये आती है, चेंजेस हुए हैं काफी, पहले आते थे ऑलवेज अलाउ, आपका डेटा अगर आप किसी चीज का राइट दे रहे हो, एक्सेस दे रहे हो, अलाउ या डिनाई का होता था, अलाउ मतलब अलाउ। अभी लेकिन चीजें काफी बदल गई हैं, अभी हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा है तीन ऑप्शन होते हैं, अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ वंस, या डिनाई, या तो एक बार अलाउ करेंगे, या जब आप जब आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तब आप अलाउ करेंगे उसको, या आप उसको डिनाई करेंगे। ये रिफाइन हुआ है काफी, एंड इट्स अ गुड साइन। सो कमिंग बैक टू अवर पॉइंट कि कंसेंट देके वापस आप ले सकते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, अपने कंसेंट को आप विदड्रॉ कर सकते हैं। 2025 के रूल्स बोलते हैं कि एक विदड्रॉल प्रोसेस है, और विदड्रॉल प्रोसेस हर एक कस्टमर को इतना ही आसानी से मिलना चाहिए जितनी आसानी से कंसेंट देने का प्रोसेस मिलता है। कंसेंट दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल हमेशा के लिए चला गया है, वापस भी लिया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे वो किसी दुकान पर जाके नंबर दिया है वहां से हटवा सकते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास है बोल सकते हैं DND में मेरा नंबर डालो, या मेरा नंबर अपने रिकॉर्ड से आप हटाओ, या किसी एप्लीकेशन को अपने फोन में आपने एक्सेस दिया है उसको आप हटा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। यू शुड नो दिस, उम्मीद कर रहा हूं समझा पाए हूं यहां तक। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक,
1: जय हिंद जय भारत। शो का नाम सत्यमेव जयते, मेरा नाम सागर, और यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है विच इज डीपीडीपी, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में ये आया था। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उम्मीद भी ऐसी कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। आपके पास ये भी अधिकार है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ले सकते हो। आपने डेटा का एक्सेस दे दिया, कंसेंट दे दिया, कंपनी यूज कर रही है, आपके पास ये राइट है, आप जान सकते हैं मेरा डेटा कहाँ यूज किया जा रहा है, कहाँ रखा है। यू कैन डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन टू द ऑर्गेनाइजेशन कि प्रीवियसली मैंने कंसेंट दिया था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी थी अपना पर्सनल डेटा का। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जानना है कहाँ पर आपने उसको इस्तेमाल किया है, एंड इट कैन इंक्लूड एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अपने पर्सनल डेटा की समरी आप जान सकते हो कि कौन सा डेटा आपने प्रोसेस किया है। आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि और कहाँ पर मेरा डेटा आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप ये भी जान सकते हो कितना डेटा आपने कितनी बार यूज किया है मेरा। ये एक्ट आपको राइट देता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने किसी को फोन नंबर दिया, ईमेल दिया, अपना एड्रेस दिया, पूछ सकते हैं मेरे बारे में आपके पास क्या डेटा है और वो किसके साथ शेयर हुआ है, मेरे साथ हिस्ट्री बताइए, शेयर करिए। अगर शेयर किया है तो यहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि आपने मेरे कंसेंट के बिना शेयर कैसे कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक को आपने अपना नंबर दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, आईसीआईसीआई बैंक को आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी दी, आपके पास कॉल आई एक्सिस बैंक से, तो आप ये पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपका राइट है कि वहां तक नंबर मेरा ट्रेवल कैसे किया, मैंने तो सिर्फ आपको दिया था। हालांकि ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आईसीआईसीआई बैंक या कोई भी बैंक ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करता है, बट कंपनीज ऐसा बहुत सारी हैं जो ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है। किसी को अधिकार नहीं है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करे, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि भैया आपके बिना कंसेंट के आपके डाटा को उठा के कहीं भी शेयर कर दे, ट्रांसफर कर दे, आपके डाटा को प्रोसेस करने लग जाए। नो, ये होता है, लेकिन इसलिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए। दिस इज डीपीडीपी एक्ट, आपका अधिकार, आपकी सेफ्टी के लिए अधिकार, आपकी प्राइवेसी के लिए अधिकार आपको दिया गया है। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। शो को आगे बढ़ाएंगे तो अब आगे बात करते हैं डीबीटीपी एक्ट, क्योंकि अपने आप में बहुत खास एक एक्ट है। हालांकि बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें कितनी भी बात हो सकती है। मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, मल्टीपल विंग्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और ये भी उठ के आती है कि गलत डेटा है, प्रॉब्लम हो रही है आपको, आपके डेटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी फ्रेमवर्क है कि अगर आपके एंड पे गलत डेटा आपने दे दिया गया है तो आप उसको करेक्ट करा सकते हो, अपडेट कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर कंपनी उसको करेक्ट नहीं कर रही है तो आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो। तीसरी चीज ये है कि अगर आपके डेटा को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, अगेन आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई मना करता है आप जा सकते हो, लीगल फ्रेमवर्क है आपके लिए, आप जाके केस कर सकते हो। डीपीडीपी एक्ट 2023 आप कोर्ट करेंगे, आपका केस उसके अंडर फाइल होगा, डेफिनेटली आपकी जो भी बात है वो सुनी जाएगी और जो भी इंसान वहां पर कल्प्रिट पाया जाएगा उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो आपका डिजिटल डाटा सिर्फ एक कंपनी का रिकॉर्ड नहीं है, उसके प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग आपके राइट्स भी हैं। कुछ कैसे प्रोसेस किया जाएगा, आप कहते हो कि मेरा डाटा आगे नहीं जाना चाहिए, कंपनी के पास कोई राइट नहीं कि वो आपका डाटा आगे भेज दे या बेच दे किसी और को दे दे, ठीक है। आज आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर या आपका आधार नंबर या आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आपकी लोकेशन या कोई और पर्सनल आपकी जानकारी हो सकती है, वो आप इजीली दे तो देते हो, लेकिन डीपीडीपी का फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप उसको वापस ले सकते हो, एक्सेस आप वापस ले सकते हो, कंसेंट आप वापस ले सकते हो, ऑल्टर आप उसको करा सकते हो, ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हो, हिस्ट्री आप जान सकते हो, प्रोसेसिंग आप जान सकते हो। दिस इज डीपीडीपी एक्ट। फिलहाल इसी के साथ आज का शो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। आशा करता हूं कुछ जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, आपको मैं समझा पाया हूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

पुरस्रार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। और मैं आपको बताती हूँ, हर शनिवार ना आपको कहीं घूमने लेकर के जाती हूँ। आज भी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह आपको लेकर के आ चुकी हूँ। पहाड़ों की गोद में बिखरा हुआ एक ऐसा नगीना जहां कुदरत ने हर कोने को फुर्सत से तराशा है। आज इसी कोने की मैं बात करने वाली हूं। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या हम तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से पहुंचा सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें और बताऊंगी आपको कि आज कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज का हमारा सफर हमें लेकर के जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक ऐसे बेहद हसीन, रॉ और कल्चरली रिच कोने में, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द ज्वेल ऑफ इंडिया कहा था। जी हाँ, आज हमारा रास्ता मुड़ गया है मणिपुर की तरफ। इमेजिन कीजिए चारों तरफ नीले हरे पहाड़ों का गहरा जो है ये बिछा हुआ है, एक रंग बिछा हुआ है, बीच में शीशे जैसी चमकती विशाल लोक तक लेक, और साथ ही यहाँ जमीन के गोल टुकड़े पानी पर तैरते हैं और हवाओं में मणिपुरी क्लासिकल डांस के घुंघरू और ढोल की मीठी थाप घुली हुई है। मणिपुर एक ऐसी देखिए जगह है, एक ऐसा राज्य है दोस्तों, एक ऐसी जगह बहुत कमाल की खूबसूरत सी, जहाँ औरतों की ताकत, सदियों पुराना शाही इतिहास और कुदरत का जादू हर मोड़ पर मिलता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं मणिपुर आपको लेकर के आई हूँ, यहाँ की बहुत सारी बातें करूँगी, दुनिया के एकमात्र तैरते हुए नेशनल पार्क में ले चलूँगी, एशिया के सबसे बड़े ऑल वुमेन मार्केट की सैर कराऊँगी, और साथ ही साथ जो यहाँ का कांगला फोर्ट है, यहाँ के राज भी थोड़े बहुत आपको बताने वाली हूँ। तो बस बने रहिए मेरे साथ, यानी कि आरजे साक्षी के साथ प्रोग्राम सफरनामा में, क्योंकि यहाँ होने वाली है आज बहुत सारी मैजिकल बातें। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें, पानी के सीने पर तैरती जमीन बताती है कि कुदरत के करिश्मों की कोई सीमा नहीं होती। मणिपुर की पहचान और उसका दिल बसता है यहाँ की विशाल लोकतल लेक में। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी और पूरी दुनिया में यूनिक बात पता है आपको क्या है? इस झील के ऊपर घास, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर के बने बड़े बड़े गोल टापू यानी कि सर्कुलर आइलैंड जैसे जो है आइसलैंड जो है वो तैरते हैं, जिन्हें लोकल भाषा में हम अगर आप इसे कहें तो इसे जो है वो फुमदिस जो है यानी कि जो फुमदिस जो है उसे कहा जाता है। और इन जो फुमदिस है इसके ऊपर जो है मछुआरों के लकड़ी के छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो पानी के साथ साथ फ्लोट करते हैं। जब आप एक ट्रेडिशनल जो वुडन बोट होती है उसमें बैठेंगे, आप जब वहाँ पर जाएंगे तो मतलब आपको वो तैरते हुए गोल टापों के बीच से ना निकलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी फैंटेसी मूवी में आप आ गए हैं और अलग ही दुनिया है। लोकतक लेक सिर्फ एक झील नहीं है, ये हजारों लोगों की रोजी रोटी और मणिपुर की लाइफलाइन है। चलिए मणिपुर के बारे में आपको थोड़ी और बातें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल लेते हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और नाजुक कदमों से जो घास पर नाचे वही तो इस जंगल की असली धरोहर है। लोकतक लेक के साउथ ईस्टर्न हिस्से में स्थित है पूरे संसार का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि यहाँ पर जो नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक विशाल भूमड़ी के ऊपर बना हुआ है। और ये पार्क घर है एक बेहद रेयर और खूबसूरत हिरन का, जिसे कहते हैं सांगाई द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। सांगाई सिर्फ और सिर्फ इसी झील पर मिलता है और ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है। जब ये हिरन तैरती हुई नरम घास पर बैलेंस बनाकर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो ताल पर नाच रहा हो, इसीलिए इसे डांसिंग डियर कहते हैं। इस वक्त पर ये लगभग देखिए ज़्यादातर अब तो एक्सटेंट होने की कगार पर था, पर लोकल लोगों के प्यार और प्रोटेक्शन ने इसे बचा लिया। भूमड़ी पर जो देखिए दूरबीन

0: लगभग 5,000 से ज्यादा जो इमाज हैं यानी कि जो माएँ हैं वो ट्रेडिशनल यहाँ की जो कपड़े जो है उन्हें पहनकर उन दुकानों पर बैठती हैं और यहाँ आपको फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो है ये तो मिलेंगी, साथ ही यहाँ पर आपको होममेड हैंडमेड मणिपुर शॉल्स, यहाँ के पेटल्स, यहाँ के बर्तन और लोकल हर्ब्स सब कुछ मिलता है। ये मार्केट सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, ये मणिपुर के इतिहास में औरतों की लीडरशिप और उनके स्वाभिमान का सबसे बड़ा किला रहा है। यहाँ किसी भी माँ से बात आप जब करेंगे तो उनका आशीर्वाद लेना दिल को एक बहुत प्यारा अपनापन देता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
1: लागा गोरी गुजरिया से

थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन घाक दिनक दिन ताक तिनक तिन घा आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। और इस सफरनामा में बहुत सारी बातें करती हूं। आज लेकर के आई हूं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह और ये है मणिपुर। देखिए, पुरानी दीवारों के दरवाजे खुलते हैं तो सदियों पुराने राजवंश का गौरव बोल उठता है। और इम्फाल रिवर के किनारे फैला हुआ है मणिपुर के ऐतिहासिक गौरव का सबसे बड़ा सिंबल कांगला फोर्ट। कांगला फोर्ट जो है ये इसका प्राचीन, यहाँ की जो मैथी भाषा है इसका मतलब होता है ड्राई लैंड। 19 सेंचुरी तक ये मणिपुर के राजाओं का शाही महल और पावर सेंटर हुआ करता था। किले के अंदर पुराने मंदिर, रॉयल यहाँ के कोरोनेशन हॉल्स और पानी की जो मोट्स हैं, ये आपको खाइयाँ हैं जो आपको दिख जाएंगे। किले के मेन गेट पर खड़ी है विशाल यहाँ पर कांगला शाह की मूर्ति, जो एक पौराणिक और आधा शेर और साथ ही आधा ड्रैगन जैसे जीव और मणिपुर का स्टेट एम्बलम है। ब्रिटिशर्स और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर रहने के बाद अब ये किला आम लोगों के लिए एक शांत हेरिटेज पार्क बन चुका है। यहाँ साइकिल रेंट करके किले के पुराने बगीचों में घूमना इतिहास को करीब से महसूस करवाता है, और जो बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ आएंगे ना, तो वो एहसास को ना, मतलब वो जो एक अलग ही अंदाज है ना, उसको एक एहसास जो है ना वो आप महसूस कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रिश्ता 107.8 एफएम। फील गुड, फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें घुंघरू की धुन पर, जब राधा कृष्ण का प्रेम भरे तो नृत्य आत्मा की प्रार्थना बन जाता है। जब हम इंडियन क्लासिकल डांस की बात करते हैं ना, तो मणिपुर डांस जगोई अपनी शांत और जो नजाकत भरी अदाओं के लिए ना सबसे अलग पहचाना जाता है। इसका सबसे मशहूर रूप है रासलीला। और देखिए, नर्तकी जब क्विमिन नाम का जो बैरल शेप्ड रिजिड एक घाघरा पहनती हैं, जिसमें बारीक कांच का या मिरर वर्क जो है ये होता है और मोती लगे होते हैं, और बिना किसी झटके के बेहद नरम लहरों की तरह घूमती है, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस डांस में उस देखिए यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट, एक तार वाला ढोलक जो है कुछ जैसा साज जो है, या पुंग की अगर बात करें जो मणिपुरी ढोलक है, जब हवा में गूंजते हैं तो पूरा का पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस डांस से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे शांति निकेतन में सिखाना शुरू करवाया था। और देखिए, तभी से वहाँ पर तो ये ट्रेडिशनल तो उसमें तो आता ही है, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो आप थोड़ा सा ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आके ना आपको इतना सुकून मिलेगा ना, जितना शायद आपको इसी जगह पर जाके ना मिले। बहुत सारी जगहें हैं ना, अलग अलग जगह हैं और अलग अलग आपका सोचना है, समझना है। वहाँ जाइए, बैठिए, बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, आपको बिल्कुल जैसे आप अपने ही शहर लौट आए, आपको इस तरह से आपको महसूस कराएंगे। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह और कोई नहीं बल्कि है मणिपुर। देखिए, घोड़ों की ताप और जाओगन की चोट हमें याद दिलाती है कि शाही खेलों का जन्म यही हुआ था। अच्छा, आपको पता है कि मॉडर्न पोलो का जन्म जो है कहाँ हुआ था?

किसी यूरोप या अमेरिका में नहीं बल्कि हमारे अपने मणिपुर में शुरू हुआ था। लोकल भाषा में से सांगोल कांजिक जो है वो कांजी जो है वो कहा जाता है। मणिपुर के लोग सदियों से छोटे इंडिजीनियस मणिपुरी जो पोनीज होते हैं यानी कि घोड़े जो होते हैं उन पर बैठकर बांस की स्टिक से पोलो खेलते हैं। यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने यहाँ जो इस खेल को देखा था और रूल बनाया और पूरी दुनिया में मॉडर्न पोलो के नाम से मशहूर कर दिया। और इम्फल में स्थित जो यहाँ पर मापल कैंजुबग है, दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनल पोलो ग्राउंड है। आज भी यहाँ पोलो प्लेयर्स ट्रेडिशनल धोती और पगड़ी पहनकर पूरे जोश के साथ मैच खेलते हैं। तो चलिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको देखने तो ज़रूर जाएंगे ना। चलिए अच्छा अब ना एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और इस ब्रेक के बाद भाई इतने दूर आए हैं कुछ खाना भी तो खा के जाएंगे। बात करूँगी यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल फूड की। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको मणिपुर। और देखिए, इतनी दूर आए हैं तो कुछ खाना भी तो खा के जाएंगे ना। देखिए, कुदरती जड़ी बूटियों और साफ मिट्टी का स्वाद पहाड़ी रसोई को एकदम बेमिसाल बना देता है। अब थोड़ी पेट पूजा की जाए और लोकल स्वाद की बात अगर करें तो मणिपुर का खाना बिना किसी तेल या आर्टिफिशियल मसालों के एकदम ऑर्गेनिक हर्ब्स और फ्रेश सब्जियों से बनता है। यहाँ का सबसे मशहूर यहाँ की जो डिश है वो है इरोम्बा, और इसमें उबली हुई सब्जियाँ, मैश किए हुए आलू और फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स को तीखी राजा मिर्च के साथ, जो है ये मिर्च जो होती है यहाँ की, इसके साथ मिक्स किया जाता है। इसके अलावा जो कांगशोई, एक लाइट और हेल्दी वेजिटेबल स्ट्यू होता है जिसे गरम चावल के साथ खाया जाता है। और अगर आप राइस के शौकीन हैं तो यहाँ का जो आइकॉनिक चा खाऊ है यानी ब्लैक राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे जो है वो इस काले चावल से बनी खीर यानी कि पुडिंग का जो बैंगनी रंग और नटी खुशबू होती है ना, आपका दिल जीत लेगी। खाना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा लाइट और न्यूट्रिशियस होता है जो आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और देखिए, बहुत कमाल यहाँ का खाना आपको मिल जाएगा। अच्छा, वैसे ना पहाड़ों पे जब भी हम जाते हैं तो ट्राई करते हैं कि यहाँ के मोमो, ये वो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई अगर आप मणिपुर आए ना तो यहाँ पर आपको यहाँ का जो इरोम्बा है वो बिल्कुल ट्राई करना है। वेजिटेबल्स का जो एक मिश्रण है जो घुल जाती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी। नंबर है 8010781078। फिलहाल एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें इसी के साथ। आज ना आपको लेकर के आई हूँ एक बहुत ही खास जगह, और ये जगह है इतनी कमाल की, इतनी खूबसूरत। ये जगह है मणिपुर। मणिपुर की देखिए हम बात करें तो पहाड़ी की ऊंची चोटी पर खिलता वो गुलाबी फूल पूरी कायनात में सिर्फ एक ही जगह मुस्कराता है। इम्फाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर तांगखुल नागा ट्राइब का घर है और उखरुल, और साथ ही वहाँ स्थित है मशहूर शिरुई कागशोक पीक। इस पहाड़ की चोटी पर खिलता है दुनिया का सबसे अनोखा फूल शिरोई लिली, और इस फूल की सबसे जो हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया के किसी दूसरे पहाड़ या गार्डन में उगाया नहीं ये जा सकता है। ये कुदरती तौर पर सिर्फ और सिर्फ शिरोई पीक की ऊंचाई पर ही खिलता है। मई और जून के महीने में जब ये हल्के बैंगनी सफ़ेद फूल जो है ये पहाड़ पर खिलते हैं तो दूर से ट्रैकर्स की खूबसूरती को देखने जो है ट्रैकर्स जो है यहाँ पर आते हैं। शिरोई पीक पर चढ़कर चारों तरफ से बादलों को देखना और इस रेयर फूल को छूना एक कुदरती उपहार जैसा लगता है। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मर जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील नाइस।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और आज हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। आज हम आए हैं मणिपुर। मणिपुर का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक हम दूसरे विश्व युद्ध की उस दौर को याद ना करें, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू की मैं बात कर रही हूँ। इम्फाल के पास स्थित है रेड हिल, और ये जो रेड हिल है 1944 में बैटल ऑफ इम्फाल के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA और जापानीज फोर्सेस ने यहाँ ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ एक ऐसी आमने सामने की जो खून खराबा लड़ाई जो है ये लड़ी थी, जिसे मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक गिना जाता है। और पास ही मोरांग, और जो मोरांग में जो है वो INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, जहां कॉलोनियल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मेनलैंड इंडिया की मिट्टी पर पहली बार स्वतंत्र भारत का

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर के आई हूँ बहुत ही खास जगह, मिट्टी और घास से बना हर तोहफा कारीगर की आत्मा और कीमत उनकी मेहनत का आईना होता है। और आज मणिपुर आए हैं तो मणिपुर के वापस जब आप आएंगे ना वहाँ से, तो वापस लौटते वक्त आपको यहाँ के वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट ज़रूर खरीदने चाहिए। पहली चीज़ का देखिए, पहली यहाँ पर चीज़ है यहाँ का कोना रीड क्राफ्ट। ये देखिए एक कुदरती पानी का की जो घास होती है जिसे लोकल महिलाएं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बैग्स, लॉन्ड्री बास्केट और फ्लोर मैट्स बुनती हैं जो 100% इको फ्रेंडली होते हैं। और दूसरी आइकॉनिक चीज़ है यहाँ का उखरुल की जो लॉन्गपी ब्लैक पोट्री होती है। ये काले रंग के बर्तन बिना किसी पोट्री व्हील यानी कि चाक के जो है वो स्टोन से क्ले को हाथ के शेप देकर बनाया जाता है और इन पर केन के जो हैंडल्स हैं वो लगे होते हैं और इनमें खाना बनाने से एक अलग ही अर्थी टेस्ट जो है वो आता है। लोकल ईमा मार्केट में ये आइटम खरीद आप पाएंगे। आप उन लोगों से जो है वो कारीगरों की मेहनत को डायरेक्ट सपोर्ट वो करते हैं और वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे मार्केट में। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज बड़े देखिए खूबसूरत गाने आपको सुनाए हैं और साथ ही साथ आज बात करी हमने मणिपुर की। कई अलग अलग जगहों पर हम घूमने के लिए गए और बहुत सारी बातें करी खाने की और देखिए जगहों की, घूमने की। तो चलिए इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। जाते जाते यही कहूँगी कि जाइए, घूमिए, इन्जॉय कीजिए ऐसी जगहों को जो कि मैं आपको बताती हूँ और मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। नंबर है 8010781078। फ़िलहाल कहीं मत जाइए और बस रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आपको भी पता है कि इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ, ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूँ जो सशक्त हैं, जो सशक्तिकरण फैला रही हैं, ऐसी महिलाएं जो महिलाओं के लिए ढेर सारा काम कर रही हैं और अपने लिए एक नाम कमा रही हैं, ऐसी महिलाएं जो स्वच्छंद हैं। और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। क्रिएटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक आर्टिस्ट हैं और इनका नेहा क्रिएशन ऑल इन वन मंडाला स्टोर जो है वो काफ़ी फेमस भी है। ना सिर्फ ये खुद मंडाला आर्ट करती हैं लेकिन बहुत सारी महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को ये आर्ट सिखाती भी हैं। और अच्छी बात ये है कि अब तो ये प्रूवन है कि ये जो आर्ट है ये अपने आप में एक थेरेपी के तरीके से काम करती है। तो इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी लेकिन नेहा जी की जिंदगी के बारे में आपने कुछ नहीं सुना होगा और वो हम सुनाने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो नेहा जी, करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
4: थैंक यू भावना जी, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोगों तक अपनी ज़िंदगी की कुछ इन्फॉर्मेशन या अपने बारे में या मंडाला से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
3: नेहा जी, सबसे पहला सवाल जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे इस कार्यक्रम का, सो एक बड़े लंबे समय से इस कार्यक्रम को मैं कर रही हूँ, जब से मैं रेडियो मानव रचना के साथ हूँ राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, तब से ही मैं महिला सशक्तिकरण पर ये कार्यक्रम लेकर आई हूँ। सो मेरा जो पहला सवाल होता है ना, वो हर महिला से यही होता है कि उनके नज़रिए में एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सशक्तिकरण जो वर्ड है या फिर एम्पावरमेंट जो वर्ड है, इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो हर किसी के लिए अलग होती है। सो अगर आपसे पूछा जाए, हाउ वुड यू डिफाइन कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप?
4: ओके, सो इन माय टर्म वुमेन एम्पावरमेंट इज बेसिकली जब आप अपने डिसीजंस खुद ले पाते हो
3: जी,
4: अपनी आइडेंटिटी एक खुद क्रिएट करते हो एंड यू आर नॉट, यू कैन से यू आर नॉट नोइंग बाय द नेम ऑफ लाइक योर फैमिली और योर फादर और योर हस्बैंड और योर सिस्टर और योर चिल्ड्रंस, राइट? जब आप अपने डिसीजन खुद लेते हो, अपनी एक आइडेंटिटी खुद बनाते हो, देन एक्चुअली इट्स लाइक अ वुमन एम्पावरमेंट, राइट? जहाँ आप अपने डिसीजन लेने के लिए आपको कम्प्लीटली एक फ्रीडम है, चाहे आपको कहीं बाहर जाना है, आपको अपने बच्चों को घुमाने ले जाना है, आपको कोई एक छोटा सा सामान लेना है, मार्केट जाना है, या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, क्योंकि जब हम एज अ वुमेन जब हमारी शादी हो जाती है, देन जनरली वी एक्सपेक्ट कि हमारी जो सैलरी है या समथिंग है, वी हैव टू गिव इट टू अवर फैमिली एंड एवरीथिंग, लाइक इन लॉज एंड वी हैव टू स्पेंड एवरीथिंग फॉर अवर, यू कैन से अवर हस्बैंड फैमिली, लाइक जो हमारी अपनी फैमिली हो जाती है। बट वेन यू आर एम्पावर्ड, वेन यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजन, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन टू टेक दैट डिसीजन कि अगर आप इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी थिंग टू योर फैमिली और इफ यू वॉन्ट टू बाई एनी थिंग फॉर देम, यू आर फ्री टू डू सो। इट्स लाइक अ फ्री वर्ड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हर किसी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है एम्पावर होने के लिए। अगर आप वो एम्पावर्ड हैं, देन यू विल फील अ कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, यू फील अ कॉन्फिडेंस इन योर एटीट्यूड, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, देन एक्चुअली यू आर लाइक, यू कैन से लाइक, यस, यू आर इंडिपेंडेंट वूमेन, यू आर नॉट नोइंग बाय द नेम ऑफ योर लाइक कि आप इसकी बेटी हैं या आप इसकी वाइफ हैं या आप इसकी मदर हैं। आप अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हैं, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, ना कि किसी और के नाम से।
3: सो स्वीट भाई, देखिए नेहा जी के लिए वाकई सशक्तिकरण का मतलब है अपनी एक आइडेंटिटी होना, जो कि मुझे हर बार ऐसा लगता है कि महिलाएं ना एक लंबे समय से इसे लैक कर रही थी। आप इमेजिन करिए, फॉर इयर्स वीमेन हैव बीन नोन मिसेस, ये हैं, मतलब इमेजिन करिए कि कई बार तो एक मिसेस और साथ में सरनेम, उनके खुद के नाम को लोग नहीं पहचानते हैं। और अगर आप मतलब अपने दोस्तों से या शहर में पूछें तो सब कहेंगे पता नहीं उनका फर्स्ट नेम है ही क्या। मतलब आप सोचिए, औरतों की आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा छुपी रहती थी। लेकिन हाँ, आइडेंटिटी के साथ साथ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। इस सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपने माता पिता की मदद कर पाएँ या अपने परिवार की मदद कर पाएँ, लेकिन आप खुद अगर स्वावलंबी होंगे, अगर आप खुद आत्मनिर्भर होंगे, सो बहुत सारे ऐसे डिसीशंस हैं जो महिलाएं ले नहीं पाती हैं। उनको सिर्फ ये डर लगा रहता है कि मेरे इस डिसीशन से इस पूरे परिवार पे फ़र्क पड़ेगा। उस डिसीशन को आप खुशी खुशी ले सकती हैं, और जो डिफरेंस आज के समय में हम महसूस भी कर पा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक प्यारे सी म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वापस लौट रही हूँ और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का। ये कार्यक्रम जो है ना, ये बड़ा खास है और इस कार्यक्रम के खास होने का एक ही रीजन है, क्योंकि हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। मजेदार बात यह है कि सालों से इसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन सही मायने में सशक्तिकरण आज भी नहीं मिल रहा है। इन द लाइट ऑफ ऑल द एक्सीडेंट्स दैट हैपन, ऑल द इंसिडेंट्स दैट हैपन, महिलाओं के खिलाफ होने वाला चाहे क्राइम है, महिलाओं के साथ होने वाला चाहे व्यवहार है, और महिलाओं के साथ किया जाने वाले कोई भी काम आज भी अगर आप देखें तो वो पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए इस सशक्तिकरण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। आज इस कड़ी में हमारे साथ नेहा गुप्ता हैं, और नेहा गुप्ता के पास वो हुनर है जिस हुनर के साथ वो ना सिर्फ एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बनी हैं, लेकिन साथ के साथ अपने आत्मनिर्भरता के साथ अपना नेहा क्रिएशन चला रही हैं। नेहा क्रिएशन एक ऑल इन वन मंडाला स्टोर है, जहां पर कि बहुत सारे लोगों को, ना सिर्फ हमारे भारत में ही लेकिन विदेशों में भी लोगों को ये मंडाला आर्ट सिखाती हैं। सो चलिए अब इनके मंडाला आर्ट के बारे में ही जानते हैं। नेहा जी, मंडाला आर्टिस्ट आपका बनने का सफ़र कैसा था? क्या बचपन से ही सोचा था मुझे आर्टिस्ट बनना है? क्या ये क्वालिटी आपने किसी से इनहेरिट की है? कई बार होता है ना कि माता पिता बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं या आपकी मम्मी की बहुत अच्छी पेंटिंग रही है, तो जेनेटिकली आपने इसे इनहेरिट किया है। सो कैसी रही आपकी पूरी जर्नी?
1: जर्नी तो एक सफ़र है, राइट? और ये बिगिन कैसे हुई उसकी एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ।
0: जी,
1: जब हम छोटे होते हैं, राइट, देन एवरीवन सी अ ड्रीम कि हम ये बनना चाहते हैं या हम वो बनना चाहते हैं। तो व्हेन आई वाज इन माय 10th, राइट, तो उस टाइम डिसीजन लेना होता है कि आप 11th में क्या लेंगे। सो आई रिमेम्बर कि मेरा आंसर था कि आई वांट टू टेक आर्ट्स, आई वांट टू बी इन आर्ट फील्ड ओनली, लाइक आफ्टर 12th आई वांट टू डू बीए आर्ट्स। एंड उस टाइम पर लाइक बीटेक एंड एवरीथिंग इज ऑन पीक, राइट? माई सिस्टर वॉज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, वन इज ऑलरेडी डूइंग बीटेक, अनदर इज गोइंग टू डू बी फार्मा। सो फादर इज लाइक कि इसमें कोई करियर नहीं है, यू शुड गो फॉर द यू कैन से फॉर मैथ्स डिपार्टमेंट, यू कैन ईदर टेक अ बायोलॉजी और यू कैन टेक अ मैथमेटिक्स, राइट, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। एंड देन आई हैव प्रेफर्ड मैथ्स की, चलो ठीक है मैथ लेके आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैंने मैथ लिया, बट उसके बाद भी 12th के बाद आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे बी ए आर्ट करना है। बट अगेन एक यू कैन से डिसीजन लिया गया कि चलो बी टेक करते हैं। फिर बी टेक किया, एम टेक किया, एंड उसके बाद 11 ईयर ऑफ यू कैन से जॉब किया, राइट, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जयपुर में। एंड उसके बाद फिर कॉरपोरेट में वर्क किया लाइक 5.5 ईयर एज अ इंटरनेशनल ऑपरेशन मैनेजर। बट आप एक कोइंसिडेंस देखिए कि मैं एट द एंड हूँ उसी फील्ड में जहाँ मैं जाना चाहती थी। इट इज़ अ वेरी बिग कोइंसिडेंस जो मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ। एंड मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से स्टार्ट हुई
0: जी,
1: जो हमारे इंडिया में आज तक मुझे लगता है कि हर दूसरी लेडी एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जाती है, बट लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, करेक्ट? तो आई वॉज ऑल्सो वेरी इंट्रोवर्ट कि मुझे अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करना नहीं आता। इवन मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं किया कि आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज। बट धीरे धीरे धीरे मुझे आई गॉट टू नो अबाउट मंडाला आर्ट्स, करेक्ट? एंड फिर मुझे लगा कि चलो कुछ बनाते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आर्ट बचपन से ही एक इंटरेस्ट तो था ही आर्ट में। फिर तब पहली बार बर्ड सुना था मंडाला कुछ होता है, तब मंडाला बनाना चालू किया, यूट्यूब से देख के एक वीडियो देखा, और तब धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। और वो जर्नी स्टार्ट होते होते आज मुझे यहाँ तक ले आई कि मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, और इस बिज़नेस में मैं अपनी अपनी आर्ट वर्कशॉप्स रन करती हूँ, कोर्सेज रन करती हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, नेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। मैंने अपनी 5 बुक लॉन्च करी हैं जो आप अमेज़न के किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ले सकते हैं। इंडिया में भी आप हमारे अमेज़न वेयर हाउस में हमारे पैकेट सारे जाते हैं, हम फ्लिपकार्ट, मीशो, सब जगह आप हमें देख सकते हैं। एंड अदर देन दैट यू कैन से हम मंडाला अवार्ड शोज भी करते हैं। 1 अवार्ड शो हमने ग्लोबल अवार्ड शो लास्ट 2 साल पहले किया था। मंडाला आर्ट चैलेंजेस, हर साल में एक मंडाला आर्ट चैलेंजेस भी करते हैं, इंटरनेशनल चैलेंज, जिससे कि लोग आएँ और उसमें पार्टिसिपेट लें, करेक्ट? बट ओवरऑल जो थीम है, जो करने का है, वो जो आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी थी वहीं पर है। हमारे हर कोर्स का एक एम रहता है कि आप सिर्फ बनाए नहीं, आप इसमें कुछ अपना करियर भी अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको एज अ करियर ऑप्शन भी ले सकते हैं। आप अच्छा खासा इससे भी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को एक ये मिसकंसेप्शन या मिथ है कि आर्ट में रखा ही क्या है।
0: Yes.
1: आर्ट से कुछ हो भी सकता है क्या? तो मेरा आंसर है बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी आर्ट आने की ज़रूरत है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक जब मैं कोई भी सफ़र आसान या डिफ़िकल्ट नहीं होता, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो एक सफ़र होता है जो आप जीते हैं और फिर आप उसको एंजॉय करके जीते हैं। इन 6 सालों में मैंने उस सफ़र को एंजॉय करके सीखा है और उसको इतना यू कैन से इतना हैप्पीली जिया है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि कुछ कहीं निगेटिव जा रहा है। एंड बाय गॉड ग्रेस ऐसा होता है कि जब भी मुझे कभी लगता है कि शायद मेरे बिजनेस का कुछ डाउनफॉल जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है व्हेन यू फील लाइक दैट वाओ समथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड। जस्ट लाइक अभी लास्ट मंथ ही एक सेलिब्रिटी इंडिया के बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिन्होंने हमारे मंडाला कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, करेक्ट। उन्होंने हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्स ऑप्ट किया बिकॉज वो नहीं कर सकते लाइव कोर्सेज, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम थिंग। सो लाइक हर वक्त अगर आप कुछ अच्छा करते जाते हो ना, देर इज समवन हु इज सीइंग यू कि आप क्या कर रहे हो, दे आर गिविंग अ पार्ट टू यू कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, जस्ट गो ऑन, हम आपके साथ हैं। सो आई हैव मैनी मैनी मैनी You can say a blessings with me, जो मुझे हमेशा blessings देते हैं कि you are doing good, कहीं कुछ wrong नहीं जा रहा है, बस इस path पे चलते रहो। तो ये journey बिल्कुल basic से ही start की, zero से start की, क्योंकि कुछ आता नहीं था, और वहाँ से करते करते करते मैं आज यहाँ तक आई हूँ। पीछे मेहनत तो लगती ही, हर चीज़ में मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। बस एक पैशन और एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है
0: जी।
1: जब उसमें आप में वो जुनून होता है तो आप अपना स्टार्ट करने के बाद कोई चीज़ पैर पीछे नहीं खींचते हो, बट अगर आपको उसमें पैशन नहीं है तो आप स्टार्ट करते हो फिर एक स्टेप पीछे ले लेते हो, फर्क करते हो फिर पीछे ले लेते हो, बट अगर आप में वो जुनून है तो आपका वो सफ़र धीरे धीरे धीरे चलता ही जाता है।
0: क्या बात है, सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी, और मैं तो ये कहूँगी सच एन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी। देखिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो टर्मिनोलॉजी है ना, आज के ज़माने में हम इस टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, लेकिन एक ज़माने में लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। कितनी महिलाएं हैं जो शायद इससे गुजरी होंगी, कितनी महिलाएं हैं जिन्हें ऐसा लगा होगा कि उनका वजूद ही ख़त्म हो रहा है, मतलब सुबह से लेकर रात तक और फिर अगली सुबह तक। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक नवजात शिशु का ख्याल रखना है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि जहां हम महिलाओं की आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, वहां पर इस डिप्रेशन के बारे में परिवार के सदस्य ही नहीं जानते हैं। कई बार तो हेल्प्स नहीं होती हैं, कई बार सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है माओं के पास। और जो न्यूली मॉम्स होती हैं ना, देखिए भाई हर चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, जिस प्रकार आर्टिस्ट के लिए ये कह रही हैं कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप निखरती जाती है, आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही माँ बनना भी है। आप कोई पहले से ही इसका सर्टिफिकेट तो लेकर आते नहीं है, ना ही आपके पास इसका कोई एक्सपीरियंस होता है, एंड एवरीथिंग इज़ न्यू, बच्चे के लिए भी माँ के लिए भी, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते। बट यस, मंडाला ऑफकोर्स एक थेरेपी के रूप में काम करता है और इसे भी अपनाया जा सकता है, जैसे कि नेहा ने इसे अपना जीवन और साथ के साथ अपनी आइडेंटिटी बना ली है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट की आज इस कड़ी में हम नेहा गुप्ता से बात कर रहे हैं। नेहा गुप्ता जो कि नेहा क्रिएशन की सीईओ हैं और साथ के साथ ये चलाती हैं नेहा क्रिएशन ऑल इन वन मंडाला स्टोर। अब आपको थेरेपी की जरूरत है या नहीं भी जरूरत है, लग रहा है स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा और आपके पास कुछ 2-4-5 घंटे हैं, तो चलिए एक मंडाला आर्ट का जो पूरा का पूरा स्केच होता है ना उसे ले लीजिए और उसे अलग अलग रंगों में रंगने की कोशिश करिए। आपकी ज़िंदगी उतनी ही कलरफुल होती जाएगी जितना आपका वो पेज बनेगा। नेहा जी, अब एक बड़ा अहम सवाल आपको ना, मैं आपके बचपन से और आज तक के एक फ्लैशबैक में लेकर जा रही हूँ जहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि सशक्तिकरण भरा एक ऐसा डिसीशन जहाँ आप किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हुई, आपने अपना डिसीशन लिया एंड यू आर एक्चुअली हैप्पी और आज आप उससे रिग्रेट नहीं करती हैं। कोई भी डिसीजन, चाहे शादी करने का डिसीजन हो, चाहे पढ़ाई का डिसीजन हो, चाहे बिजनेस का डिसीजन हो, एक ऐसा कौन सा डिसीजन आपने लिया है जिंदगी में जिसको आप अपना सशक्तिकरण भरा डिसीजन कह सकती हैं?
1: बिल्कुल, एक डिसीजन है जो शायद मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी
0: जी,
1: और वो डिसीजन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का।
0: वाओ,
1: अगर इसके भी पीछे का एक छोटा सा किस्सा बताओ, रात के 3 बज रहे थे और यू कैन से जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपको सब कुछ खराब लगता है
0: जी।
1: सामने वाला कितना भी अच्छा हो बट यू फील लाइक कि कहीं ना कहीं सब गड़बड़ जा रहा है, करेक्ट। एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एंड वो एक ऐसा मोमेंट था जो रात के 3 बजे आपको ऐसा क्लिक किया कि नहीं, आप बना रहे हो। क्योंकि वॉट वॉज माई शेड्यूल इज कि मैं पूरे दिन बच्चे का ध्यान रखती, बिकॉज इट वॉज अ कोविड टाइम, कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, इन लॉज भी नहीं थी, अपनी फैमिली भी नहीं थी, मैं, मेरी बच्ची और मेरा हस्बैंड, हम 3 ही लोग एक घर में थे। तो क्या करते थे, मैं पूरे दिन बच्चा संभालती थी, पूरे दिन घर को देखती थी, एंड जब बच्चा सो जाता था रात के 10 बजे, उसके बाद मैं आर्ट लेकर बैठा करती थी और 11 बजे से लेकर जब तक बोवर नहीं जाती थी, चाहे 4 बजे हो चाहे 5 बजे, मैं बनाकर फिर सोती थी एंड अगले दिन फिर सेम शेड्यूल जो था, रूटीन था, वो चलता था। मेरे हस्बैंड ने उसमें टाइम में मेरा बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, बट उसका वर्क फ्रॉम होम चलता था तो हील मैनेज है, तो मैं आराम से 10-11 बजे सोकर उठती थी, पूरा दिन करती थी, अगेन सेम शेड्यूल, करेक्ट। बट कभी कभी जब डिप्रेशन में होते हो तो आपको सब खराब लगने लगता है, बट जब बनाते गए, काफ़ी दिन तक बनाया, बट जब आपको लगा कि नहीं अब शायद ज़्यादा हो रहा है, एंड देन एक डिसीजन लिया रात के 3 बजे कि मैं मंडाला वर्कशॉप करूँगी और देखते हैं कि क्या होगा। उससे पहले कुछ भी नहीं पता था कि कुछ सही होगा नहीं होगा, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, इट्स नॉट कि आप सिर्फ मंडाला बना रहे हो, करेक्ट, आप मल्टीपल चीज़ें बना रहे हो। आज की डेट में हमें पता है नीश एक वर्ड होता है, उस टाइम पर पता भी नहीं था कि नीश कोई वर्ड होता है, तो सब कुछ बनाते थे। फिर डिसाइड किया कि चलो मंडाला की वर्कशॉप करते हैं, उस रात को अनाउंस किया, उस दिन थर्सडे था, वर्कशॉप अनाउंस की संडे की, करेक्ट। उस टाइम पर यह भी नहीं पता था कि जूम मीटिंग चलती कैसे है, और मुझे याद है जब वो वर्कशॉप मैंने कंडक्ट की उसमें मेरे पास 42 स्ट्रेंजर्स थे, और ये देख के मैं शॉक थी कि इतने सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। वो एक अकेला ऐसा डिसीजन था जो शायद मैंने बहुत ही सैड मोमेंट में लिया था, बट वो डिसीजन जो मैंने लिया, उस डिसीजन ने आज मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया कि उस एक वर्कशॉप ने मुझे ये पावर दी कि मैं इस छोटी सी चीज़ को एक बहुत बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ उस एक डिसीजन की वजह से आया था। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोविड किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अच्छा गया, सबके लिए अलग अलग मोमेंट गए, बट अगर आपको कभी लग रहा है कि यू वॉन्ट टू डू समथिंग और आपको कोई चीज़ पिंच कर रही है, उस पिंच को पॉजिटिवली पिक करो एंड उसको अपने ड्रीम को एक पैशन में जाकर कन्वर्ट कर दो, वो बहुत ईजीली हो जाएगा। क्योंकि हम करते क्या है एज अ वूमेन, हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचते रहते हैं, वो पेपर पे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, दिमाग में सब चल रहा है ये करना है ये करना है, बट जब तक आप उसको पेपर पे लेके नहीं आते हैं रिजल्ट नहीं आता है। आपको बस उसी चीज़ को पेपर में लेकर आनी है सो दैट आप उसको कन्वर्ट कर पाएं। तो वो मेरा एक अकेला डिसीजन था जिसे मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि उस एक डिसीजन की वजह से मेरी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई, पूरा एक जिंदगी को देखने का परसेप्शन बदल गया। बिकॉज उससे पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, जहाँ शायद ही रेयर कोई लोग थे जो मुझे जानते थे, मैं शायद इतना ज़्यादा लोगों से मिलती भी नहीं थी, मैं एक सिर्फ एक अपनी ही शेल्फ एक में था जिसमें मैं रहना पसंद करती थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे धीरे जब आपने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद दुनिया को आपके देखने का नज़रिया बदल गया है, वो लोग अब आपको दूसरी नज़र से देखते हैं। पहले लोग आपसे, आप लोगों के पास जाके बात नहीं करना चाहते थे, बट लोग अब आपके पास आकर आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, आपसे नॉर्मल डेली, मतलब एक एक डिसीज़न बहुत कुछ बदल सकता है किसी की लाइफ में।
0: सो इसीलिए भाई मैं हमेशा महिलाओं से एक ही बात कहती हूँ कि अपने डिसीशंस ना जरूर लीजिए और अपने लिए लीजिए विदाउट थिंकिंग कि इसका परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ना हम हमेशा अपने बारे में तो नहीं सोचते, हम पूरे परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में या फिर समाज के बारे में। महिलाओं को जरूरत है कि वो अपने बारे में भी सोचें। जुड़े रहिए रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं नेहा गुप्ता जी से। नेहा क्रिएशन ऑल इन वन मंडाला स्टोर की ना सिर्फ ये सीईओ है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी मंडाला आर्टिस्ट भी हैं। अब मुझे बताइए कि एक बड़ा अहम डिसीजन होता है हर महिला की जिंदगी में, और वो डिसीजन आपकी जिंदगी में जब आया तो आपने शायद उस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत खूबसूरती से लिया। हर महिला की जिंदगी में माँ बनने वाला एक फेज आता है, और ऐसे में ज्यादातर महिलाओं से ये कहा जाता है कि आप अपने करियर को सैक्रिफाइस कर दीजिए क्योंकि बच्चे का ख्याल आपने रखा। देखिए, इनिशियली मैं मानकर चलती हूँ 5 से 7-8 साल बच्चे को एक माँ की बहुत ज़रूरत होती है, और ऐसे में चाहे समाज की कह लें, इक्वालिटी कहें, आजकल फादर्स को भी ना पटर्निटी लीव मिलती है, ये सब कुछ है। डिस्पाइट दैट एक मदर की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है, बट महिलाओं के साथ परेशानी हो रही है कि यही फेस उनकी लाइफ का जो करियर के कहना चाहिए सबसे बड़ा टाइम होता है, उस टाइम में उनको पीछे ले आना, और फिर वो ना कुछ ऑल्टरनेट चीज़ें करने लग जाती हैं। जो एक गोल था लाइफ का, जिसके साथ शायद उन्होंने शादी से पहले या शादी के बाद जो एक लाइफ शुरू की थी और जो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी, वो कहीं धूम मिल हो जाती है। इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए, या क्या इसका कोई सोल्यूशन है जो आपने कभी सोचा है?
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है, ये मैं ये नहीं कहती जब आप माँ बन जाते हैं, ये आपके माँ बनने से जब स्टार्ट जर्नी होती है ना आपकी, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। मुझे याद है जब मैं एज ए इंटरनेशनल ऑपरेशन मैनेजर एक कंपनी में काम कर रही थी, तो हमारी इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को मैटरनिटी लीव दी जाती है, बट आज की डेट में हजारों ऐसे ऑफिसर्स हैं जहाँ मैटरनिटी लीव नहीं देते हैं, वो आपको फोर्सफुली रिज़ाइन कराते हैं। द सेम थिंग हैपेंड विद मी, बट उस टाइम पे मी एंड माय हस्बैंड आई एम लाइक वेरी स्टिक टू माय थिंग्स कि ये अगर लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है, आई विल गो विद दैट। मुझे याद है मैंने उसके लिए इतना फाइट किया है कि वो लीगल कंपनी है एंड यू आर द वन जो ये लॉस फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो। आई लाइक नहीं, आपको मैटरनिटी लीव तो देनी ही पड़ेगी बिकॉज इट इज़ एज पर द लॉ। तो स्ट्रगल तो तब से ही स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। मेरे साथ के बहुत सारी कलीग हैं जिन्होंने ऑफिस छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ दैट, करेक्ट। कभी फैमिली छोड़वा देती है कि क्या करोगे करके, ऑफिस जाना बहुत डिफिकल्ट है, कैसे ट्रैवल करोगे, कैसे वो करोगे। बट अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके पास है, आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके पास है, तो ये जर्नी और आसान हो जाती है, करेक्ट। और ये तो बिल्कुल श्योरी है कि जब हम माँ बन जाते हैं उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो जाती हैं, हमारे करियर को देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारे पास एक मैंडेटरी लीव हो जाती है जो एक गैप हो जाता है। जब हम दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हमें वापस से अपने करियर को बहुत पीछे खींचना पड़ता है, जो सैलरी पैकेज हमें पहले मिल रहा होता था आप वापस से फिर वापस पहुंच जाते हो, फिर अपना स्ट्रगल स्टार्ट करते हो, जिसमें आपकी फैमिली भी बीच में कहती है कि आपके बच्चों को आपको ज़रूरत है, बेटर टू टेक अ स्टेप बैक, करेक्ट। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपना स्टेप बैक लेती भी हैं, करेक्ट। बट अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके पास है तो ये चीज़ आगे जा सकती है, आपको इतना प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं। जस्ट लाइक मी एंड माय हस्बैंड वर वेरी क्लियर कि हमारे जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाएगा हम उसे क्रच में डाल देंगे, डे केयर में डाल देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर कोविड आ गया और हमें यह करने का मौका ही नहीं मिला, करेक्ट। फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि मुझे जॉब छोड़नी ही पड़ गई, करेक्ट। बट एक टाइम ऐसा था कि जब मैं ये वर्कशॉप करती थी बिल्कुल बिगनिंग में, तो मैं 99 रुपीज़ की वर्कशॉप करती थी, 49 की करती थी, 199 की करती थी। तो मैंने शायद जब 4-5 वर्कशॉप की, मैं हर संडे करती थी, सैटरडे संडे, बिकॉज हस्बैंड का ऑफिस सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी होता है, राइट। बाकी दिन तो वो वर्क फ्रॉम होम उनका चल ही रहा होता है। तो मुझे याद है कि एक दिन मैंने उससे बहुत हिम्मत करके ये बात पूछी ली कि मैं ये 99 रुपये की वर्कशॉप करती हूँ, तुम्हें इससे शेम तो फील नहीं होता, करेक्ट। बिकॉज आई एम फीलिंग 49 रुपीज़ की वर्कशॉप करना, माई हस्बैंड इज़ ए CACS, करेक्ट, एंड करेंटली इज़ अ CFO इन अ कंपनी, राइट। तो उस टाइम पर आपको बहुत बुरा फील होता है कि आप ऐसा काम कर रहे हो और आपके हस्बैंड। देन ही सेड अ वन थिंग टू मी जिसने मुझे लाइफ में मोटिवेट किया कि कोई क्या कहता है इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको लगता है तुम सही कर रही हो तो करो, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू फीलिंग कि दिस इज़ ओके फॉर यू जस्ट गो फॉर इट। उस एक चीज़ ने शायद करियर को देखने का नज़रिया बदल दिया, और वहाँ से आज तक कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर वो बैलेंस सपोर्ट आपको सिर्फ फिजिकली नहीं चाहिए होता, आपको एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है कि आपका पार्टनर और आप मिलके या आपकी फैमिली आपको बोले कि यू आर डूइंग गुड, करेक्ट, तो आप एक नया रास्ता बनाकर भी रास्ता बना सकती हैं, करेक्ट। और अगर आप अपना कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आप अपनी जो भी जॉब करी उसको कंटिन्यू भी कर सकती हैं, बट फैमिली का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। समटाइम ऐसा होता है कि इन लॉज आपको ताने मार रहे हैं, कभी आपकी फैमिली आपको ताना मारी, कभी फ्रेंड्स आपको ये एडवाइस वो एडवाइस कि बच्चे के लिए ये बेटर है ये बेटर है, बट मुझे लगता है कि आप अगर एक सपोर्ट लेके चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, तो ये जर्नी उतनी ही आसान हो जाती है हर वुमेन के लिए। बस वो सपोर्ट ज़रूरी होता है, और स्पेशली मेंटल सपोर्ट मोर देन अ फिजिकल सपोर्ट, क्योंकि हमें अगर आप काम करने को बोलोगे हम पूरे दिन काम कर सकते हैं, बट अगर आप रात में आकर एक हग दे दोगे तो आपका वो जो काम करा हुआ सारा है ना वो आप वैसे ही वेंट आउट हो जाते हैं, एंड देन यू फील हैप्पी। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, बस वही सपोर्ट हमें चाहिए।
0: ये देखिए नेहा ने बड़ी स्वीटली ये बताया है कि जो महिलाएं होती हैं ना उनका दिल बड़ा ही कोमल होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाती हैं, बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट्स ना दें। फिलहाल जुड़े रहे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में उतनी ही प्यारी सी नेहा हमारे साथ बैठी हैं। नेहा जो कि नेहा क्रिएशन की CEO फाउंडर हैं, ऑल इन वन एक मंडाला स्टोर चलाती हैं और ये ऑनलाइन बहुत कुछ करती हैं। मतलब अगर आप एनरोल करना चाहते हैं ज़रूर जाइए और चेकआउट करिए और आप एनरोल कर लीजिए। नेहा, अब एक बड़ा अहम सवाल, हम लोगों ने यानी हम इन द सेंस महिलाओं ने काफ़ी प्रगति की है। एक समय था जब हमें शायद पढ़ाई का मौका नहीं मिलता था, हमें पैदा ही नहीं किया जाता था, कन्या भ्रूण हत्या वॉज वेरी कॉमन इन इंडिया। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें तो प्रोग्रेस हो गई हैं और अगर मैं हमारे कहना चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ तो काफ़ी प्रोग्रेस दिखती भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी इक्वालिटी नहीं है। खास तौर पर मैंने देखा है घरों के अंदर जो है ना वहीं क्वालिटी नहीं दिखती है और ये क्वालिटी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर या फिर कहना चाहिए लोगों की स्पीचेस में या ऐसे कार्यक्रमों में नज़र आती है, बट चार दीवारी में, समाज में, परिवारों में आज भी क्वालिटी की कमी है। सो क्या लगता है, सबसे पहले तो ये क्वालिटी कैसे आ सकती है और किन किन चीज़ों में आज भी ये क्वालिटी नहीं है?
1: ओके, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे का अगर समझाऊँ, मेरे टर्म्स में जब आप कोई काम करते हैं करेक्ट, तो आपका जो आपने जो भी काम किया है वो सबको बहुत अच्छा लगता है करेक्ट, पर जब ही वो काम गलत जाता है तो हजारों लोग उस पर आके क्वेश्चन करने लगते हैं करेक्ट। ऐसे ही क्या होता है कि हर एक फैमिली में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है बच्चे की केयर करना, एक डिपार्टमेंट होता है घर की केयर करना, एक डिपार्टमेंट होता है अपना ऑफिस जॉब या जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप हाउस लेडी हैं या वो हैं। एज अ फीमेल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट दो डिपार्टमेंट तो संभालेंगी जो आपकी प्रायोरिटी है, एक आपका घर, एक आपका बच्चा
0: जी।
1: दो मेन प्रायोरिटी तो आपकी हैं करेक्ट। फिर आप साथ में ऑफिस भी संभालती हैं। आपने मेट्रोपॉलिटन की बात की, बिल्कुल सही बात है, मेट्रोपॉलिटन में एक डिपार्टमेंट कम हो जाता है, वो है आपका किचन वाला, क्योंकि जनरली हम लोग कोक या मेड्स वगैरह लगा लेते हैं, डोमेस्टिक हॉल हमारे पास बहुत सारी होती है, जैसे वो एक

0: डिपार्टमेंट कम हो जाता है, लेकिन तब भी हमारे पास दो मेन डिपार्टमेंट रहते हैं, बच्चे को संभालना जो हमारी मेन प्रायोरिटी होती है और जो हमें ऑफिस का काम करना। बट इसी कंपैरिजन में अगर आप मेन की बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ एक डिपार्टमेंट उनकी प्रायोरिटी पे होता है, वन उनका काम करना। वो बच्चों को संभालते जरूर है बट वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होते हैं, मतलब इट्स नॉट देयर कंपल्सरी ड्यूटी। अगर होमवर्क कराना है तो उनकी कंपल्सरी ड्यूटी नहीं है, उनके पास टाइम होगा तो वो करा देंगे, अदरवाइज आप ही की ड्यूटी है। करेक्ट। तो जहाँ पे स्टेप बैक लेना होता है वहाँ एज अ मदर को ही उस चीज़ में सेक्रीफाइस करना होता है। फादर शायद वहाँ पर उतना इनिशिएटिव नहीं दिखाते। करेक्ट। वहीं पर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लैक है हमारे पूरे सोसाइटी में कि हमने हमारी वुमेन को एम्पावर करना सिखाया, उनको पढ़ना सिखाया, उनको जॉब करना सिखाया, बट शायद जिस जनरेशन में हमें ये सिखाया हमारी मदर ने, हमारी उससे पहले वाली जनरेशन ने, शायद उस टाइम पे वो लड़कों को ये सिखाना भूल गए कि उन लड़कियों को डील कैसे करने हैं।
1: yes.
0: ये तो सिखा दिया कि हमें कैसे पढ़ाना है, हमें कैसे करियर बनाना है, हमने बना भी लिया, हमने सारे डिपार्टमेंट संभाल भी लिए, बट शायद उनको ये सिखाना भूल गए कि आप एक और डिपार्टमेंट भी अपनी प्रायोरिटी लेके संभाल सकते हैं। तो अभी भी अगर आप में और आपके हस्बैंड में कभी सेक्रीफाइस करना पड़े तो जाता उधर ही है सेक्रीफाइस करने की, एज अ मदर आप ही को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो शायद आगे नहीं लेते। ये मुझे लगता है कि एक सोसाइटी में एक लैक है जिसको इम्प्रूव होने की काफ़ी ज़रूरत है। और ये मुझे लगता है जैसा आपने कहा एजुकेटेड फैमिली में भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप गाँव में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। ये हर फैमिली की कहानी है, तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत आज भी है।
1: और इस माइंडसेट में ना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो रोल है वो परिवार और समाज निभाता है। ऑब्वियसली यार परिवारों से ही समाज बन रहा है, सो सबसे पहले तो परिवारों में ये इक्वालिटी नज़र आए, यानी महिलाएं जब काम कर रही हैं तो उसे नॉर्मलाइज ना किया जाए, और पुरुष जब काम नहीं कर रहे हैं तो उसे भी नॉर्मलाइज नहीं किया जाए, एक इक्वालिटी रहे। कि मान लीजिए आप दोनों ऑफिस से आए हैं और आते ये कहा जाए कि तुम चाय बना लो, तो इसकी जगह होना चाहिए चाय मैं बना लेता हूँ तुम खाना बना लो। सो देयर हैज टू बी एन इक्वालिटी। एंड अगर मान लीजिए कि और भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी है कि भाई बच्चे का होमवर्क करवाना है, सो ये बांटना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूं ही मानकर चलेंगे कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सिर्फ महिलाएं ही संभाल सकती हैं, तो मैं इसे इसलिए डिसएग्री करना चाहूंगी क्योंकि ये ना मुझे लगता है एक थोपी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अच्छे शेफ्स की बात करें तो पुरुष बहुत अच्छे शेफ्स हैं, और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं ही, जैसे सिर्फ एक मुझे लगता है कि माँ बनने वाली जो चीज़ है वो प्रकृति ने डिसाइड कर दी थी, बाकी सारी चीज़ें प्रकृति ने नहीं डिसाइड की थी। सो अब टाइम है कि ये इक्वालिटी भी हमें अपने समाज में नज़र आए, और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत किसी लॉ की नहीं है, किसी और चीज़ की नहीं है, किसी रिफॉर्म की नहीं है, सिर्फ छोटी सी सोच बदलने की, और वो हर इंडिविजुअल की, और ख़ास तौर पर पुरुषों की है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेशना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नेहा गुप्ता जी से। ढेर सारी बातें आज हमने इनसे की और वाकई एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट और एक बहुत ही कहना चाहिए सशक्त महिला ये हैं। ना सिर्फ बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी को बदल रही हैं लेकिन उनके जीवन में थोड़ी थोड़ी खुशियां भरने की कोशिश कर रही हैं। तहे दिल से धन्यवाद नेहा जी, आज अपने अपना समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की। हमारी बहुत सारी महिलाएं पुरुष हमारे लिसनर को इतनी बेहतरीन जानकारी आपने दी। जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगे उन्हें?
1: बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हर फीमेल को एक रोल में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। वो एज अ मदर भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, एज अ बिजनेस पर्सन भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। रादर देन आप डिसाइड करें कि आप सिर्फ मदर बनना चाहती हैं या सिर्फ वाइफ या सिर्फ डॉटर बनना चाहती हैं, आप एक स्टेप आगे भी ले सकती हैं। जो आपके दिमाग में चल रहा है अगर आप उसे पेपर पे उतार लें तो आप बहुत कुछ आगे कर सकती हैं, रादर देन आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक रोल में रखें।
0: ये तो बड़ा अच्छा सा मैसेज था, क्योंकि अक्सर महिलाएं क्या होती हैं ना, वो छोटी सी चीज़ में सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि चलिए भाई हमने ये पा लिया है तो ये ठीक है। सो अगर आपको भी लगता है कि जीवन में कुछ सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि टाइम किसी के पास गारंटीड नहीं होता है और ये क्या पता यही सही समय हो जब आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो करियर से और साथ के साथ जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। लेकिन तहे दिल से धन्यवाद नेहा जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। आई होप जैसे कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा भी शायद इससे रिलेट कर पाए या इस कहानी से मेरी रिलेट कर पाए और अपने करियर की एक नया, अगर वो अपने करियर को एक नए पंख देना चाहते हैं वो बिल्कुल दे पाए।
0: वाकई भाई हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, अपनी बस उस क्वालिटी को पहचान लीजिए और उसे अपनी आइडेंटिटी बना लीजिए। लेकिन जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, क्योंकि मैं आरजे भावना ले रही हूँ आपसे इजाजत। आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। हर बार की तरह आज फिर लेकर के आए हम आपसे, हमसे, हम सबसे जुड़ा हुआ एक विषय, एक मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे और तलाशेंगे एक नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएंगी एक बेहतर भविष्य की ओर, हमारे एक अच्छे फ्यूचर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में हमने दीपावली का महापर्व सेलिब्रेट किया और बहुत सारे त्यौहार, जो एक आजकल फेस्टिवल जो सीजन चल रहा है उसको हमने सेलिब्रेट किया, उसी के बीच में एक ऐसी समस्या जिससे हम दिन और रात दो चार होते हैं, जाने अनजाने हमें कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी भी करनी पड़ती है, लेकिन वो समस्या, वो परेशानी जुड़ी हुई है हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से और हमारे स्वास्थ्य से भी। शायद आपको मेरी बात से कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आज हम बात करेंगे प्रदूषण को लेकर के या पर्यावरण में जो फैल रहा वायु प्रदूषण है उसको लेकर के, लेकिन आज का विषय उससे थोड़ा हटके और ज़्यादा गंभीर है, और वो है एडल्ट्रेशन यानी मिलावट, यानी जिसको हम बहुत दिनों से, अगर हम बात करें तो कई दशकों से या जब से भी हमारे जीवन का शुरुआत हुई है, एक परंपरागत तरीके से एक व्यापारिक रूप जो खाने पीने की वस्तुओं ने लिया है, उसके बाद से शायद ये एक प्रकार का अभिन्न अंग बन गया है हमारे जीवन का। मिलावट हमारे खाने पीने की वस्तुओं में, चाहे वो दूध है, चाहे वो सब्जियाँ, कुछ भी आप ले लीजिए, केमिकल का यूसेज ले लीजिए, या फिर दूध का सबसे पहले नंबर आता है, या हम खाद्य जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उनकी हम बात करें, मसालों की बात करें, या जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया दीपावली के पर्व का, उसमें बनने वाली मिठाइयों की बात करें, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलेगी मिलावट। और केवल यही नहीं कि जिन खाने पीने की चीज़ों के बारे में हमने बात की, बात हम करते हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करती हैं या हमें जो बीमारियों से बचाती हैं, आज की डेट में उन दवाइयों में भी मिलावट होती है, वो दवाइयां भी प्योर मिल पाना भी एक चैलेंज हो गया है और एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या हमारे सामने मिलावट के रूप में हो गई है। यानी आप समझ के देखिए कि अगर हम मिलावट की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि प्योरिटी वाली चीज़ कौन सी है और किस चीज़ में मिलावट है, यानी हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ घटिया है जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, हमें उस सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चल पाता। और एक बड़ी साधारण सी बात है कि इस चीज़ के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, जो मिलावट का जो काम है, जो लोग करते हैं इस काम को, जो एक प्रकार का गंभीर अपराध भी है, मतलब अगर हम सामाजिक बुराई की बात करें तो बुराई के अलावा एक सामाजिक बुराई के अलावा एक अपराध भी है जो पूरी की पूरी मानव जाति के अगेंस्ट ये लोग करते हैं जो मिलावट का धंधा करते हैं। उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो केवल और केवल होता है अपने मुनाफे को बढ़ाना, यानी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना। केवल एक कारण मात्र होता है मिलावट करने का, चाहे वो हमारे खाने पीने की वस्तुओं की मिलावट हो या फिर दवाइयों में होने वाली मिलावट। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और आप सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के, एक बहुत ही सीरियस मैटर जो है एडल्ट्रेशन यानी मिलावट। मिलावट हमारे खाने पीने की वस्तुओं में, हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों में, मिठाइयों में, और यहाँ तक कि दवाइयों में भी। जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको बताया कि मिलावट करने के पीछे का जो मुख्य पर्पज होता है वो केवल केवल मुनाफा कमाना। कुछ लोग हैं जो केवल अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार में होने वाले मुनाफे को बढ़ाने के लिए इस मिलावट का सहारा लेते हैं, चाहे उसके लिए उनको किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करनी पड़े, चाहे वो उनको सामाजिक बुराई के रूप में उस बुराई को अपनाना पड़े, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक अपराध करने का भी जोखिम उठाना पड़े, लेकिन उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है केवल प्रॉफिट बनाना, पैसे बनाना। तो आखिर ऐसे लोगों को अगर हम सामाजिक बुराई की हम बात करते हैं, तो अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो ये मानवता के दुश्मनों के रूप में हम जान सकते हैं इनको, जिनके लिए हमारे कानून में भी बहुत प्रावधान है जिसमें इनको सजा भी दी जा सकती है। लेकिन अगर हम इस मुद्दे को अगर विस्तृत रूप से हम डिस्कस करना चाहें, तो आखिर हम कुछ ऐसे कारण आपके सामने लाना चाहते हैं कि जो इस मिलावट के काम का, इस सामाजिक बुराई का करने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला जो कारण है मिलावट के काम के पीछे का जो जुड़ा हुआ है, वो है आर्थिक लाभ। यानी आपको जो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, अपना मुनाफा बढ़ाना है, उसके लिए लोग मिलावट करते हैं। क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ में कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी की आइटम को मिलाना जो उस वस्तु के मूल्य से कम की हो, जैसे हम बात करते हैं शुद्ध घी की, बात करते हैं देसी घी की, यदि आप उसमें वनस्पति घी की मिक्सिंग कर देते हैं तो वनस्पति घी के मुकाबले में देसी घी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और वो लोग उसी को उसमें मिला करके अपना प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट रेशो बढ़ा लेते हैं। या हम बात करते हैं मसालों की, मसालों में आमतौर पर आपने सुना होगा कि ईंट का पिसा हुआ चूरा लाल मिर्च में मिला दिया जाता है, हल्दी के अंदर भी शीशा मिला दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह के जानवरों से संबंधित जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको भी मसालों में कई तरह से प्रयोग कर लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका केवल और केवल पर्पज होता है कि उनका प्रॉफिट रेशो बढ़िया हो जाए, ज़्यादा हो जाए। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण अगर हम भारत की बात करें, तो यहाँ पर एडल्ट्रेशन के खिलाफ जो मिलावट का जो अपराध है, जिसको हम सामाजिक बुराई के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, उसमें हमारे पास जो कानूनी व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि अक्सर आपने देखा होगा कि फलां व्यक्ति को मिलावट के आरोप के में बंदी बनाया गया या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कानूनी तौर पर कोई भी सख्त कार्रवाई या एक होता है उसको सजा देने का जो एक कार्य होता है, वो सरकारी एजेंसियों द्वारा उस तरह से नहीं किया जा सकता जिससे कि इन मिलावटखोरों के मन में किसी प्रकार का कोई भय आए। तो वो किसी भी प्रकार का जो दंड जो होता है, जो उनके खिलाफ जो सजा का प्रावधान है, उसका कोई जब भय नहीं होता तो उनको इस मिलावट के धंधे को जारी रखने के लिए एक तरह का मोटिवेशन मिलता है, वो परवाह करना छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे एक मेजर रोल प्ले करती है मिलावट के धंधे को बढ़ाने में, कि हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है। हम लोग जो यूज़ करते हैं जितनी भी चीज़ें, हमारा खुद का एक नेचर बन गया है कि यदि हमें कोई वस्तु सस्ती मिल रही है तो हम बिना इस बात को देखे हुए, बिना प्रमाणों की जांच किए हुए कि ये वस्तु इतनी सस्ती आखिर क्यों है और इसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट होने की संभावना ज़्यादा है, हम इस बात की परवाह किए बिना उस वस्तु को खरीदते हैं, उसको उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो मिलावटखोर द्वारा कोई भी चीज़ मार्केट में बेची गई सस्ते रेटों पर, तो जब उसका सेल का जो वॉल्यूम है बढ़ता है और उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो वो भी एक तरह की प्रथा का चलन हो जाता है कि मिलावट वाली वस्तु की एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी होने की वजह से वो लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। तो जो अवेयरनेस की कमी है, जो उपभोक्ताओं के अंदर, जो हम लोग अपने आप को जो ग्राहक के रूप में हम कहते हैं, उनके अंदर जागरूकता अगर नहीं होती है तो मिलावट के जो कारोबार है मिलावट का, उसको बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि मार्केट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर आइटम की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, तो आप यकीन मानिए कि उसके अंदर मिलावटी सामान के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि बाजार के अंदर जो एक डिमांड है, जो एक किसी भी माल की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी अगर ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड है, तो उसकी जो आपूर्ति अगर कम है, तो मिलावटखोरों के लिए जो एडल्ट्रेशन का काम करते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर पैदा हो जाता है कि वो उस वस्तु में मिलावट करके उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं और आपके सामने एक जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो आपके सामने रख देते हैं और हम उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के अंदर का यदि गैप किसी भी सूरत में किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए बढ़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस पर भी नज़र रखने की कि अगर ऐसा है तो हम थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतें उस वस्तु को खरीदने में, क्योंकि उसके मिलावटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना,

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं वस्तुओं में मिलावट की, खाने पीने के सामान की बात करें, रोजमर्रा की चीजों की बात करें, यहाँ तक कि दवाइयों की। तो जैसा कि हमने अभी आपको पहले प्रोग्राम के हिस्सों में बताया कि किस किस चीज़ों में किस तरह से मिलावट की जाती है, और लोग जो एक सामाजिक इस बुराई को जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जो मिलावट खोर हम जिनकी बात करते हैं, उनका केवल और केवल उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाना।

अपने लाभ की मात्रा को बढ़ाना। आज हम जानेंगे कार्यक्रम के आगे के हिस्से में कि आखिर ये मिलावट कहां कहां होती है और कैसे होती है। जब कभी भी मिलावट का जिक्र आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है दूध, जो हमारे रोज़मर्रा की सबसे ज़्यादा ज़रूरी वस्तु है या सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या हमारे परिवार का या हमारे समाज का कोई भी वर्ग हो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर होता है तो वो दूध का होता है विभिन्न रूपों में। और आज के समय में जितनी दूध की डिमांड है उसके मुकाबले में उसकी आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती है, तो लोगों को एक बहुत बड़ा मौका मिलता है दूध के अंदर मिलावट करने का। खाली केवल मिलावट की बात हो कि केवल पानी मिला दिया जाए तब भी शायद बात समझ में आती है, लेकिन जब बात आती है ये कि आप केमिकल से दूध को बनाते हैं, यूरिया प्रयोग करके बनाते हैं या विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को यूज़ करके दूध बनाते हैं, तो वो सीधा सीधा खिलवाड़ होता है लोगों के स्वास्थ्य से, उनके जीवन से। तो इस प्रकार की भी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि बड़े बड़े कारखाने ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर यूरिया से बना हुआ दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और जो सिंथेटिक दूध जिस प्रकार से हम उसको बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी में एक तरह से जहर के रूप में चला जाता है। साथ ही साथ आमतौर पे आपने देखा होगा कि मसालों में बहुत ज़्यादा जो हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने में प्रयोग होते हैं उन मसालों में भी मिलावट होती है, क्योंकि मसाले एक ऐसी चीज़ है यदि उसमें कोई मिलावट कर दी जाए तो उसका स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलता है, चाहे उसका स्वाद बदल जाए। और मसालों को आमतौर पर किसी भी सब्जी में या आप जो भी हो कोई खाने पीने की सामग्री बनाते हैं उसमें डाल करके ही टेस्ट किया जाता है, उसके अतिरिक्त आपको मसाले चखने का या इस तरह का कोई जरिया नहीं होता है, तो वो बहुत कम पकड़ में आती है। या दूसरी एक बात हमने बताई आपको, वनस्पति घी जिस प्रकार से देसी घी के अंदर मिला करके उसकी एक जो कॉस्ट है उसको कम कर देते हैं मिलावटखोर, और आप उसको सामने मार्केट में बेच देते हैं क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और उसकी अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली कम रहती है, और साथ ही साथ जब मिलावट के बाद उसका दाम कम हो जाता है तो उसकी बिक्री और ज़्यादा हमारे समाज में, हमारे बाज़ारों में होने लगती है। केवल और केवल एक मिलावट का जो कारण है वो केवल आर्थिक लाभ ही नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे या जो लोग ग्रेन्स का स्टोरेज का काम करते हैं उनका जो स्टोर हुआ हुआ होता है अनाज, उसमें कई बार जाने अनजाने में भी मिलावट हो जाती है, लेकिन क्योंकि एक जिम्मेदार व्यापारी होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो उस मिलावट के कारणों को पहचाने और उस मिलावटी सामान को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकें। जैसा कि आमतौर पर देखा होगा आपने कि जो अनाज जहाँ पर स्टोर किया हुआ होता है बड़े बड़े गोडाउंस में, तो वहाँ पर चूहे अनाज की बोरियों को काट देते हैं, या दो प्रकार का घटिया और अच्छा जो अनाज है वो आपस में मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार की जो आकस्मिक जो भी मिलावट हो जाती है उसको रोका जा सकता है यदि हम थोड़ी जिम्मेदारी से और समझदारी से काम लें। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमने मसालों में बात की, मसालों में आमतौर पर देखा जाता है कि लाल मिर्च के अंदर आप ईंटों का जो चूरा है पाउडर बना करके डाल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो अभी हमने हाल ही में सेलिब्रेट किया दीपावली का फेस्टिवल, तो उस दौरान एक अनुमान के अनुसार तकरीबन बाजार में मिलने वाली जो खोए से निर्मित या अन्य प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं उसमें 30% तक मिलावट वाली मिठाइयाँ पाई गई हैं, ऐसा एक रिपोर्ट के सर्वे में आया है, जिसमें ये बताया गया कि जब विभिन्न एजेंसियों द्वारा सैंपल्स कलेक्ट किए गए तो उसमें ज़्यादातर दुकानों पर ऐसी मिलावट वाली मिठाइयाँ पाई गई जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थीं। साथ ही साथ प्योरिटी की अगर हम बात करें तो केवल यही नहीं होता कि वो हानिकारक हों, कई बार ऐसा भी होता है कि मिलावट होने के बाद उन सामान का, उन वस्तुओं का जो शुद्धता है या उनका जो स्वाद है ओरिजिनल, वो भी कम हो जाता है। तो लेकिन मिलावट अपने आप में एक सामाजिक बुराई है, एक सामाजिक अपराध है। अभी एक पिछले दिनों एक रिपोर्ट में आया था कि हल्दी के अंदर उसका रंग बेटर बनाने के लिए शीशा मिक्स किया जाने लगा है ताकि उसका रंग और ज़्यादा बेटर लगे। तो कई बारी मिलावट इसलिए भी की जाती है कि प्रॉफिट तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ जो उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो किसी इन्फीरियर क्वालिटी का है तो वो थोड़ा बेहतर दिखे। जिस प्रकार से हम आमतौर पर देखते हैं कि गर्मियों में जब तरबूज का सीजन होता है तो उसके अंदर हमने देखा है कि इंजेक्शन लगा करके उसको लाल कर दिया जाता है, तो वहाँ पर उनका कोई प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा। तरबूज बेचने वाले के लिए उसको लाल करना तरबूज को एक कॉस्ट मैटर करती है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर वो अपने उस इन्फीरियर प्रोडक्ट को, एक हल्की क्वालिटी के प्रोडक्ट को बेहतर क्वालिटी का बना करके बेचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर उनका जो उद्देश्य है वो होता है कि घटिया सामान को अच्छा बना करके बेचना और फिर पैसे कमाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि
मिलावट वाला सामान जो है वो बाजार में आमतौर पर किस किस वर्ग में मिलता है, तो उस पर थोड़ा सा हमें जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य से, हमारे जीवन से जुड़े हुए एक ऐसे मुद्दे की जो जुड़ा है हमारे रोजमर्रा के खाने पीने की वस्तुओं से, यानी मिलावट का। अभी हमने हाल ही में बात की आपसे कि दीपावली के पर्व पर मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावटें वाले सामान बाजार में बिक रहे थे, और बहुत प्रकार की चीज़ें जो भी हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल होती हैं उनमें भी एडल्ट्रेशन ने अपना एक घर बना रखा है। एक प्रकार का ये जो सामाजिक बुराई है दिन प्रतिदिन पनपती जा रही है। अब तक हमने बात की कि किस प्रकार से मिलावट की जाती है, मिलावट किन वस्तुओं में होती है। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको चिंता में डाल सकती हैं, परेशान भी कर सकती हैं, लेकिन आपको बेहतरी के लिए, आपके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो है इस मिलावट के कारण होने वाले नुकसान, यानी अगर हम बात करें दुष्परिणामों की जो हमें भुगतने पड़ते हैं मिलावटी सामान के उपभोग करने से, यानी मिलावटी वस्तुओं को खाने से। सबसे पहला जो खतरा आता है वो मिलावटी है। यदि आपने किसी भी चीज़ का सेवन किया तो सबसे पहले ये आपके पेट को डिस्टर्ब करता है, आपके इंटेस्टाइन हो चाहे आपका स्टमक हो, उसमें कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो केमिकल से दूध बनता है, यूरिया से जो दूध बनता है, जिसको हम सिंथेटिक मिल्क की बात भी करते हैं, यदि आप उसका सेवन करते हैं और लगातार सेवन आप करते जाते हैं तो आपके पेट में गंभीर प्रकार के रोग बन सकते हैं, ऐसा स्टडी में साफ तौर पर आया है। और बहुत सारे रोगी अक्सर अपने पेट की समस्याओं को लेकर जब डॉक्टर से मिलते हैं तो पता चलता है कि वो पिछले काफ़ी समय से ऐसा केमिकल वाला सिंथेटिक दूध या उस दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। यदि हम बात करें एक सर्वे की, तो एक सर्वे के अनुसार आप यकीन मानिए लगभग मिलावटी खाद्य पदार्थों से जो लोग हर साल बीमार पड़ते हैं भारत में, उनकी संख्या ही लाखों में है, जबकि कुछ लोगों की तो इस मिलावटी सामान के उपयोग के कारण मृत्यु तक हो जाती है। साथ ही साथ हमें जानने की ज़रूरत है कि इन सामानों के प्रयोग से आपको कैंसर जैसा भयंकर रोग भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमें इनके दुष्परिणामों के बारे में पता होते हुए भी हम बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक बात और विशेष तौर से समझने वाली है कि जब कभी भी आप किसी मिलावटी सामान का उपयोग करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो उसके जो दुष्परिणाम हैं वो एकदम से आपके सामने नहीं आते। आमतौर पर आपने देखा होगा कि यदि आप केमिकल वाला दूध या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो छोटा मोटा आपको पेट की बीमारी हुई, परेशानी हुई, वो ठीक हो गई, तो आपको थोड़ी उसकी गौर नहीं रहती। लेकिन कैंसर जैसी जो घातक बीमारी हैं, यदि वो मिलावटी सामान के प्रयोग से आपको हो रही हैं तो उसके जो लक्षण हैं वो एकदम से सामने नहीं आते, वो लंबे समय के बाद बड़े ही दीर्घकालिक उसके परिणाम होते हैं। और जो बाद में जब वो समस्या आपके सामने उभर के आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं आर्थिक परिणामों की, यदि हम आर्थिक बेनिफिट की बात करते हैं, जो हमने आपको कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए मिलावट को और इस काम को करते हैं, तो उसी का एक दूसरा पहलू भी ये है कि जब हम किसी मिलावट वाले सामान को खरीदते हैं तो जो कीमत हम उस सामान की चुकाते हैं वो हम चुकाते हैं एक असली और शुद्ध आइटम के रूप में, लेकिन हमें मिलता है बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का मिलावटी सामान। तो एक प्रकार की जो आर्थिक हानि है, जो आर्थिक नुकसान है, वो कहीं ना कहीं हमारे ग्राहक का, हमारे जो उपभोक्ता हैं वो करते हैं, जिस चीज़ की वैल्यू के लिए वो पैसा चुका रहे हैं हमें वो वैल्यू वाला सामान नहीं मिलता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से मैंने मिलावट की बात की, तो मिलावट में एक बात तो तय है कि किसी भी चीज़ को हमेशा अच्छा कह करके बेचा जाता है, नाम लेकर के बेचा जाता है, लेकिन वो वस्तु उस प्रकार के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है, तो एक प्रकार का मार्केट के अंदर जो अविश्वास का माहौल बनता है, जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, वो उस वस्तु के प्रति या उस वस्तु से मिली जुली जो चीज़ें रहती हैं उसके प्रति उनके मन में विश्वास की कमी हो जाती है। और मार्केट के अंदर उपभोक्ताओं का यदि भरोसा किसी भी प्रकार की वस्तु के प्रति, जैसे मैंने आपको घी का एग्जाम्पल दिया, तो जिस प्रकार की मिलावट देसी घी में चल रही है, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, परफ्यूम डाल करके खुशबूदार घी बना दिया जाता है, तो लोगों में एक अलग तरह का भय का वातावरण बन जाता है कि असली घी भी असली मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे कोई सही व्यक्ति सही सामान को भी मार्केट में बेचे तो उसको भी उपभोक्ता शक की दृष्टि से देखते हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने सही सामान को भी बेचना। साथ ही साथ जो एक हमने चिकित्सकों की जो एक रिपोर्ट, एक सर्वे हमने चेक किया, उसमें एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि जो मिलावटी भोजन, जो मिलावटी सामान बच्चे
उपयोग करते हैं बचपन से, तो उनका विकास जो उनका आर्थिक और मानसिक, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो धीमा पड़ जाता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में यदि आप मिलावटी सामान का प्रयोग करते जा रहे हैं तो आपके लीवर, किडनी और आपके लंग्स और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के, तो वो बहुत एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाती है। यदि हम पोषण के नाम पर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को देख करके उसके हिसाब से किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर वो मिलावटी सामान है, तो एक चीज़ का जहां आपको लाभ मिलना चाहिए लाभ ना हो करके वही चीज़ आपको नुकसान देने लगती है, तो एक चिंताजनक और खतरे वाली स्थिति से हमको जूझना पड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मिलावट की, यानी एडल्ट्रेशन। खाने पीने का सामान हो, चाहे दवाइयां या वस्तुएं, मसाले या किसी भी, हम बात करें जीवन के हर वर्ग में, हर वस्तु में आज एक अंदेशा हमारे मन में हमेशा बना रहता है कि ये वस्तु कितनी प्योर है या कितनी इन्फीरियर क्वालिटी की है, यानी कितनी मिलावट वाली है। चाहे वो दूध दही की बात करें या घी की बात करें, मसालों की या और भी कोई वस्तु है, जितना भी हमने अभी आपसे कार्यक्रम के आरंभ में चर्चा की। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर इस सामाजिक बुराई पर, जो ये अपराध है एक तरह का बनता जा रहा है, उस पर अंकुश लगे कैसे, आखिर इसके लिए हमारे देश में व्यवस्था है क्या। अब अगर हम बात करें उपभोक्ताओं की, तो वो हमारे पार्ट पे हो सकती है कि ठीक है, हम अपनी तरफ से सावधानी बरते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है, यदि कोई स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाला काम कर रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, हमारे देश के नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए, जो मैंने अभी आपको बात की कि दीर्घकाल में, लंबे समय तक अगर मिलावट वाला सामान आप उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैंसर जैसे भयंकर रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। तो इन चीज़ों पर आखिर रोक लगे कैसे, हमारे कानून में व्यवस्था क्या है। दोस्तों, भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत मिलावट

बन रही है या उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यानी यदि आप एडल्ट्रेशन करते हैं, जो समाज के अपराधी हैं, अगर एडल्ट्रेशन करने वाले लोग जो अपने आर्थिक मुनाफे को बढ़ाने के लिए एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, तो ऐसा कोई गंभीर मामला यदि आता है तो उस व्यक्ति को जो भी इस काम के लिए जिम्मेदार है उसको आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। साथ ही साथ यदि हम पेनल्टी की बात करें, आमतौर पर हमने देखा गया है कि लोग अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, तो उस दशा में यदि वो अपराध सिद्ध हो जाता है या ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता है तो 10 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड उस व्यक्ति पर या उस जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करने वाली जो भी दुकान है, कंपनी है, उसके ऊपर लगाया जा सकता है यदि वो इस प्रकार का कोई कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं, यदि वो आरोप उन पर सिद्ध हो जाता है। साथ ही साथ अक्सर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि यदि कोई वस्तु हमें लग रहा है, डाउट है कि ये मिलावट वाली हो सकती है या ये खतरनाक, इसके अंदर कोई केमिकल मिले हुए हैं या ये उतनी प्योर नहीं है जितना कि इसको बता करके बेचा जा रहा है, तो उसकी सुविधा के लिए हमारे देश में, भारत की हम बात करते हैं, तो हर स्टेट के अंदर, हर राज्य में फूड सेफ्टी विभाग और लैब टेस्टिंग की भी व्यवस्था है। यानी आप किसी भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा सामान आपने मार्केट से खरीदा और आपको लगा कि उस, जब आपने उसको उपयोग किया तो किसी प्रकार का आपको संदेह हुआ कि इसमें मिलावट होने की संभावना है, तो आप उसको फलां लैब के पास, जो भी आपके कंसर्न एरिया में है, बहुत इजीली अवेलेबिलिटी है कि आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, तो वहाँ पर उस फूड सैंपल को आप जा करके टेस्ट करा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर शॉप की कोई आइटम में आपको लग रहा है कि मिलावट की संभावना है, या आपको लगा या आपने देख लिया ऐसा कुछ, तो आप जो फूड सेफ्टी विभाग आपके क्षेत्र का है उसको आप एक शिकायत द्वारा जानकारी दे सकते हैं, और आपकी शिकायत को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है, और उस फलां दुकानदार जो भी मार्केट में उस प्रकार का जो मिलावट वाला सामान बेच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, छापेमारी करके उसके सामान की टेस्टिंग भी कराई जाएगी, और यदि कोई अपराध उस पर सिद्ध होता है, यदि उसकी मिलावट पकड़ी जाती है, तो उस पर जैसा मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है, और यदि वो जो भी अपराध है मिलावट वाला, बहुत गंभीर श्रेणी वाला, सीधे सीधे जान को जोखिम में डालने वाला है, तो उम्र कैद की सजा तक भी उस अमुक व्यक्ति को दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं मिलावट की, जो एक जिसका जन्म होता है कि आप अपने आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं मिलावट करने के लिए, या आपकी जो ग्रीडीनेस है, जो आपका लालच है पैसा कमाने का ज़्यादा, वो आपको प्रेरित करता है इस प्रकार के सामाजिक अपराधों को करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे कानून में जो प्रावधान है वो किसी हद तक अभी लचर स्थिति में है, जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा, तो उनको बहुत ज़्यादा सख्ती से लागू कराने की भी आवश्यकता है। यानी कि लोगों के अंदर इस बात का भय होना चाहिए कि यदि आप मिलावट वाला सामान बेचते हैं जो किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, किसी के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आपको आजीवन कारावास की सजा भी मिल सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बातें ऐसी हैं जिनको एक भय के रूप में लोगों के बीच में जाना जाना चाहिए, ताकि वो मिलावटखोरी के काम से अपने आप को अलग रख सकें और इस सामाजिक बुराई का हम अपने समाज से, अपने देश से अंत कर सकें। दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल के साथ। आज हमने चर्चा की मिलावटखोरी के ऊपर, एडल्ट्रेशन के ऊपर, जिसको हम भुगत रहे हैं, जिसको हम झेल रहे हैं कई दशकों से, यदि हम बात करें तो पिछले अनेकों वर्षों से, और जो एक सामाजिक बुराई के साथ साथ एक सामाजिक अपराध भी बन चुका है। कुछ लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए इस सामाजिक बुराई को, इस सामाजिक अपराध को करते हैं, जिनके ऊपर अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमने बात की कानून के प्रावधानों की, लेकिन आखिर इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने पार्ट पर किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, उसमें अगर हम बात करें कंज्यूमर का क्या रोल होना चाहिए, या हमारा बतौर एक ग्राहक जो हम जो इसको कंज्यूम करते हैं सामान को, उनका क्या रोल होना चाहिए, तो उसमें हम कुछ टिप्स आपको बताते हैं कि जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। यदि आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं, यदि वो पैक्ड प्रोडक्ट है, खुले तौर पर सामान मिलने वालों में केवल और केवल दुकानदार की विश्वसनीयता या उस सामान का जो रंग रूप है या उसका जो स्वाद है, वो आपको बता देगा कि वो मिलावट वाला है या नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यदि कोई पैक्ड आइटम आपके पास है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर FSSAI का लाइसेंस नंबर जरूर देखें, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है, उसके हिसाब से जो लाइसेंस दिया जाता है वो केवल उन्हीं कंपनीज को दिया जाता है जो पूरी तरह से किसी भी चीज़ की प्योरिटी को मेंटेन रखती हैं, या जो जिस प्रकार के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करती हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो खुला सामान है उसको खरीदने से बचें, क्योंकि उस खुले हुए सामान की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। वो सामान जिस स्थिति में जहाँ रखा होता है केवल और केवल वहीं तक सीमित रहता है, आप कभी भी उसका स्रोत नहीं पता लगा पाते हैं। तो ऐसी दशाओं में अक्सर अपराधी जो है, सामाजिक अपराध करने वाले मिलावटखोर जो लोग हैं, वो बच जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप खुला हुआ सामान ना खरीदें, उसको खरीदने से बचें। साथ ही साथ जो हमने बात की कि दूध एक ऐसी चीज़ है हमारे जीवन से जो जुड़ा हुआ, हमारे परिवार के सभी वर्ग, हमारे समाज

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जैसे मरा हुआ आदमी, लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हो, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हो। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी ये भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्त के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्त के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी, और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत? नकल होगा, संत की नकल ढांचों में बैठ जाती। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे, तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे, तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे, वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है, आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम,

तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक हैं, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक हैं वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना, परेशान ना हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है। अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्मभूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया, भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान होना हमारा स्वभाव है। ये उपाधि नहीं है, उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो, तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गया। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर? जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते।
दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई, जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उनसे पाही ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है, उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होकर बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है, इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है, इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है, जो तुम्हारे भीतर हो कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके, जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है, ये तो तुम्हारे अंतर्तम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है, इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी, फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5,000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए, ज्यादा जिंदा नाम ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे होगे कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संतों की वाणी में जरूर अमृत है सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना, और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सार है, उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोक ठोक के मर जाएं।
तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो। कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है। कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते हैं, छोटा बच्चा कोमल चित्र, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती, फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो, जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन। डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो, न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा, रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द कई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें,
संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसने जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती है, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजरों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे, सब होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे हो, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं, जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है, उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है, एक फकीर एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी ना थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई, दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है, वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया, वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था, मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है। वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान होती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले,
तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना।

अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई, जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं, मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करें। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ज क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद नौ विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने नौ विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी, और पुरुष तो कामातुर है ही, अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम चार विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन चार विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने नौ विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से चार विवाह करवाने हो तो गुरु को नौ करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद दो कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे ही नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, चार पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना,
मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी चार पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफा चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, दो विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती दो विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की दो औरतें, 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगे पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थे, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर दो औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। 4 स्त्रियों का साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या। 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और 1-2 मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, 1 दिन के लिए 1 मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है
मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में यह सच है तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है। ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे। और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है। वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं। परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी। थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं। अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और न ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा। लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है। लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है। तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है। मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं,
वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए, अब तू बैठ जम कर वो चक्कर मार रहे हैं।

जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते। बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है। लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली। शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है। चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में बैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारों, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है। कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता, लेकिन एक किरण चौंध जाती है। लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हां भी और नहीं भी। हां इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती है। चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम
स्वस्फूर्त

रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे हैं, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पीकर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। उमा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है। उनकी उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। असुकी ने कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं। इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है। हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें। इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, और इस श्राप से शूद्र प्राप्ति जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि दयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को लेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया, उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्वाजी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा शीन कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। ये केवल वायु की कर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था। उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं, उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारी से कहिएगा, और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पुत्रों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं। आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पुत्रों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा, और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख उठाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, सब सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
0: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यार सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
1: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरत्कारु की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जरत्कारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम आस्तिक हो गया। उग्र शवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते है कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं। मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समय करे। मंत्रियों ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी बस्तियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋषिकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर ये मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
0: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 के साथ, और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरंजन 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुना